और इसी अजीब करिश्मे से हमने उन्हें उठा बिठाया ताकि जरा आपस में पूछगछ करें। उनमें से एक ने पूछा, कहो कितनी देर इस हाल में रहे? दूसरे ने कहा, शायद दिन भर या इससे कुछ कम रहे होंगे। फिर वो बोले, अल्लाह ही बेहतर जानता है कि हमारा कितना वक्त इस हालत में गुजरा। चलो अब अपने में से किसी को चांदी का ये सिक्का देकर शहर भेजें और वो देखे कि सबसे अच्छा खाना कहाँ मिलता है। वहां से वो कुछ खाने के लिए लाए और चाहिए कि जरा होशियारी से काम करे, ऐसा ना हो कि वो किसी को हमारे यहां होने से खबरदार कर बैठे। अगर कहीं उन लोगों का हाथ हम पर पड़ गया तो बस संगसार ही कर डालेंगे या फिर जबरदस्ती हमें अपनी मिल्लत में वापस ले जाएंगे, और ऐसा हुआ तो हम कभी फलाह न पा सकेंगे। उस तरह हमने अहले शहर को उनके हाल पर मुत्तला किया ताकि लोग जान लें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और ये कि कयामत की घड़ी बेशक आकर रहेगी। मगर जरा ख्याल करो कि जब सोचने की असल बात ये थी, उस वक्त वो आपस में इस बात पर झगड़ रहे थे कि इन अस्हाबे कहफ के साथ क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा, इन पर एक दीवार चुन दो, इनका रब ही इनके मामले को बेहतर जानता है। मगर जो लोग उनके मामलात पर गालिब थे, उन्होंने कहा, हम तो इन पर एक इबादत गाह बनाएंगे। कुछ लोग कहेंगे कि वो तीन थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ दूसरे कह देंगे कि पांच थे और छठा उनका कुत्ता था। ये सब बेतुकी हांकते हैं। कुछ और लोग कहते हैं कि सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कहो, मेरा रब ही बेहतर जानता है कि वो कितने थे, कम ही लोग उनकी सही तादाद जानते हैं। बस सरसरी बात से बढ़कर उनकी तादाद के मामले में लोगों से बहस न करो और ना उनके मुताल्लक किसी से कुछ पूछो, और देखो किसी चीज के बारे में कभी ये न कहा करो कि मैं कल ये काम कर दूंगा। तुम कुछ नहीं कर सकते इल्ला ये कि अल्लाह चाहे। अगर भूले से ऐसी बात जबान से निकल जाए तो फौरन अपने रब को याद करो और कहो, उम्मीद है कि मेरा रब इस मामले में रुश्द से करीब तर बात की तरफ मेरी रहनुमाई फरमा देगा।

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهد

0: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्ज़ा के साथ आइए जानते हैं वज़ारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वज़ारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ,
2: कुछ मिलेगा यहाँ।
1: और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट,
2: एमओआई वीकली अपडेट,
1: आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर,
2: विद आरजे सरवर।
0: वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनक्किद होने वाली खलीजी ताउन काउंसिल की सिक्योरिटी मीडिया अवेयरनेस टेक्निकल कमेटी के 12वें इजलास में रियासत कतर ने शिरकत की। वजारत दाखला के वफ्द की कयादत असिस्टेंट डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट कर्नल डॉक्टर जबर हमूद जबर अल नईमी ने की। इजलास के दौरान एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ मौजूदात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। शुरका ने सिक्योरिटी मीडिया के मैदान में जीसीसी ममालिक के दरमियान

कैंडिडेट्स के लिए दस्तयाब हैं जो ड्राइवर्स के तौर पर रिक्रूट किए जाते हैं। ये सर्विसेज उन्हें अपना जरूरी विजन टेस्ट अपने मुल्क में ही मुकम्मल करने का मौका देती हैं, जो सीधा जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रैफिक के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट के सिस्टम से लिंक्ड होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब ड्राइवर कतर पहुंचते हैं तो उन्हें दोबारा आई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी वक्त और मेहनत दोनों की बचत होती है। इस तरह वीजा के अमल का एक अहम हिस्सा पहले ही मुकम्मल हो जाता है, जो एप्लीकेंट्स के लिए आसानी, सहूलत और फास्ट प्रोसेसिंग का सबब बनता है। ये कदम मॉडर्न और एफिशिएंट सर्विसेज की मिसाल है, जो लोगों के लिए प्रोसेस को सिंपलीफाई करती है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। वज़ारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी अब्दुल्लाह बिन खलफ बिन हत्ताब अल काबी ने मुत्तहिदा अरब इमारात की वज़ारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरी मेजर जनरल स्टाफ खलीफा बिन हरीब अल खुबैली से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ब्रदर ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी तावन और हम आहंगी को मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के बाद दोनों जानिब से रियासत कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमतों के दरमियान मुश्तरिका सिक्योरिटी प्रोजेक्ट्स में तबादला की जाने वाली मालूमात और डेटा के तहफ्फुज़ से मुतालिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत किए गए। इस मुआहदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान तआवुन को मुस्तहकम बनाना और सिक्योरिटी और रेगुलेटरी जरूरियात के दरमियान मुअस्सर तवाज़ुन कायम करना है। इस मौके पर दोनों बरादर ममालिक के वज़ारत दाखिला के अंडर सेक्रेटरीज ने बायलेटरल ट्रैफिक सिस्टम इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा एंड डिपोर्टी फिंगरप्रिंट एक्सचेंज सिस्टम प्रोजेक्ट का भी इफ्तिताह किया। तकरीब में दोनों जानिब से सीनियर ऑफिसर्स और मुतालिक अहलकारों ने शिरकत की। ये अहम प्रोजेक्ट कतर और यूएई के दरमियान कायम मजबूत शराकत और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन की अक्कासी करती हैं। इनसे मुश्तरका सिक्योरिटी काम की कारकर्दगी में इजाफा होगा और डेटा और मालूमात के तबादले के निजाम को मजीद तरक्की मिलेगी, जो दोनों ममालिक के मुश्तरका सिक्योरिटी मुफादात के तहफ्फुज़ में अहम किरदार अदा करेगा। दोस्तों, सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास जुर्म रोकने और उनकी डिटेक्शन में मदद करते हैं। ये इंश्योर करें कि ये कैमरास सिर्फ लाइसेंस्ड और अप्रूव्ड कंपनीज के जरिए इंस्टॉल किए गए हों, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के सिक्योरिटी सिस्टम डिपार्टमेंट के साथ लाइसेंस्ड या रजिस्टर्ड हैं। ये आपकी प्राइवेसी की हिफाजत करते हैं और सेफ्टी को इनहेंस करते हैं। सिक्योरिटी सर्वेलेंस कैमरास आजकल हर जगह जरूरी हो चुके हैं, घर से लेकर ऑफिस तक। ये कैमराज ना सिर्फ जुर्म की रोकथाम में मदद करते हैं, बल्कि किसी भी हादसे के बाद इन्वेस्टिगेशन में भी मददगार साबित होते हैं। याद रखिए, अनऑथराइज्ड कंपनीज के थ्रू लगवाए गए सिस्टम आपकी प्राइवेसी के लिए रिस्क बन सकते हैं। सिर्फ लाइसेंस्ड कंपनीज ही आपकी डेटा प्रोटेक्शन और कैमरा कवरेज के हवाले से प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। कैमरास को एंट्रेंसेस, एग्जिट्स और पार्किंग एरियाज में इंस्टॉल करें। ये आपके लिए ज़हनी सुकून का बाइस बनते हैं, खासकर जब आप घर या ऑफिस में नहीं होते। रियासत कतर ने ऑस्ट्रेलिया के इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP की जानिब से जारी करदा ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में एक और अहम संगेबील हासिल कर लिया है। इंडेक्स के मुताबिक कतर ने मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका या मीना के तमाम ममालिक में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दुनिया के 163 ममालिक में से 31वें मकाम पर रहा। इंडेक्स ने कतर को अरब दुनिया में पहले नंबर पर भी करार दिया है, जबकि सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के शोबे में कतर ने दुनिया भर में 7वां मकाम हासिल किया। इस तरह कतर ने गुज़िश्ता साल के मुकाबले में एक दर्जा तरक्की की और दुनिया के महफूज तरीन 10 ममालिक में अपनी जगह मजीद मुस्तहकम कर ली है। ये कामयाबी रियासत कतर की उन मुसलसल कोशिशों का नतीजा है जो अमन, समाजी इस्तेहकाम और अवाम के तहफ्फुज को यकीनी बनाने के लिए की जा रही है। कतर की बुलंद रैंकिंग इस बात का वाज़े सबूत है कि मुल्क ने सिक्योरिटी, कानून की बालादस्ती और मुआशरे के अमन को फरोग देने में नुमाया कामयाबी हासिल की है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में ये आला दर्जा बंदी कतर के लिए एक नए एजाज की हैसियत रखती है और मुल्क के अमन, इस्तेहकाम और महफूज माहौल पर बैनुल अक्वामी भरोसे की मजबूत तरीन तस्दीक करती है।
ریاست قطر اور

0: रशियन फेडरेशन के दरमियान सिक्योरिटी तावन को मजीद मुस्तहकम बनाने की कोशिशों के सिलसिले में जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर्स सिक्योरिटी ने रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एक वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द का खैर मकदम स्टाफ लेफ्टिनेंट कर्नल नेवी हसन हमद अल सुलैती डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर्स सिक्योरिटी ने किया। इस मौके पर जनरल डायरेक्टोरेट के कई अफसरान भी मौजूद थे। रशियन वफ्द की क्यादत वाइस एडमिरल कैलगुनोव विक्टर एंड्रिविच डिप्यूटी चीफ ऑफ द नेशनल डिफेंस मैनेजमेंट सेंटर ऑफ द रशियन फेडरेशन कर रहे थे। दौरे के दौरान वफ्द को जनरल डायरेक्टोरेट ऑफ कोस्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी के फराइज और जिम्मेदारियों के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को साहिली हदूद के तहफ्फुज, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस की अंजामदेही और अहम समंदरी तनसीबात की सिक्योरिटी के हवाले से जनरल डायरेक्टोरेट के किरदार और काम करने के तरीकाकार से आगाह किया गया। ये दौरा कतर और रशिया के दरमियान सिक्योरिटी और डिफेंस के मैदान में बढ़ती हुई तआवुन की अहमियत को उजागर करता है। इस किस्म के तबादले वफूद दोनों ममालिक के दरमियान तजुर्बात के तबादले, मुश्तरक फाहम और सिक्योरिटी सलाहियतों को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। मेहतराज ऐप के जरिए वर्क वीजा आसानी और तेजी से मुकम्मल किया जा सकता है, जिसके लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत भी नहीं होती। इस खिदमत से फायदा उठाने के लिए सबसे पहले मेहतराज ऐप की होम स्क्रीन पर जाकर वीजा का इंतखाब करें, फिर रिक्वेस्ट एप्लीकेशन पर क्लिक करते हुए वर्क वीजा का ऑप्शन सिलेक्ट करें। वर्क वीजा के सफहे पर मुतालिक एप्लीकेशन नंबर सिलेक्ट करने के बाद इशू वीजा पर क्लिक करें। इसके बाद दरखास्त करने वाले शख्स की नेशनैलिटी का इंतखाब करें और उसके पासपोर्ट की वाज़े कॉपी अपलोड करें, फिर एक साफ और वाज़े पर्सनल फोटोग्राफ अपलोड करें। तमाम मालूमात अपलोड करने के बाद ज़ाती डेटा का एहतियात से जायजा लें और यकीन कर लें कि तमाम तफसीलात दुरुस्त हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। दरख्वास्त जमा करते ही अमल मुकम्मल हो जाएगा और एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के लिए मुतालिक अथॉरिटी को भेज दी जाएगी। ये डिजिटल खिदमत वीजा के इजरा के अमल को मजीद आसान, तेज और मौसर बनाती है और मुस्तफीद अफराद को घर या दफ्तर से ही अपनी दरख्वास्त मुकम्मल करने की सहूलत फराहम करती है। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: जेन ज़ी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो FOMO एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ। रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
3: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट।
2: गेम ऑन,
3: वॉल्यूम अप।
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
3: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिने किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। समय के नाम घर में दाखिल होने से पहले

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, हर मौसम की अपनी गिजाएं होती हैं और अपनी ही उनकी एनर्जी होती है, अपनी ताकत होती है, लेकिन आज हम जानेंगे कि हर मौसम में क्या खाना फ़ायदेमंद है। जैसे हम सर्दी का मौसम है तो जो विंटर की गिजाएं हैं उन पर हम बात करेंगे। उसमें सूप जो है वो बहुत अहम है, और उसमें आप चिकन का सूप ले सकते हैं, मीट का बना सकते हैं, जो आपको पसंद है, या वेजिटेबल सूप भी आप अपनी गिजा में शामिल कर सकते हैं। इस तरह से एलिमेंट्स हैं, शहद है यानी हनी।

0: इस्तेमाल कीजिए और गर्म पानी में लेंगे तो सर्दियों में आपको बहुत फायदा देगा। एग्स जो हैं वो अपनी गिज़ा में शामिल कीजिए। जो पोरिज है, ओट्स हैं, वो आप शामिल कर लीजिए ख़ास तौर पर ब्रेकफास्ट में। और इसी तरह से अपना जो जिस्म है उसे कुछ वार्म रखिए और उससे आप ज़्यादा तवानाई, ज़्यादा एनर्जी महसूस करेंगे। इस तरह अपनी गिज़ा में जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो आप ज़्यादा कर दीजिए। डिटॉक्स ड्रिंक्स होती हैं, बहुत सारी सिट्रस फ्रूट्स हैं, वो आप इस्तेमाल कीजिए। उससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो बूस्ट अप होती है। इसी तरह से जो पम्पकिन सीड्स हैं वो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। पम्पकिन जो फ्रेश है वो भी आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपकी हेल्थ के लिए बेहतर होगा। इसे डेट्स हैं, लेंटल सूप्स हैं, इन तमाम जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, और मगर ये कि उससे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो बेहतर होता है, और जब डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा तो फिर हमारी हेल्थ भी बेहतर होती चली जाएगी। तो इसलिए जो मौसमी खुराक है जो हमने आपके साथ शेयर की, उस पर ज़रूर तवज्जो दीजिए। उससे सेहत, तवानाई और बीमारी से बचाव का बेहतरीन जरिया होती है और इससे हम सेहतमंद रह सकते हैं। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107, दिल से देसी।
2: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के उभरते हुए गोलकीपर सलाह ज़करिया के बारे में। सलाह ज़करिया फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं कतर फुटबॉल के लिए, क्योंकि ही हैज़ ऑलरेडी शोन द इनफ टैलेंट दैट ही हैज़, और कई मैचेस में कतर के लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। उन्होंने अल दोहेल के लिए अपनी सलाहियतों का इजहार किया और धीरे धीरे नेशनल टीम के रडार पर आए। सलाह की रिफ्लेक्सेस, शॉट स्टॉपिंग और पेनल्टी एरिया में कॉन्फिडेंस उनकी सबसे बड़ी ताकत हैं, और इसी बात पर सलाह ज़करिया को टीम में रखा गया था 2-3 साल पहले, जबकि मैशाल बारसिम जो है वो नंबर वन गोलकीपर हैं। लेकिन टू बिल्ड द नेक्स्ट स्टेज ऑफ कतरी फुटबॉल, टू बिल्ड द नेक्स्ट फ्यूचर लाइनअप ऑफ कतरी फुटबॉल, स्पेशली गोलकीपर्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सलाह ज़करिया को चुना गया था। सलाह ज़करिया डिफेंडर्स के साथ बहुत ही बेहतर कम्युनिकेशन रखते हैं। इनफैक्ट कतर फुटबॉल एसोसिएशन ने उन्हें फ्यूचर के अहम गोलकीपर्स में शुमार कर दी है। अगर उनकी तरक्की इसी रफ्तार से जारी रही तो सलाह ज़करिया आने वाले सालों में कतर नेशनल टीम के नंबर वन गोलकीपर बन सकते हैं और मुल्क की फुटबॉल विरासत को मजीद मजबूत बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।

आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि कतर की वजारत सेहत यानी मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स को सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने के लिए क्या रहनुमाई करती है। डियर स्टूडेंट्स, सेहतमंद जिस्म और तंदुरुस्त जहन ही तालीमी कामयाबी की बुनियाद हैं। इसलिए कतर में सेहत के इदारे स्टूडेंट्स को मुतवाजन गिजा, जिस्मानी सरगर्मी, मुनासिब नींद और जहनी सेहत पर तवज्जो देने की तरगीब देते हैं। दिन का आगाज सेहतमंद नाश्ते से कीजिए, क्योंकि ये सबसे अहम खाना है। उसमें आप दलिया, होल व्हीट ब्रेड, अंडा, दूध और फल आप शामिल कीजिए। इससे आपकी तवानाई और जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ती है। इसी तरह जो सेहतमंद स्नैक्स हैं उन्हें आप सिलेक्ट कीजिए। चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के बजाय फल, सब्जियां, दही और नट्स जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। ये ना सिर्फ जिस्म को तवानाई देते हैं बल्कि पढ़ाई में भी कंसंट्रेशन को बेहतर करते हैं। रोजाना आप जिस्मानी सरगर्मी जरूर कीजिए और स्टूडेंट्स को कम से कम 60 मिनट्स जो है वो जिस्मानी सरगर्मी करनी चाहिए, जैसे कि आपकी ब्रिस्क वॉकिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है और स्विमिंग वगैरह। और इसी तरह से आपके जो दिल हैं वो मजबूत हो जाती हैं, जो वजन है वो भी बैलेंस में रहता है और टेंशन या स्ट्रेस जो है वो भी कम होता है। पानी ज़्यादा पीजिए, गर्मी का मौसम है और उसमें जिस्म को पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीना हमारे जिस्म को हाइड्रेट रखता है और फटीग या थकन से भी बचाता है। तो स्टूडेंट्स, स्क्रीन टाइम जो है वो महदूद कर दीजिए। जो मोबाइल फोन्स हैं, टैबलेट्स हैं और जो वीडियो गेम्स हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल आँखों, नींद और हमारी जिस्मानी जो सरगर्मी है उस पर मनफी असर डाल सकता है। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस तरह बढ़ती हुई उम्र के बच्चों और नौजवानों को रोज़ाना 8 से 10 घंटे की नींद जो है मयारी नींद वो दरकार होती है। अच्छी नींद से आपकी याददाश्त, आपकी कंसंट्रेशन और तालीमी कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। मेंटल हेल्थ का खास ख्याल रखिए, तो इसके लिए अपने दोस्तों और फैमिली के साथ वक्त गुजारिए, अपनी परेशानियाँ शेयर कीजिए और जो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हैं उनमें हिस्सा लीजिए। जहनी सुकून अच्छी सेहत का अहम हिस्सा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सेहतमंद आदत आज अपनाइए ताकि कल एक मजबूत, पुरएतमाद और कामयाब फ्यूचर हासिल कर सकें। बैलेंस डाइट, रोजाना की एक्सरसाइज, मुनासिब नींद और जो पॉजिटिविटी है वो आपकी कामयाबी का राज है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
6: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी। One step to 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया। One Step to 2030. आज हम बात करने वाले हैं एक और नए टर्म पर और ये टॉपिक है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। लेकिन नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है क्या? नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का मतलब है एक इकोनॉमी ऐसी जो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड ना करे बल्कि नॉलेज, स्किल्स और इनोवेशन पर भी फोकस करे। जी हाँ, कतर का नेशनल विजन 2030 का गोल भी यही है कि कंट्री ऑयल और गैस से आगे बढ़कर नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी बने। इस टाइप की इकोनॉमी में एजुकेशन, रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपर्टीज बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जब लोग एजुकेटेड और स्किल्ड होते हैं तो वो नए आइडियाज और इनोवेशंस क्रिएट करते हैं। ये न्यू आइडियाज जो है वो बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज क्रिएट करते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटीज हैं, रिसर्च सेंटर्स हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सब इस प्रोसेस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जब रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D का सपोर्ट मिलता है तो आप जानते ही हैं कि नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होती हैं और ये नई टेक्नोलॉजीज इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करती हैं। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी का एक और फायदा ये है कि ये सस्टेनेबल होती है। नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, होते जा रहे हैं, लेकिन नॉलेज और इनोवेशन कभी ख़त्म नहीं होते ना। इसीलिए लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए ये मॉडल अडॉप्ट करना बड़ा ज़रूरी हो गया है और शायद इसीलिए सारी कंट्रीज जो हैं वो कहीं ना कहीं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही हैं। देखिए, नॉलेज ही फ्यूचर की असली पावर है। जो कंट्रीज नॉलेज और इनोवेशन पर इन्वेस्ट कर रही हैं वही ग्लोबल लेवल पर कल जाके लीडर्स बनेंगी। और कतर का विजन हमेशा से लीडरशिप स्किल्स को प्रमोट करना है। जहाँ कतर का विजन 2030 इसी डायरेक्शन में एक स्ट्रॉन्ग स्टेप है कि किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को जो है वो प्रोसेस में लाया जाए और किस तरह से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के चलते कंट्री का या मुल्क का फायदा हो। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

ठहर लो, कुछ अपना सुना के थोड़ी खैर लो, महले विराम में यूं कर लो कयाम, इतना तो शर्फ बख्श होना मेरे शहर को। आज फिर शहर बारिश ने तर किया, जॉइंट जला धुआं बातें करे तंजिया, दिल किया लिखने को थोड़ी शायरी, बूंदों की गायकी ने लफ्जों को खर दिया, बार गाए हुसन के जमे गफीर में, क्या गुजरे कभी नजर से इस भीड़ में, तेरी आंखें हमें देखें इतना बहुत है, वरना तो तिश्नगी ऐसी के दिल को चीर दे, रोज तेरी मुस्कान का उठाते नुकसान, होश ही ना रहे जूंदे तारीफों के पुल बांध, धूमधाम छोड़ तेरी खामोशी में रह ले आकर, लेना सांस भी

जी सामने के नाम, जैसा कि आप जानते हैं मौजूदा दौर में टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है, लेकिन जहां आसानी है वहां कुछ मुश्किलात भी हैं। तो इसी वजह से हम देखते हैं कि इस दौर में इलेक्ट्रॉनिक जराइम काफ़ी उभर रहे हैं और मंजरनामे पर काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। बैंकिंग फ्रॉड की बात करें, मेल हैकिंग की बात करें, ऑनलाइन ब्लैक मेलिंग या क्रेडिट कार्ड की चोरी वगैरह, ये सब जराइम जो हम रोज़मर्रा मुख्तलिफ़ यानी प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आ रहा है। ओवरऑल आज के प्रोग्राम में हम जानने की कोशिश करेंगे कि साइबर जराइम की अकसाम क्या हैं और ज़ाती मालूमात ईमेल और क्रेडिट कार्ड के हवाले से हम किसे इसको इन चीज़ों को कैसे महफूज रखें। अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक मेलिंग का शिकार हो जाए तो वो क्या करे, कतर के कवानीन जराइम के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये सफ़र। हमारे साथ

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम। गर्मी में कहीं जाने की जगह चाहिए तो मैं बताऊंगा आपको, मैं हूं जी आपका डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, एंड वेलकम। इसको मैं शो कहूँ, इंफोटेनमेंट कहूँ, आप जो मर्जी कह लीजिए, नाम तो कतर 2026 ही है, कतर 2026। और आज के एपिसोड में भी आपको बहुत सारी जगहों पे जाने का रास्ता मैं बताऊंगा, या फिर बताऊंगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है और आप जा सकते हैं, इट्स योर चॉइस। कुछ इवेंट्स हो चुके हैं, कुछ इवेंट्स होने वाले हैं और कुछ इवेंट्स होंगे, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar। देखो भाई, हमारी दुआ के बारह हाथ तो है नहीं, हो सकता है कोई ऐसे इवेंट हो जो हमसे मिस हो गए हो, से मिस हो गए हो, तो वो आप भी बताइएगा कि भाई यहाँ पे इस कोने में ये चल रहा है, इसके बारे में ही बात कर लो, तो वो जरूर जरूर बताइएगा। एंड सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, साथ ही साथ व्हाट्सएप भी है 666-22107। तो कतर 2026 का मकसद ये है कि इवेंट्स जो कि इस साल होने वाले हैं या कुछ हो चुके हैं, उन सब के बारे में बात की जाए। कुछ इवेंट्स ऐसे होंगे जिनके बारे में अभी बात कर रहा हूं, लेकिन जब आप मुझे सुन रहे होंगे तो इवेंट्स हो चुके होंगे, तो उस तरीके से इसे समझिएगा, बिकॉज दिस इज दिस कवर्स एवरीथिंग अराउंड यू। तो सबसे पहले उस इवेंट के बारे में बात कर लें जो होने जा रहा है, कुछ वक्त बाद है, थोड़े से महीने बाकी हैं, पर मैं अभी से आपको आगाह कर दूं, अगर आप इनके बारे में जानते हैं या फिर किसी के साथ जाने वाले हैं तो आपके लिए जानना जरूरी है, इवेंट बड़ा ही खास है। सो पहली मर्तबा दोहा में, अब तो मैं ये कह के भी थक चुका हूं, कतर में कितनी सारी चीजें हो रही हैं एंड अराउंड एवरीथिंग एल्स, बहुत सारे कॉन्सर्ट्स भी हो रहे हैं, और फर्स्ट टाइम इन दोहा एक फ्रेश आवाज, वो एनर्जी और बहुत सारी मोहब्बत लिए एक अनफॉरगेटेबल रात के लिए परफॉर्म करने आ रही हैं मैरिलिन नामन। ये जो अनफॉरगेटेबल इवनिंग जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, इसमें मैरिलिन नामन परफॉर्म करेंगी कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में, और अमेजिंग परफॉर्मेंसेज ऑलरेडी वो दुनिया भर में दे चुकी हैं, एंड नाउ दिस विल बी एन अगेन अनदर आइकॉनिक परफॉर्मेंस, सो कैप्टिवेटिंग एंटरटेनमेंट। और ये कतर के वेन्यू की पहचान है, और कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में जितने भी इवेंट्स होते हैं कमाल के होते हैं। एक तो उसकी जो सिटिंग एरिया है मुझे बहुत पसंद है, लाइक यू कैन लिटरली सी एवरीथिंग। कभी आपको अरे सर ये नीचे करिए, अपना सर इधर करिए, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू कैन सी द स्टेज क्लियर एज डे, और इससे बेहतरीन बात हो नहीं सकती है। सो कतर नेशनल कन्वेंशन सेंटर में जो इवेंट होगा, इसमें अभी टाइम है एज आई मेंशन, तो ये अक्टूबर में रखा गया है 22 अक्टूबर को, और ये रात के 8 से 9 के बीच में होगा, अभी टाइम है।

जनता शायद मैरिलिन मैनसन के बारे में ना जानती हो, विच इज फाइन, बट एक्सपीरियंस करने के लिए जरूर जाएगा. आई शेयर वन एक्सपीरियंस विद यू. कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा का इवेंट था एंड मुझे कोई आइडिया नहीं था भाई, कोई आइडिया नहीं था कि क्या होने वाला है. I've never been to an orchestral event उससे पहले, but मैं गया ऐसी, you know, just to try it out कि क्या होगा. और आज की तारीख में मैं कैलेंडर पे देखता रहता हूँ कि कब परफॉर्म करेंगे कतर फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा, कि मैं सबसे पहले वहाँ पे जाके बैठ जाऊँ. सो अगर आप मैरिलिन नामन के बारे में नहीं जानते, सबसे पहले थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और फिर जाके एक बार परफॉर्मेंस देखिएगा. आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है कि एक नए आर्टिस्ट को जानने के बाद, उसे देखने के बाद, आप शायद उसके फैन हो जाए, शायद कुछ ऐसा अनलॉक हो जाए जो आपने कभी एक पहले एक्सपीरियंस ना किया हो. सो दिस शुड बी इन योर माइंड राइट नाउ. ओके, मूविंग ऑन टू अनदर इवेंट. अगला इवेंट जो है एक आउटडोर लाइव स्क्रीनिंग एक्सपीरियंस है और ये आपके लिए अब भी है. सेंट्रो कतर, सेंट्रो कतर तैयार है आपको एक्सपीरियंस देने के लिए और ये 11 जून से 19 जुलाई तक चलता रहेगा. जो इवेंट है पूरा का पूरा, ये शोकेस करेगा सारे के सारे क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप मैचेस. आई डोंट नो हू आर यू सपोर्टिंग, बट मैं इस टाइम फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ फॉर सम ऑड रीजन, पता नहीं क्यों, बट मैं कर रहा हूँ मेरी मर्जी, तो आप किसी को भी सपोर्ट कर रहे हो. ये इवेंट आपको सारे क्वालिफाइंग वर्ल्ड कप मैचेस दिखाएगा, इंक्लूडिंग 3 गेम्स जिसमें कतर नेशनल टीम परफॉर्म कर रही है. खास करके वो इवेंट एक साइजेबल 8x4 मीटर की 4K LED स्क्रीन लगी है यहाँ पर, जो कि आउटडोर प्लाजा का हिस्सा है और ये इक्विप्ड है एयर कंडीशन के साथ. तो गर्मी है तो कोई गाल नहीं भाजी, आउटडोर का एक्सपीरियंस AC में मिलेगा, यही तो कतर की पहचान है. एंड दैट्स हाउ इट शुड बी. टिकट्स आप देख लीजिएगा, टिकट्स आर रेंजिंग फ्रॉम 50 कतरियल एंड गोज अप टू द प्रीमियम टिकट, लेकिन ज़्यादा महंगे टिकट्स नहीं है और बहुत अच्छी बात है कि ज़्यादा महंगे इन्होंने रखे नहीं है, विच इज़ रियली रियली गुड. यहाँ पे आपको एक NFC रिस्ट बैंड मिलेगा जैसे ही आप इसका टिकट खरीदेंगे और उसको उसकी वजह से आपको पूरे वेन्यू का एक्सेस मिल जाएगा. यहाँ पे कैशलेस पेमेंट्स भी अवेलेबल हैं, 15 पार्टिसिपेटिंग बैंड्स हैं और 10 डेडिकेटेड FNB कायोस्क यहाँ पे लगाए गए हैं. इसके अलावा कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं इस इवेंट के लिए जो आपको जानना ज़रूरी है, जिसमें जो बच्चे हैं अंडर 6 ईयर्स ऑफ एज उनको एंट्री फ्री है, फ्री ऑफ चार्ज, एब्सोल्युटली मुफ्त में. एंड उनके साथ जो है एक टिकट होल्डिंग बस एक अडल्ट होना चाहिए, आपको 6 साल का बच्चा क्यों ही जाएगा अकेले, पर एक साथ में अडल्ट होना चाहिए, उनके लिए कोई रिस्टबैंड की रिक्वायरमेंट नहीं है. अगेन बता दूं, जो अंडर 6 है इसके साथ साथ एक्सेसिबल है. जो सीटिंग एरिया है उसका वेन्यू का लेआउट बड़ा ही अच्छा, बहुत ही शानदार बनाया गया है. डेडिकेटेड फ्रंट व्यूइंग एरिया भी है जो कि व्हीलचेयर यूजर्स के लिए है. तो हर चीज़ का ध्यान रखते हुए ये खास करके स्क्रीन लगाई गई है सेंट्रो कतर की, आउटडोर एक्सपीरियंस फॉर द वर्ल्ड कप. ऑफकोर्स कतर में नहीं हो रहा तो क्या हो गया, सबसे बेस्ट वर्ल्ड कप तो हम ही ने देखा है, हम ही ने करवाया है, तो हम तो इन्जॉय करेंगे भाई. तो ये बड़ी बड़ी स्क्रीन पर देखने को मिलेंगे सारे क्वालिफाइंग मैचेस इंक्लूडिंग कतर की मैचेस, तो ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए. जैसे मैंने कहा कि सेंट्रो जाना ही कहाँ पर है, रौदत अल हमाम में है, रौदत अल हमामा. तो रौदत अल हमामा में आप जाइएगा सेंट्रो एंड ये 11 जून से 19 जुलाई तक है, 19 जुलाई तक. सो यू कैन वॉच ऑल द मैचेस रात के 8:30 से रात के 12 तक. ऑफकोर्स द मैच विल स्टार्ट 10:09, तो वो आप जाके देख लीजिएगा, वो टाइमिंग्स के बारे में आपको श्योरिटी मिल जाएगी जब आप चेक करेंगे. एंड यू कैन एक्सपीरियंस ऑल द मैचेस एंड दैट इज अ ब्यूटीफुल. आई डोंट नो किसको सपोर्ट कर रहे हैं, मैं फ्रांस को सपोर्ट कर रहा हूँ. आई हैव अपेरेंटली नो रीजन टू सपोर्ट, लेकिन मुझे लगता है कि एम्बापे ने जिस हिसाब से पिछले वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस दी थी, इस बार बनता है यार लड़के का कप उठाना, क्या कहते हो? लोग CR7 भी बोलेंगे. आई नो मैं फुटबॉल का इतना जानकार नहीं हूँ, मैंने जिंदगी में फुटबॉल खेला भी नहीं है, पर कतर में आके मैं फैन हो गया फुटबॉल का. पिछले वर्ल्ड कप नहीं, इट जस्ट टीचेस यू एवरीथिंग. अगर आप नए हैं फुटबॉल से, आपका कभी रब्ता नहीं रहा है, तो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको कतर में समझ में आ जाएंगे. मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा ही हुआ है और इसलिए मुझे लगता है कि जब पिछली मरतबा फ्रांस आखिरी तक पहुंचा था, तो इस बार भी बढ़िया कर जाए तो बढ़िया बात है. वैसे टीम धुरंधर खिलाड़ियों से भरी पड़ी है और मुझे लगता नहीं है कि ये लोग जल्दी बाहर जाने वाले हैं. एक आध को लेके ही जाएंगे या फिर वर्ल्ड कप सीधा उठा के लेके जाएंगे. टेल मी अबाउट योर फेवरेट टीम एज वेल, कौन सी पसंदीदा टीम है आपकी 666-22-107 पर. लेट्स सी क्या क्या माहौल है. हा? बढ़ते जरा अगले इवेंट की तरफ, आजो. अब जो अगला इवेंट है ये अलखोर के कोस्टल एरिया में है. यहाँ पर आपको बड़े बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट और द पर्पल आइलैंड की ब्यूटी नजर

आएगी भाई, क्या जगह है यार ये, मुझे बहुत पसंद है. दिस इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द नेचुरल वंडरलैंड. और ये एक्सप्लोर करने के लिए आपको कायक मिलेगी भाई, आपको याद है पिछले हफ्ते मैंने बताया था, और पूरा का पूरा गाइडेंस मिलेगा. देयर आर नेटवर्क ऑफ चैनल्स शेप्ड बाय द टाइडल फोर्सेस, और उसके हिसाब से आपको सब बताएंगे. एक पूरी टीम है इनकी, एरिया टीम है, जो बताएगी आपको अलग अलग चिड़िया की किस्मों के बारे में, डाइवर्स बर्ड स्पीशीज बेसिकली, एंड जो नेचर एंथुजियास्ट्स हैं उनके बारे में भी, उनके लिए भी बहुत कुछ है. अब देखिए सनराइज और सनसेट दोनों का इंतजाम है इसमें, वो टाइम आपके हिसाब से. अब आप इसी टाइम सनराइज के टाइम ऑब्जर्व करना चाहते हैं चीजें, या सनसेट के टाइम पे ऑब्जर्व करना चाहते हैं चीजें, इट्स अप टू यू. पर आपको वो खूबसूरत चिड़िया जो आपने शायद जिंदगी में ना देखी हूँ, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखी थी भाई पिछली बार जब गया था, और वो जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है पूरे फॉरेस्ट का, वो जो सूदिंग साउंड्स हैं, वो पानी की आवाज़, वो आसपास के सुकून की आवाज़, आह क्या लाइन है, तो वो आपको एक्सपीरियंस करने की हमली. अच्छा यहाँ पर सिर्फ आप ये मत सोचिएगा कि आप जाएंगे फैमिली के लिए दिक्कत होगी, नहीं, इट इज़ वेरी वेल सूटेड फॉर फैमिलीज, फैमिलीज को लेकर जाइए. एंड किसी को अगर लेजरली पैडल चलाते हुए कायक में रहना है तो वो ज़रूर ज़रूर आए भाई, पीछे बिल्कुल ना हटे. ग्रीनरी, बर्ड लाइफ, नेचर रिजर्व, तीनों का कॉम्बिनेशन. एंड ऑल्सो ये सोशल गैदरिंग की तरह भी देखा जा रहा है, जो बैचलर्स होंगे उनके लिए अलग से एक सिस्टम रखा गया है, और ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप नए लोगों से मिले, नए लोगों के बारे में जाने, एंड यू मेक फ्रेंड्स ऑल्सो, यू नेवर नो, यू नेवर नो, राइट. सो जो टूर का टाइम रखा गया है वो सुबह के जो सनराइज वाला टाइम है वो सुबह के 5 बजे से सुबह के 7 बजे के बीच में, तो अपने दिन की शुरुआत आप कायकिंग से कर सकते हैं. लिटरली यू कैन स्टार्ट ऑफ योर डे विद कायकिंग. एंड वो जो सनराइज, आ हा हा हा, सूरज उरूज पे जा रहा है, आप मैंग्रोव फॉरेस्ट में है, सूरज जग रहा है, आपकी आंखें खुल रही हैं, नाश्ता याद आ रहा है, भूख लग रही है, सामने बर्ड लाइफ के बारे में बताया जा रहा है, और पूरा आसमान जो है अपने आप को पेंट कर रहा है इन द गोल्डन ह्यूज, और क्या चाहिए भाई. वो जो एनर्जाइजिंग तरीका होता है दिन की शुरुआत करने का, दिस कैन बी वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू. मैं कायकिंग एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, आई कैन अश्योर यू कि ये एक्सपीरियंस आप ता उम्र नहीं भूलेंगे. ऑफकोर्स एक मैं आपको पॉइंट बता दूं, कायकिंग करने जा रहे हैं तो मैंने पिछली बार बोला था वार्म अप करके जाइएगा भाई, नहीं तो हड्डियां जो है ना, जो मसल्स हैं आपके और हड्डियां दोनों एक ही जगह पर रह जाएंगे. ये मेरी फेयर वार्निंग है, बिकॉज इफ यू नॉट वर्किंग आउट एट ऑल और आप जिंदगी भर आलसी रहे, आप सोचेंगे कि मैं तो अभी जाके काइकिंग कर लूंगा, होगा नहीं भाई साहब, ऐसा होगा नहीं. जब चप्पू चलवाते हैं ना तो हाथ एक ही जगह रह जाता है, तो प्लीज वार्म अप कीजिएगा, वहां पे भी आपको वार्म अप पूरी तरह से कराएंगे वो लोग. बट देन टू हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग, आई थिंक यू शुड डू वार्म अप और एक्सरसाइज वगैरह अगर आप करते हैं तो बेहतरीन. अभी से लग जाओ, अभी से लग जाओ, कोई टेंशन नहीं है. अच्छा सुबह का मैंने टाइम बता दिया, लेकिन शाम का भी जान लीजिए. सो इफ यू लव सनसेट्स, कुछ लोगों को सनराइज पसंद होता है, कुछ लोगों को सनसेट पसंद होता है, द गोल्डन आर, ओ हो, ये कवर करना चाहते हैं तो भी आप शाम में पहुंच जाइए. तो सनसेट मैंग्रोव काइकिंग जो है वो पूरा एडवेंचर शाम के लिए अवेलेबल है, शाम के 4 बजे से 6 बजे के बीच में, ठीक है. तो इस वक्त भी आप पहुंच सकते हैं, यहां पर भी आपको कायक मिल जाएगी. और वो जो ऑब्जर्व करने का तरीका है कि बर्ड्स की लाइफ सुबह कैसे होती है, शाम में कैसे होती है, यू विल सी इट विद नेकेड आइज. एंड अलग अलग बर्ड स्पीशीज एंड पर्पल आइलैंड में आराम, स्विमिंग और स्नोलेकिंग, स्नॉकलिंग सॉरी, और हर दिन आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, फॉलोड बाय अ डिलीशियस बारबेक्यू मील. ओए भाई बहुत मस्त बारबेक्यू मील है, बहुत मस्त. और बिडाउन कैंप भी उन्होंने वहाँ पे लगाया, वो भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. अदर इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है वो जान लीजिए. कायकिंग फंडामेंटल्स और सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको ऑन बोर्ड दिए जाएंगे वहाँ पे जैसे आप पहुँचेंगे, एंड आपको बाकायदा वहाँ पे वार्म अप मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. इसके अलावा ऑल कायकिंग इक्विपमेंट सबका सब दिया जाएगा, पैडल्स, लाइफ जैकेट्स, सिंगल डबल कायक सब अवेलेबल है. और 90 मिनट की जो गाइडिंग काइकिंग एडवेंचर है वो आपको प्रॉपर दिया जाएगा, सो डोंट वरी. आपको ये नहीं कहा जाएगा कि ये लो कश्ती ले जाओ पानी में, चप्पू चला के पहुंच जाओ आगे तक, नहीं ऐसा कुछ नहीं है. दे विल बी अ टीम विद यू, दे विल गाइड यू, दे आस्क यू टू स्टॉप, दे आस्क यू टू चप्पू चलाओ, सब करवाएंगे आपसे, और आपको बहुत मजा आएगा इन 90 मिनट में. जैसे मैंने कहा यहाँ पे रिफ्रेशमेंट्स हैं, बॉटल वाटर है, जूस है, और कड़क चाय के बना तो भाई कैसे पूरा होगा मामला, वो भी है भाई उठे. इसके अलावा इंग्लिश अरेबिक स्पीकर्स दोनों आपको मिलेंगे, जो आपके टूर गाइड्स रहेंगे, आपको पल पल गाइड करते रहेंगे. यहाँ पे आपके साथ एक सर्टिफाइड लाइफ गार्ड भी रहेगा, तो डोंट वरी, आई नो देर आर पीपल हु आर हाइड्रोफोबिक, आई हैव सीन देम पर्सनली एंड आई रिस्पेक्ट दैट, कोई दिक्कत नहीं है. आपको सर्टिफाइड लाइफ गार्ड मिलेंगे, फर्स्ट एडर्स मिलेंगे जो आपको लगातार आपके लगातार साथ रहेंगे. इसके अलावा बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ ऑब्जर्वेशन के लिए भी वहाँ पे गाइड्स मौजूद.

0: दें और एजुकेशनल ब्रीफिंग है मैंग्रोव इकोसिस्टम के बारे में ताकि आप क्लोजली जान पाए. एंड इसके अलावा स्विमिंग आप कीजिए और बीच में ब्रेक मिलेगा वर्पलैंड में घूमने के लिए. और भी डाउन इन कैंप फैसिलिटीज मिलेंगी जिसमें शार्स हैं, टॉयलेट्स हैं, चेंजिंग रूम्स हैं, सीटिंग एरियाज हैं, सब कुछ है. एंड मरीन इंश्योरेंस कवरेज है. अब इसके बाद भी आप सोच रहे हैं तो दिक्कत है भाई साहब. सनसेट का जो डिटेल्ड आइटनरी है वो बता दूं, 3:30 बजे पहुंचने का सिस्टम है. 3:30 बजे आप एक्वा स्पोर्ट्स पहुंचेंगे. एक्वा स्पोर्ट्स एक कैंप है जो अलमीरा पार्किंग लॉट के पास है, अल तखीरा के पास. एंड उसके बाद आपको पूरे डायरेक्शन दिए जाएंगे. 4 से 6 के बीच में सब मामला शुरू होगा. सेफ्टी ब्रीफिंग होगी, कायकिंग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे और आप पैडल करेंगे 90 मिनट के लिए. इस सीनिक मैंग्रोव के एक्सप्लोरेशन करते हुए आगे तक जाएंगे. 2 रिफ्रेशमेंट ब्रेक्स हैं, उसमें एजुकेशनल ब्रीफिंग है जिसमें बताएंगे आपको कि भाई पर्पल आइलैंड को पर्पल आइलैंड आखिर कहते क्यों हैं और पर्पल आइलैंड की हिस्ट्री के बारे में जान पाएंगे और इकोसिस्टम को समझ पाएंगे. उसमें आपको मच्छियां कूदती हुई भी नजर आएंगी भाई. देयर आर मेनी सी क्रीचर्स जो बड़े क्यूटी पटूटी हैं वो भी नजर आएंगे. इसके अलावा 6 से 8 के बीच में यू कैन रिलैक्स एक अरेबियन टेंट में, और वो भी देसी टेंट भाई, मतलब देसी इन एन अरेबिक वे, तो ग्राउंडेड, काफी सादगी वाला जो टेंट होता है. तो वहां पे आप आराम से यू कैन जस्ट विटनेस अ स्पेक्टेकुलर सनसेट फ्रॉम द बीच इटसेल्फ. और उसके बाद डिलीशियस बारबेक्यू, अडल्ट्स ओनली हैं बारबेक्यू. इसके अलावा ग्रिल्ड चिकन शावरमा है, बच्चों के लिए स्पेशली अलग रखा गया. मैं तो बच्चा ही हूं, मैं तो उसकी तरफ जाऊंगा. वेजिटेबल मील्स भी हैं अपॉन रिक्वेस्ट. अगर आपको लगता है कि आप नहीं खाते मीट, यू आर वेजिटेरियन, और आप मतलब पता कि आपको पता ही होगा, तो उसके लिए भी इन्फॉर्मेशन है. और आप आराम से जो है यू कैन चेंज एवरीथिंग एंड यू कैन आस्क देम कि आपको वेज खाना है, एंड दे विल प्रोवाइड, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो उसकी लोकेशन क्या है? पर्पल आइलैंड. और फिटनेस लेवल वैसे तो देखो कुछ है नहीं, पर मैंने गाना थोड़ा सा है, वार्म अप करके जाना. 1.5 मीटर की वाटर डेप्थ है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी. अब यहाँ पे आपको क्या लाना है कैन बी योर क्वेश्चन. तो देख लेना भाई, बंद जूते ले जाना, कहीं खुले खुले लोफर पहन के मत चले जाइएगा, सैंडल्स ले जाइएगा ज़्यादा बेहतर रहेगा. बट क्या है, याद रखिएगा कि थोड़ा सा रॉकी मामला है चलने फिरने में, तो उस हिसाब से जूते देखिएगा. लाइट लूज फिटिंग क्लोथ्स लीजिएगा और चेंज कर सकते हैं आप क्लोथ्स आफ्टर द टूर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. आप चाहें तो खुद का टॉवल वैसे तो लेके आइए, खुद का टॉवल लेके आइए, सनस्क्रीन, सनग्लासेस, हैट, कैप, व्हाटएवर यू वांट. और प्लीज मुझे बताया गया था पिछली बार भी कि भाई प्लीज फोन मत गिरा देना भाई. गीला वीला कर लिया, फोन खराब कर लिया, हो गया भाई, ना स्पीड दिया आपने फोन की. तो इसके लिए आप वाटरप्रूफ फोन केस ले लीजिए. अगर नहीं है तो फोन को अलग रख के जाइएगा, गाड़ी वाड़ी में रख के. ठीक है, इसके अलावा रियूजेबल वाटर बॉटल ले जाएं तो और बेहतर है. उसमें क्या है, आप एनवायरनमेंट की मदद करेंगे, आप एलिमिनेट करेंगे प्लास्टिक यूज को और रीयूज की तरफ जाएंगे, ज्यादा बेहतर है. एंड ऑल्सो जो कल्चरल रूल्स हैं कतर के, उन्हें फॉलो कीजिएगा. इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, आप कर लेंगे. इतना तो यहाँ रह रहे कि आप जान ही गए, तभी आप मेरे को इतनी देर से सुन रहे हैं फॉर कायकिंग. सो प्लीज डू दैट. इसके अलावा ये जो पूरा का पूरा इवेंट है पर्पल आइलैंड में होगा और 8 से 30 सितंबर तक है. तो अभी से लेकर, अभी चल ही रहा है ऑलरेडी, और ये 30 सितंबर तक है. दिस इज एट पर्पल आइलैंड कतर, शाम के 4 बजे से शाम के 6 बजे तक. उसके बाद तो आप खाना पीना शुरू कर देंगे, बट द एक्टिविटी इज फॉर 2 आवर्स, 4 से 6 बजे. सो डू नॉट मिस आउट ऑन दिस वन. सितंबर तक का टाइम है आपके पास. आपको लग रहा है अभी वेदर कुछ ज्यादा है, ही ओ थका रहा है, सो वेट फॉर इट, डोंट वरी. सितंबर तक आप इंतजार कीजिए, सितंबर में भी आप जा सकते हैं, बट नॉट मोर देन दैट. एंड आई थिंक आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में, एक मरतबा ऐसी चीजें कर लो भाई जो याद रहे. एंड दीज आर गुड स्टफ, यू नो, ये चीजें एक्सपीरियंस करनी चाहिए. इसके अलावा बढ़ते हैं अगले इवेंट की तरफ. आप सुन रहे हैं कतर 2026 सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी. देखो अगला इवेंट जो है, मैंने पिछली बार बताया था, एंड इट स्टिल होल्ड्स अ वेरी स्पेशल प्लेस बिकॉज ये मुझे बड़ा यूनिक लगा. एक ऐसा एडवेंचर जहां पर विजिटर्स एक जगह पर पहुंचेंगे एंड अपने अंदर का जो कलरिंग आर्टिस्ट है, इमेजिनेशन है, उसको सामने रखेंगे. आपको मौका मिलेगा कि आप कलरामा सिटी की तरफ पहुंचें और रीस्टोर करें कलर्स को, एक पूरे शहर को रंगों से भरने का मौका मिलेगा आपको. ये जो एक्सपीरियंस है, इट इज जस्ट वे मोर अमेजिंग देन आई कैन एवर टेल यू. इसमें इमर्सिव एनवायरनमेंट्स हैं, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस लगाए गए हैं, लाइव स्टेजेस, परफॉर्मेंसेज हैं, एंड एक अपॉर्चुनिटी है. और बहुत सारे कैरेक्टर्स आपके सामने होंगे, बच्चों को जरूर ले जाएं, उनको उनसे मिलने का मौका मिलेगा और एक इंगेजिंग और मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहेगा पूरी फैमिली के लिए और ये सारे एजेस के लिए, मतलब हर एज ग्रुप के लिए. और इसको डिजाइन ही इसके लिए किया गया है कि एक इमर्सिव वॉक थ्रू हो सारे अट्रैक्शंस आपके आसपास, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो कंबाइन करता है इनोवेशन को, लाइट्स को, साउंड डिजाइन को, प्रोजेक्शन इफेक्ट्स को, मोशन एलिमेंट्स है उसके अंदर, एंड एक गेम प्ले, एक सॉर्ट ऑफ अ गेम दैट यू प्ले, एंड इट्स क्वाइट सरियल. ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने. पिछली बार जब मैंने बोला था तो मैंने देखा नहीं था. नाउ आई हैव सीन द वीडियो एंड जो मल्टी सेंसरी एनवायरनमेंट इन्होंने बनाया है वो भाई कतई एंगेजिंग है यार. मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा कुछ मैं कभी देख भी सकता हूँ. ये आपके पास मौका है, विजिट दिस. ये वीकडे में होगा 2-10 रात के, और वीकेंड्स में होगा दोपहर के 2-11, एक घंटा ज्यादा. तो लोकेशन क्या है? लोकेशन है कतारा कल्चरल विलेजेस, कतारा कल्चरल विलेज का साउथ पार्किंग एरिया जो है. वैसे तो बहुत इजी है, आपको वहाँ पे बैनर्स भी दिख जाएंगे इसके, एंड ये साउथ की तरफ जो पार्किंग एरिया है वहाँ पे जाना है आपको. ये इवेंट अभी शुरू नहीं हुआ है, बहुत जल्दी शुरू होने वाला है. ये 15 जुलाई से शुरू होगा और 15 सितंबर तक रहने वाला है. मैं आपको ये समझाऊँ इस इवेंट के बारे में. एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, बिकॉज आई डोंट नो मैं इसे ढंग से सेल कर पाया हूँ कि नहीं. आपके घर में बच्चे हैं, है ना, चलो बच्चे नहीं भी हैं, आप सिंगल हैं, आप यहाँ जाएंगे तो आपको कुछ रील्स से और इन सब से दूर भागने का मौका मिलेगा. इस मौके को ना छोड़िएगा नहीं. काफ़ी इंटरेक्टिव वर्ल्ड बनाया इन्होंने, बहुत मेहनत करी है, एंड आई थिंक इसको एक्सपीरियंस कीजिए आप. कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमारी नज़रों के सामने होती हैं और हम एक्सपीरियंस नहीं करते हैं, फिर वो रह जाती हैं. दिस इज समथिंग यू शुड एक्सपीरियंस, एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू एक्सपीरियंस, टेक योर किड्स विद यू. आई एम प्रीटी श्योर उनके लिए ये बहुत बहुत ज़बरदस्त चीज़ है. ऐसी चीज़ें, ऐसा इवेंट जो है वो बच्चों की कॉग्निटिव एबिलिटीज को बढ़ाता है, उनके रिएक्शन टाइम को और ठीक करता है. तो प्लीज उसी के वास्ते यहाँ पे जरूर जरूर पहुंचे. सो 15 जुलाई से 15 सितंबर कतारा कल्चर विलेज साउथ पार्किंग, दोपहर के 2 बजे से रात के 10 बजे तक इवेंट है. कलारामा सिटी वहां पे आप पहुंचेगा एंड यू विल एब्सोल्युटली लव इट. मैं बता रहा हूँ, इसका वीडियो आप देख लीजिए एक बार ही जाके, आप कहेंगे कभी ठीक कह रहा है यार, यहाँ एक मरतबा तो जाना चाहिए. ये एक्सपीरियंस मत छोड़ो भाई, मैं खुद जाऊंगा और बहुत मजा आएगा मुझे पता है. Okay, moving on to the next thing on the list. Qatar 2026. जो अगली चीज है, ये इसके बारे में मैं हमेशा शुरुआत में बात करता हूँ, लेकिन मैं अभी इस बारे में बात करूंगा जो है स्टेकेशन को लेके. अब देखो भाई, बहुत सारी फैमिलीज विल फ्लाई आउट, वो चले जाएंगे कहीं ना कहीं, जिनके बाद ज्यादा रोकड़ा है वो यूरोप उड़ जाएंगे, और कुछ लोग अपने बच्चों के साथ जिनकी छुट्टियां होंगी उनके साथ वो चले जाएंगे, और मेरे ख्याल में अभी छुट्टियां शुरू होने वाली होंगी, हो रही, चली रही होंगी. दे माइट हैव मूव टू सम अदर प्लेस कुछ वक्त के लिए, और कोई नानी के घर, कोई कहीं ना कहीं गया होगा. बट वो जो फैमिलीज हैं जो नहीं जा पाई हैं किसी वजह से, आई थिंक दे शुड डेफिनेटली डू द स्टेकेशन थिंग. बिकॉज फैमिली को अगर स्टेकेशन के लिए आप ले जाएं तो जरूरी नहीं कि आप भाई महीने भर ही जाएंगे हम तो. वीकेंड्स पर भी आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. और क्यों कह रहा हूँ मैं गर्मी में स्टेकेशन करने के लिए, बिकॉज गर्मी में आपको बहुत सारे होटल बहुत सारे ऑफर्स देंगे, एंड दे काइंड ऑफ हैव थिंग्स जहाँ पर आपको समर्स के हिसाब से ऑफर मिलते हैं, एंड किड्स रियली रियली इन्जॉय दीज थिंग्स. इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता कि अरे टिकट्स बुक करो, फलाना करो, डिमकाना करो, तो आराम से हो जाता है. और बहुत सारे होटल्स हैं जिनके रूम्स भी बहुत अच्छे रेट में, बजट फ्रेंडली हैं, एंड उनका जो सिस्टम है, स्पेशली कतर की तारीफ मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो होटल्स हैं दे आर नॉट लाइक अदर रेगुलर होटल्स हैं, सबको सेम ही तो है, वैसे वाली फीलिंग नहीं है. यहाँ पे देर आर वेरी वेरी क्रिएटिव होटल्स, यू नो मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ पे बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू प्रोमोट अ स्पेसिफिक होटल, बट देन वकरा में है एक, बड़ा ही क्रिएटिव है भाई, बैम्बू की रूफ लगा रखी है उन्होंने, बढ़िया गार्डन प्ले एरिया है. देर आर होटल्स जहाँ पर इन्फिनिटी पूल है, देर आर होटल्स जहाँ पे पूल का सिस्टम ही अलग है, और बहुत सारे रिजॉर्ट्स इतने कमाल के हैं स्टेकेशन के लिए जहाँ पे आपको प्राइवेट पूल मिलता है, व्यूज मिलते हैं शानदार. तो जाइए, एंड इफ इट इज नॉट योर थिंग, आपको तो व्यूज चाहिए है ना, समंदर का व्यूज नहीं, आपको सोशल मीडिया के व्यूज चाहिए, तो उसके लिए भी सही सिस्टम है. आप जाइए, अपने अंदर के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को भी बाहर निकालिए, इन जगहों से डेफिनेटली मदद मिलेगी. सो देयर आर मेनी मेनी ऑप्शंस जहां पे आप जा सकते हैं. मैं कोई एक बता के किसी एक को प्रमोट नहीं करूंगा, जस्ट चेक इट आउट. आप विजिट कतर की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर भी आपको नजर आ जाएंगे कि होटल्स किस हिसाब से चल रहे हैं. बुक योरसेल्फ होटल या अपने दोस्तों के साथ या अपनी फैमिली के साथ, एंड एंजॉय प्लीज. गर्मी का मतलब ये नहीं घर में बैठे रहें, आप हमारी तरह मत बनिए, प्लीज एंजॉय कीजिए. अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट। अगला जो इवेंट है वो कतर म्यूजियम से जुड़ा हुआ है। अब कतर म्यूजियम के बारे में आपको पता है कि 29 अवार्ड्स उन्होंने जीते हैं 47th एनुअल टेली अवार्ड्स में, और इसका मतलब ये होता है कि कतर म्यूजियम इज नाउ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रेस्टीजियस कंपेटिटर, जिसको ये अवार्ड दिया गया है, जिसे रिकग्नाइज किया गया फॉर द एक्सेलेंस इन वीडियो एंड टेलीविजन अक्रॉस द स्क्रीन। कतर म्यूजियम ने एक खुद के स्टेटमेंट में कहा है कि जो ग्रोइंग इंटरनेशनल रिकग्निशन है डिजिटल स्टोरी टेलिंग की, उसमें वो आगे रहना चाहते हैं, और जो कमिटमेंट है कि कतर के कल्चर को जो कल्चरल नैरेटिव है उसको ग्लोबल किया जाए, उस कोशिश में कतर बिल्कुल पीछे नहीं हटा है। कतर ने अपने तमाम म्यूजियम्स को बहुत अच्छे से तैयार किया, और ऐसे म्यूजियम्स हैं जो आपसे बात करते हैं, यू फील लाइक यू आर इमर्स्ड इन देम, यू काइंड ऑफ इंटरैक्ट विद देम। ऐसे ही नहीं मिल जाते भाई इतने सारे अवार्ड्स। तो इन तमाम चीजों के लिए आप तमाम अलग अलग म्यूजियम्स में जाइए एंड यू विल लव ऑल ऑफ देम। जो कतर के MIA है वहाँ से आपको अच्छे शॉट्स मिलेंगे। इफ़ यू आर अ फोटोग्राफर आप कतर नेशनल म्यूजियम जाइए, वहाँ पर आपको काफ़ी इंटरेक्टिविटी मिलेगी, एंड स्पेशली अगर कोई आपके साथ कोई घूमने के लिए आया, कोई नया नया है कतर में, प्लीज़ उनको लेके जाइए, बिकॉज ये जो म्यूजियम्स है कतर के, हर म्यूजियम में एक खास बात आपको मिलेगी, एंड कभी भी कतर ने अपने म्यूजियम्स को नज़रअंदाज नहीं किया है, एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस थिंग अबाउट कतर, एवरीथिंग is kept very nicely, और कतर अपनी चीज़ों को सीरियसली लेता है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट कि अपने हेरिटेज को संभाल के रखा है कतर ने हमेशा से। ओके, मूविंग ऑन टू अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। आई नो बहुत सारे लोगों को मैचेस देखने, तो देखो भाई स्क्रीनिंग बहुत सारी जगहों पर है, ऑलमोस्ट हर होटल में है पहली बात तो, और अगर आपको स्क्रीनिंग देखनी है तो मॉल ऑफ कतर भी जा सकते हैं। मॉल ऑफ कतर जैसी जगहों पर तो आपको कुछ देना वेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, और जो इसी स्क्रीन से अंदर लगी हुई हैं आप मॉल ऑफ कतर में बैठ जाइए, और ये 11 जून से 19 जुलाई तक का सिस्टम है। वॉच एनी मैच यू वॉन्ट, तमाम मैचेस आपको वहाँ पे मिलेंगे, एंड आराम से बैठ के वहाँ पे मैचेस देख सकते हैं। मैं तारीख फिर भी बता देता हूँ, जब ये शो सुन रहे होंगे आप तो थोड़ा लेट हो चुका होगा, मगर अगर कतर मॉल ऑफ कतर में नहीं मिले तो अलग अलग दूसरे मॉल्स में भी आपको मिलेगा फ्री व्यूइंग एक्सपीरियंस। दोहा फेस्टिवल सिटी चले जाइएगा, वहाँ पे 19 जुलाई तक है, एंड जो मैचेस हैं वो स्क्रीनिंग के लिए वो रखे गए हैं, कतर के स्पेशल मैचेस वहाँ पर होंगे, इन तमाम जगहों पर आपको मिल जाएंगे। सो ट्राई इट आउट, क्योंकि एक जगह नहीं है, बहुत सारे होटल्स में अलग अलग स्क्रीनिंग सिस्टम है। इवन मुशारिफ जब आप जाएंगे तो मुशारिफ में भी आपको नजर आ जाएगा। सो ये था हमारा आज का मामला, बट एक चीज जाने से पहले विच इज विजिटेड बाय लॉट ऑफ पीपल, और वो है विजिट कतर का फैन जोन। अगर आप नहीं गए या फिर आप पिछले वाले वर्ल्ड कप के फैन जोन में गए तो आप समझ सकते हैं कि फैन जोन कितना भारी बनाता है कतर। देयर इज नो कंपटीशन, कोई सानी नहीं है भाई कतर का इस मामले में। तो लोकेशन है अलमहा आइलैंड, ठीक है, और 11 जून से लेकर 19 जुलाई तक यहां पर फैन जोन रखा गया है। इट्स अ ब्यूटिफुल फैन जोन, और मुझे पता है कोई ना कोई इवेंट बहुत जल्दी होगा, फिलहाल यहाँ पे आप जा सकते हैं इस फैन जोन में। इसका जो कॉल टू बुक टिकट्स का सिस्टम है आप देख सकते हैं, प्री रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, वॉक इन नहीं है, तो कोई मसला नहीं है ऐसा कुछ, आप आराम से इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अलमहा आइलैंड से। वहाँ पे भी आपको वहाँ पे जाएंगे तो इन्फॉर्मेशन वैसे ही मिल जाएगी। शाम के 6 से 7 बजे तक की फैन जोन एक्टिव है, एंड शाम के 6 से अगले दिन की सुबह की बात कर रहा हूँ मैं, शाम के 6 से अगले दिन की सुबह तक ये एक्टिव रहेगा। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये फैन जोन बहुत स्ट्रिक्ट है एज लिमिट को लेकर, इट इज 18 प्लस ओनली, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। और जो विजिट कतर के जो फैन जोन है इसमें सब मिलेगा आपको, सारे के सारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं, वर्ल्ड कप 2026 के, वो सारे के सारे आपको एक ही रूफ के नीचे मिलेंगे अलमहा आइलैंड में। एंड इसका जो लाइवली एटमोसफेयर है वो वैसे भी आपको बांध के रखेगा, तो अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा मैच आपने ढूंढ लिया कि ये मैच तो भाई मुझे बढ़िया जगह जाके देखना है, एकदम मौज आनी चाहिए, तो आप जाके यहाँ देख सकते हैं, एंड यू विल नॉट मिस एनीथिंग, प्लस यू विल गेट ऑल द वाइब्स दैट यू आर लुकिंग फॉर, जो यहाँ पर थी जब कतर में मैचेस हो रहे थे, एंड आई मिस दोज वाइब्स मैन, क्या क्या मजा आ रहा था यार, वो भी दिन थे, है ना। तो इन तमाम जगहों पर फोकस करते हुए मैं आपसे एक और चीज कहूँगा जहाँ पर फोकस करने की जरूरत है, और वो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म FM 107 Qatar इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं। आप आएं और बताएं, हो सकता है कोई ऐसा इवेंट है जो हमने ना कवर किया हो, जो हमसे छूट गया हो, एंड आई वांट कि आप हमें बता दें। आप बताते हैं तभी मामला आगे बढ़ता है। आपको याद होगा पिछली बार मैंने एक इवेंट बताया था आपको जो बच्चों के लिए था, वो मुझसे मिस हो जाता लेकिन किसी ने मुझे बताया उसके बारे में, फिर मैंने सर्च किया तो मुझे पता लगा। और ये इवेंट जिसके बारे में मैं अब बताने जा रहा हूँ ये 30 जून तक है। ओके, रेडी है? हाँ, तो द नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि बच्चों का मामला है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, टेक देम टू समर स्प्लैश एट मैरियल वाटर पार्क। बहुत शानदार वाटर पार्क है और 1 जून से 30 जून तक यहाँ पे एक्टिविटीज रखी गई हैं। टिकट और रजिस्ट्रेशन भूल जाइए, देयर इज नो टिकट रिक्वायरमेंट, एंड यहाँ पे आप क्लियरली जा सकते हैं। समर स्प्लैश जो है एक मंथ लॉन्ग फैमिली एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस बनाया गया है जो कि मैरियल वाटर पार्क बीच पर है, 1 से 30 जून तक। अभी भी टाइम है। यहाँ पे निकोलोडियन का जो निकोलोडियंस के कैरेक्टर्स हैं जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हैं, इसके अलावा ग्लोबल की बात आती है तो पॉ पेट्रोल, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स, ऐसे ऐसे इवेंट्स रखे गए हैं जो काफ़ी इमर्सिव हैं और एंटरटेनिंग है बच्चों के लिए, एंड यहाँ पर इंटरेक्टिव एक्टिविटीज़ भी हैं। इसी के साथ लाइव परफॉर्मेंसेज हैं और एक ही डेस्टिनेशन में पहुंच के सब कुछ मिल जाए फैमिली को, और क्या चाहिए। ऊपर से गर्मी की कोई टेंशन नहीं है, इट इज़ ऑल कवर्ड, सो यू विल इन्जॉय इट इमेंसली। कुछ एरियाज हैं जो अनकवर्ड हैं मगर वो तभी एक्टिव होते हैं जब ज़्यादा गर्मी ना हो। यहाँ पर इंटरेक्टिव फैमिली एक्टिविटीज़ हैं, गेम्स हैं, लाइव स्टेज परफॉर्मेंसेज हैं, फोटो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, थीम्ड जोन्स हैं, बीच सॉकर है भाई साहब, वॉलीबॉल है, सैंड प्ले एरियाज हैं बच्चों के लिए, माय फेवरेट वाटर गन बैटल्स, और साथ में वाटर इन्फ्लेटेबल फ्लोट्स हैं जो पूल पे पड़ी हुई नजर आ जाएंगी आपको, और थीम्ड टेंट्स हैं और बीच गेम्स है। पॉ पेट्रोल का अलग से जोन बनाया गया है, स्पंज बॉब स्क्वायर पैंट्स का अलग से जोन बनाया गया है, और प्रायोरिटी जो है वो 4 बजे से शाम के 6 बजे के बीच में है। ये अलग एक्सेस है इसका, इसके बारे में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। टाइमिंग बता देता हूँ, टाइमिंग है 6 से रात के 11 और तारीख 1 जून से 30 जून। On that very note, Qatar 2026 से, this is Duha Wala Kabir signing off. Social media handles FM 107 Qatar. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है। मास्सलाम।
1: Qatar 2026 FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: आप सुन रहे हैं FM 107।
0: दिल से देसी।
4: अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सामिन किराम, खुश आमदीद आपको आपके पसंदीदा प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे में। हम में से बहुत से लोग ये ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा ताल्लुक दीन इस्लाम से मजीद मजबूत हो, हमारा ईमान बढ़े और हमारी जिंदगी अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भर जाए। अक्सर हम ये समझते हैं कि इसके लिए शायद बहुत बड़े बड़े आमाल, लंबी इबादत या मुश्किल मराहिल दरकार हैं। हालांकि कभी कभी अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान रास्ता उन्हीं छोटी छोटी सुन्नतों में पोशीदा होता है जिन्हें हम रोजमर्रा जिंदगी में आसानी से अपना सकते हैं। माहिरीन नफ्सियात भी कहते हैं कि बड़ी तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। इसीलिए इस प्रोग्राम में हम ऐसी आसान और मुख्तसर सुन्नतों का जिक्र करेंगे जो सिर्फ चंद सेकंड या एक मिनट लेती हैं, लेकिन इंसान की रूह, आदतों और अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा करती हैं। तो आइए आज हम मिलकर एक और खूबसूरत सुन्नत सीखते हैं और अपनी जिंदगी को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर करते हैं। आज हम सुनेंगे कि हिकमत के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या रहनुमाई थी। इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, रश्क सिर्फ दो चीज़ों पर ही हो सकता है, एक वो शख्स जिसे अल्लाह ने माल दिया और वो उसे अल्लाह की राह में खर्च करता है, और दूसरा वो शख्स जिसे अल्लाह ने हिकमत अता की वो उसके जरिए फैसला करता है और दूसरों को सिखाता है। हिकमत की दुआ खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा को दी थी। कहा था, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल हिक्मा। मुहद्दिसीन कहते हैं, हिकमत से मुराद कुरान का फहम, सुन्नत की बसीरत, सही फहम और वो नूर है जो इंसान को खैर और शर में फर्क करने की कुव्वत अता करता है। तो दोस्तों, माल खैर के दरवाजे खोल सकता है, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब अल्लाह की राह में खर्च हो। इसी तरह हिकमत दिलों को नूर देती है, फैसलों को दुरुस्त करती है और इल्म को आम करने का जरिया बनती है। तो ये थी हिकमत के हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहनुमाई। आइए हम भी अपनी जिंदगी में कुरान और सुन्नत के फहम को हासिल करें, उस पर अमल करें और दूसरों तक पहुंचाए, ताकि हम भी उन खुश नसीब लोगों में शामिल हो जाएं जो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा महबूब हैं। सामिन, ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुनना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफ जमान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मासलामा।
5: कतर्स मोस्ट हर्ड रेडियो स्टेशन FM 107। FM 107। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे मोहम्मद सुलेमान के बारे में। मोहम्मद सुलेमान कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि कतर की खेल की तारीख के सबसे अजीम एथलीट्स में से एक हैं और कतरी एथलेटिक्स के असल पायनियर अगर कोई है तो मोहम्मद सुलेमान है। उनकी पैदाइश 23 सितंबर 1969 को हुई और बता दूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पायनियर है कतरी एथलेटिक्स में। उन्होंने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में कतर के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतकर तारीख कायम। सो दैट्स द रीजन मोहम्मद सुलेमान इज सो इम्पोर्टेंट इन कतरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री। मेंस 1500 मीटर दौड़ में मोहम्मद सुलेमान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और कतर को पहली मरतबा ओलंपिक मेडल टेबल पर जगह दिलाई। So that was occasion when Qatar पहली मरतबा ओलंपिक प्लेटफॉर्म में पहला अगर कोई मेडल लेके आया होगा तो यही बंदा था, इनका नाम है मोहम्मद सुलेमान। ओलंपिक कामयाबी से पहले भी सुलेमान एशिया के बेहतरीन मिडिल डिस्टेंस रनर्स में शुमार होते थे। उन्होंने एशियन गेम्स और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप समेत कई इलाकाई और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म के मुकाबलों में मेडल जीते। वो अपनी बेहतरीन स्ट्रैटेजी, ज़बरदस्त स्टैमिना और दौड़ के आखिरी लम्हों में तेज रफ्तारी के लिए मशहूर थे। 1990 की दहाई में उन्होंने दुनिया के बेहतरीन रनर

0: मुकाबला दिया। मोहम्मद सुलेमान ने कई ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में भी कतर की नुमाइंदगी की, जिससे गल्फ रीजन में एथलेटिक्स को फरोग मिला। उनकी कामयाबियों ने कतरी नौजवान एथलीट्स को इंस्पायर किया और साबित किया कि कतर दुनिया के बेहतरीन खेल मुकाबलों में मुकाबला कर सकता है। दोस्तों, आज मोहम्मद सुलेमान को सिर्फ कतर का पहला ओलंपिक मेडल विनर नहीं बल्कि मुल्क के खेलों की तरक्की की बुनियाद रखने वाले हीरो के तौर पर भी याद किया जाता है। उनकी विरासत आज भी कतर के लिए फख्र का बायस है और नए एथलीट्स को कामयाबी के लिए मोटिवेट करती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
2: FM 107.
0: Log into our website.

0: Site urduradio.qa or download the app QMC now.
1: स्विमिंग पूल सेफ्टी मेजर्स पर अमल करना डूबने के हादसात से महफूज रखता है और खास तौर पर बच्चों की जिंदगियों की हिफाजत करता है। अपने घर के स्विमिंग पूल का माहौल महफूज बनाना नहायत जरूरी है ताकि बच्चे महफूज रहें और डूबने का खतरा कम हो। सबसे पहला कदम ये है कि पूल के इर्द गिर्द मजबूत और सिक्योर फेंस लगाएं और ये फेंस ऐसी हों कि बच्चे उसे आसानी से पार न कर सकें और हर एंट्रेंस हमेशा ठीक से बंद कीजिए। कभी भी बच्चों को पूल के आसपास अकेला मत छोड़िए। उन पर हमेशा नजर रखें, खास तौर पर जब वो पानी के करीब हों। फ्लोटेशन और रेस्क्यू डिवाइसेस जैसे कि लाइफ जैकेट्स, फ्लोटिंग रिंग्स और रेस्क्यू हुक्स हमेशा पास रखें ताकि इमरजेंसी में उनको फौरन इस्तेमाल किया जा सके। पूल के इर्द गिर्द नॉन स्लिप फ्लोरिंग लगाना भी बहुत जरूरी है ताकि फिसलने से बचा जा सके और गीली सतह पर भी ग्रिप बरकरार रहे। बच्चों को स्विमिंग और वाटर सेफ्टी के बारे में जरूर तालीम दें ताकि वो खुद भी अपनी हिफाजत कर सके। पूल के पानी को रेगुलर सफाई और प्रॉपर केमिकल ट्रीटमेंट के जरिए साफ और सेफ रखें ताकि इन्फेक्शंस और दूसरी बीमारियों से बचा जा सके। इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पूल के करीब इस्तेमाल करते वक्त एहतियात करें और उन्हें पानी से दूर रखें ताकि किसी भी इलेक्ट्रिकल हादसे से बचा जा सके। इमरजेंसी के लिए फर्स्ट एड किट और फोन को पूल के पास रखना बहुत जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन मदद हासिल की जा सके। छोटे बच्चों के लिए प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ट्रेनिंग लेना एक बेहतरीन और महफूज ऑप्शन होता है। पूल के आसपास सफाई का ख्याल रखें और ऐसी कोई चीज वहां ना छोड़ें जो किसी के फिसलने या गिरने का सबब बन सकती हो। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि बच्चों की सेफ्टी हमारी सबसे पहली तरजीह होनी चाहिए। इन तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके हम अपने बच्चों को खतरों से महफूज रख सकते हैं और उन्हें एक सेहतमंद और खुशगवार जिंदगी दे सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
0: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
4: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करेंगे कि ख्वातीन की अमूमी सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो कैसे बरकरार रखी जा सकती है। ख्वातीन खानदान और मुआशरे की बुनियाद हैं, लेकिन अक्सर वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। घर, काम और बच्चों की जिम्मेदारियों के दरमियान अपनी सेहत का ख्याल रखना भी इतना ही ज़रूरी है। सेहतमंद जिंदगी के लिए बैलेंस्ड डाइट बुनियादी अहमियत रखती है। ख्वातीन को अपनी खुराक में फल, सब्जियां, दालें, दूध, दही, अंडे और प्रोटीन वाली गिजाएं इस्तेमाल करनी चाहिए। आयरन, कैल्शियम और विटामिन डी ख्वातीन की सेहत के लिए खास तौर पर बेहद अहम हैं। बाकायदा जिस्मानी सरगर्मी यानी एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की वॉक या फिर हल्की एक्सरसाइज जो है दिल की सेहत को बेहतर बनाने, वजन को कंट्रोल करने और अपनी जो जहनी टेंशन है उसे कम करने में मदद देती है। मेंटल हेल्थ भी जिस्मानी सेहत का बहुत ही अहम हिस्सा है। मुसलसल डिप्रेशन, बेचैनी या उदासी को नज़रअंदाज ना कीजिए। आराम, मुनासिब नींद, इबादत, मुस्बत सोच और अपने लिए वक्त निकालना जहनी सुकून के लिए मुफीद है। ख्वातीन को रोज़ाना 7 से 9 घंटे की मायारी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। नाकाफी नींद, थकन, चिड़चिड़ापन और दीगर जो सेहत के मसाइल हैं उसका पेशगामा हो सकती है। तो फिर यह है कि आप रोज़ाना बैलेंस डाइट लीजिए, रोज़ाना वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, मुनासिब नींद जरूर लीजिए, पानी ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए और जहनी दबाव को कम करने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना खुदगर्जी नहीं है बल्कि ज़रूरत है। एक सेहतमंद खातून ही एक सेहतमंद खानदान की बुनियाद बनती है।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, मसाजिद और आसपास के घरों के करीब गलत पार्किंग न सिर्फ ट्रैफिक को रोकने का सबब बनती है बल्कि ये इमरजेंसी व्हीकल्स जैसे एम्बुलेंस फायर ट्रक

और पुलिस कार्स के लिए भी बहुत बड़ी रुकावट है। जब इन व्हीकल्स को जल्दी से गुजरना होता है तो किसी भी हादसे का खतरा लाहक बढ़ जाता है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी पार्किंग की आदतों में बेहतरी लाएं और दूसरों के लिए रास्ता खाली रखें। अगर हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें तो हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने इलाके के हर शख्स के लिए फायदा मंद साबित हो सकते हैं। इस तरह हम अपनी कम्युनिटी को सेफ, ऑर्गेनाइज्ड और पीसफुल बना सकते हैं। हमारी छोटी सी सोच और मेहनत से न सिर्फ ट्रैफिक का मसला हल होगा बल्कि हमें अपनी रिलीजियस और सोशल ड्यूटीज को बेहतर तरीके से अदा करने में मदद मिलेगी। वजारत दाखला का कहना है कि हम सब मिलकर इस मसले को हल करने में अपना हिस्सा डालें और एक ऐसी सोसाइटी का हिस्सा बने जहां सबके लिए रास्ता खुला हो और सेफ्टी पहली तरजीह हो। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत।

कि फैमिली लाइफ और इस तरह कैरियर की जो ज़िंदगी है, अलहया अलमहनिया वलहया तलुसरिया, इन दोनों को हम कैसे बैलेंस करें, तवाज़ुन कैसे कायम

हेलो मरहबा, वेलकम बैक सामीन, एक मरतबा आप सबको खुश आमदीद है प्रोग्राम जुम्मा रिफ्लेक्शन में। और आज किस बाबरकत सुबह क्या कर रहे हैं, कैसा जा रहा है आपका दिन, बताइए हमें। 4434377 स्टूडियो का नंबर। और जैसा कि आपने सुना है, आज हमारा जो सवाल है कि भाई आप अपने कैरियर लाइफ और फैमिली लाइफ की बैलेंसिंग कैसे कायम कर सकते हैं इस दौर में, चूँकि इस दौर का बड़ा अलमिया है ना ये कि भाई आज लोग काफ़ी हैरत में हैं कि इस मसरूफ़ तरीन दौर में हम कैसे एक हल ईजाद करें। तो काफ़ी लोग काफ़ी सारी जो है ना आपको बताएंगे कि भाई ऐसे ऐसे करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। माहिर नफ्सियात में कि वो रिसर्च भी पढ़ रहा था इस सिलसिले में, क्योंकि प्रोग्राम की तैयारी के हवाले से मैं देख रहा था कि दरअसल माहिर नफ्सियात इस सिलसिले में क्या कहते हैं या जदीद नज़रियात में क्या बात कही जा रही है, हल क्या पेश किया जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि एक खातून जिनका ताल्लुक अमेरिकन किसी यूनिवर्सिटी से है, तो उसने बताया कि आपने जो है ना तीन बड़े पहलुओं का, तीन सुतून का ख्याल रखना है। ख़ानदान की मजबूती के तीन सुतून उन्होंने बताए। एक तो ये कि पहली चीज़ वक्त, कि आपने अपने ख़ानदान को कितना वक्त दिया। वो ये बताना चाह रही थी कि क्वांटिटी टाइम से ज़्यादा अफजल है क्वालिटी टाइम। यानी लोग अगर पूरे दिन अगर आप अपने बच्चों के साथ दें, अहलोयाल के साथ दें, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप क्वालिटी टाइम दें, इतना टाइम दें पूरी तवज्जो के साथ, पूरी यानी जो उनके साथ उनके जज्बात को शेयर करते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए, तो ये ज़्यादा मुफीद साबित होती है। तो ये उन्होंने बताया कि वक्त जो है ना ये बड़ी चीज़ है, अहम चीज़ है। मज़ीद उन्होंने ये भी बताया कि ताल्लुक़ और राबता, कि कभी ऐसा होता है कि इंसान घर में मौजूद तो होता है लेकिन हकीकत में मौजूद नहीं होता। जिस्म घर में, जहन दफ्तर में, आंखें मोबाइल पर। और बाज़ लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो बस अपने जिस्मानी तौर पर हमारे साथ हैं, वैसे आपकी फ़िक्र तो कहीं दूसरी जगह पर है। हर किसी की शिकायत होती है घर में। और आजकल तो ये दौर है, बड़ा अलमिया बन गया है कि लोग घर में भी ऐसे यानी फरागत में भी अपने वक्त को इस तरह ज़ाया कर रहे होते हैं मोबाइल पर, स्क्रीन पर, कि जो अहम तरबियत के जो अवकात हैं, अहल वयाल के साथ जो तफरीही अवकात हैं, इनकी ज़रूरत को हम नज़रअंदाज कर रहे हैं, या फिर हमसे ये अवकात छीन लिए जा रहे हैं एक तरीके से कह सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा ख़तरनाक ये रवैया है। इस हवाले से हमें बहुत होशियार रहना है, मोहतात रहना है। तो ताल्लुक़ और रबते के हवाले से उन्होंने बताया कि घर वालों के साथ गहराई की जो ताल्लुकात हैं, आपके ताल्लुकात कितनी गहराई में हैं, वो यहाँ मैटर करता है। ठीक है, उन्होंने मज़ीद बताया कि तीसरी चीज़ है इत्मीनान। यानी बाज़ औक़ात खुद इंसान खुद समझता है कि वो ख़ानदान के लिए बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि क्या ख़ानदान या हमारी जो फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो भी क्या ये महसूस कर रहे हैं कि भाई आप जो है ना काफ़ी वक्त दे रहे हैं घर में। अगर वो महसूस नहीं कर रहे हैं, तो एक तरफ़ा अगर आप कह रहे हैं तो ये बात नहीं बनती। तो इसका आपने ख़ास ख्याल रखना है कि एक तरफ़ा आपकी इत्मीनान हो और अपनी तरफ से ये बात कही जाए कि भाई नहीं, मैं तो वक्त दे रहा हूँ, हालांकि हकीकत में वो लोग महसूस नहीं कर रहे, तो गैप कहीं तो है, कहीं तो गैप है। तो इस वजह से उन्होंने ये अमली तजवीज़ पेश की कि ख़ानदान में यानी हर हफ्ते में कम से कम तीन बार एक साथ बैठकर खाना खाएं। ठीक है, बच्चों के साथ परिवार को लेकर मज़ीद ये कहा गया कि उनके साथ कैसा टाइम स्पेंड करें, हफ्ते में एक दिन उनके लेकर निकलें, ये वो काफ़ी अमली तजावीज़ पेश की, ताकि ख़ानदानी तौर पर अगर बच्चों पर हम इस तरह के जो फोकस नहीं करते, तो कुछ मनफी रिफ्लेक्शन भी दिखता है ना। जब आप यानी सही तरीके से वक्त नहीं देंगे, सही तौर पर उस काम को अंजाम यानी कारामद नहीं करेंगे, तो वहाँ पर कुछ मनफी असरात आपको नज़र आएंगे। तो इस वजह से ये मनफी रवैयों से बचने के लिए, इन्हराफ से बचने के लिए,

0: का जवाब देने के लिए 24/7 दस्तयाब है। ये सर्विस उन लोगों के लिए है जो सुन नहीं सकते और जो अपनी इमरजेंसी सिचुएशंस में आसानी से मदद चाहते हैं। डेफ इमरजेंसी सर्विस एक एडवांस्ड और मॉडर्न सिस्टम का इस्तेमाल करती है जिसके जरिए लोग अपनी इमरजेंसीज रिपोर्ट कर सकते हैं और उन्हें फौरी तौर पर मदद मिलती है। सिर्फ एक सिंपल कॉल 992 से आप इस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हियरिंग इंपेयर्ड इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जो सुन नहीं सकते। ये सर्विस उनकी जरूरत के हिसाब से उनको इमरजेंसी रिस्पांस देती है और उनके लिए सेफ्टी को इंश्योर करती है। यानी अगर आप या आपके आसपास कोई शख्स हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है तो 992 का नंबर याद रखें और इस सर्विस का फायदा उठाएं। ये इनिशिएटिव सिर्फ एक सर्विस नहीं बल्कि एक अहम कदम है उन लोगों की मदद करने के लिए जो अक्सर अपने हक में मदद हासिल करने में मुश्किलात का सामना करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की ये एफर्ट्स ये दिखाती हैं कि हर शख्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी उनकी पहली प्रायोरिटी है, चाहे उन्हें सुनाई न दे। तो अगर आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जो हियरिंग इंपेयरमेंट से मुतासिर है, उन्हें ये सर्विस जरूर बताएं। ये सर्विस उनके लिए एक नया रास्ता है अपने इश्यूज को सॉल्व करने का और इमरजेंसी सिचुएशंस में मदद लेने का। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
1: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
2: हेलो मरहबा, क्या हाल चाल सामने कराम, एक मरतबा फिर आप सबको प्रोग्राम के इस यानी तकरीबन दो तिहाई हिस्सा गुजर चुका है इस मरहले पे आपका खैर मकदम करते हैं। एक मरतबा फिर हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ने के लिए 4434377 इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। और आज का सवाल है कि भाई अपनी जो फैमिली लाइफ है और जो कैरियर लाइफ है, इसमें हम कैसे एक बैलेंसिंग कायम करें, तवाज़ुन हयात कैसे कायम करें। और यहाँ पर और भी आप रिलेट कर सकते हैं कि काम, ख़ानदानी ज़िंदगी, इबादत और दीगर जो उमूर है ना, तो इन तमाम चीज़ों को हम कैसे रिलेट करें, तो ये एक अहम सवाल है। अच्छा, ब्रेक से पहले वसाइल के हवाले से बात हो रही थी सामने कराम, ये एक तजुर्बे की बात है कि ओवरऑल ये जो बैलेंसिंग की बात होती है ना कि कैरियर लाइफ और फैमिली लाइफ, तो इसमें काफ़ी एक चीज़ मुअसर होती है, वो ये कि आपकी माली हालत, मादी हालत। तो बाज़ औक़ात बंदा अगर माली परेशानी में हो तो वो स्ट्रेस रहता है, तो तकरीबन फैमिली लाइफ उस ज़िंदगी में वो चीज़ें दिखती हैं, वो झलक उठती हैं। ठीक है, तो वसाइल की किल्लत, हम इसे कह सकते हैं वसाइल की किल्लत, ये मुअसर होती है। अच्छा, ये तो तजुर्बा की बात है आम जो हमें मंजरनामे पे दिखता है, लेकिन अगर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखें तो वहाँ आप सल्लम का मामूल क्या था। आप सल्लम फजर की नमाज के बाद सहाबा इकराम की खबरगिरी करते हैं और ये वो, क्या कौन क्या हालचाल कैसा है, कोई बीमार है तो उसकी तीमारदारी की, और ये वो। फिर मसाइल थे, मसाइल हल कर दिए, फिर आप सल्लम घर वालों से पूछते थे कि क्या है खाना,

घर में खाना है, ये क्या है, मामला क्या है, कहते हैं खाना नहीं है, तो आपसे सलूँ कैसे, फिर मैं रोज़े की नियत कर लेता हूँ। देखिए वसाइल की किल्लत पर घर में ये नहीं है, लेकिन शिकायत नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पूरी दुनिया के ये बोझ, पूरी जो इतनी इतना काम, इतनी जिम्मेदारियाँ, बावजूद इसके कि आप सल्लम के घर पे पहली बात तो एक वसाइल की कमी थी, फिर उसके बाद अगर वो नहीं होता तो आप पूरे आसानी से नहीं है, ख़त्म, मैंने रोज़ा रख लिया। सोचें किस हद तक अगर आपके अंदर पेशेंस हो तो, यानी बग़ैर किसी तैयारी के, यानी रोज़ा रखना गोया कि आप इसके लिए आपको कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं। आज हम जब रोज़ा रखने का ख्याल करते हैं, जैसे आशूरा का दिन गुजरा है, इससे पहले तासुआ, तो कितनी तैयारियाँ होती हैं और ये वो सहूर और ये सब कुछ, हाँ, लेकिन आपसे सलाम का मामूल कैसा था, कितना आसान, एक सादा एक मामूल कि भाई फजर के बाद निकलें, खाना है खाना नहीं है खलास, रोज़ा रख लिए। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बात करें, उनकी शहादत के वक्त दो दिन लगातार उन्होंने बग़ैर किसी इसके, उन्हें वो पानी भी मैसर नहीं हुआ ना उनको उस वक्त, बग़ैर पानी के उन्होंने वो खाना तो दूर की बात, बग़ैर पानी के उन्होंने आखिरी दिन जिन दिन वो शहादत नसीब हुई उनकी, इस तरह उन्होंने रोज़ा रखा था। तो रोज़ा उनके लिए बिलखसूस गर्मी के दिनों में, और इस प्यास जब बढ़ जाए तो ये उनके लिए एक जायका था, एक अजीब ईमानी जायका। तो अल्लाह सुब्हान तआला हमें वो मर्तबा नसीब फरमाए, सिद्दीकीन शुहदा सालहीन, कम से कम सालहीन का जो रुतबा है तो वो तो सिद्दीकीन शुहदा वो तो बहुत बड़े मरातब हैं, सालहीन जो सलाह का जो रुतबा है वो हमें नसीब फरमाए। और सामने कराम प्रोग्राम का जो मौजू है, इस मौजू को रिलेट करते हुए एक मरतबा फिर दोहराता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया कैसा था, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी पर हाथ नहीं उठाया, किसी औरत को नहीं मारा, कभी किसी खादिम पर हाथ नहीं उठाया। तो ये था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा। आप सल्लम प्यार के हवाले से अगर बात करें, आप सल्लम बच्चों को, यानी एक मरतबा आप सल्लम खुतबा मेंबर पर खुतबा दे रहे थे, हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु वो छोटे थे, तो लड़खड़ा के मस्जिद में दाखिल हो रहे थे इधर, तो आप सल्लम ने आगे आके उनके इस्तकबाल के उन्हें कंधे पर उठा लिया और बयान बाद में मुकम्मल किया। सुभान अल्लाह, देखें क्या ताल्लुक। और यानी

0: सवाल बनता है ना। अच्छा तो यहाँ जब हम इसको मिलाएंगे ना सुन किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल को, तब जाके हमें एक नतीजा निकलेगा कि हाँ दरअसल यहाँ फितना से क्या बताया गया है, फितना से क्या मतलब लिया गया, क्या मुराद है, और ये दुश्मन क्या गया, दुश्मन से बचने से क्या मुराद लिया गया है। अच्छा पहली बात तो ये है कि सामने किराम, जैसे कि हमने कहा कि अल्लाह के हदूद इस्लामी हदूद के अंदर दायरे में अगर है तो आप कभी गुस्सा नहीं करते थे। तो अगर हमारे हमारा माल और हमारी औलाद अगर ये मजबूर करती है हमें इस्लामी हदूद को तजावज़ करने की, अल्लाह के हदूद को तजावज़, तो यहाँ ये है कि ये तो फितना, ये तो आजमाइश, हम तो बड़े आजमाइश में मुब्तला हैं। तो ये तो दुश्मन का जो किरदार अदा कर रहे हैं तो ये गलत है। तो ये इस सिलसिले में हमें होशियार रहना, मुहतात रहना। अच्छा एक और है कि आप यानी वो इताअत के साथ सही अल्लाह के हुक्म के साथ सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो वो तो नेमत है, वो तो नेमत है। माल औलाद जीना कहा गया ना कुरान में कि ये तुम्हारी जीनत है, वलबाकियात सालिहात, लेकिन बाकी रहने वाले कौन हैं, जो आपके नेक आमाल हैं, जो नेक जिसमें सलाह हो, अगर माल औलाद में सलाह हो और वो सही रास्ते पर जा रहे हों, गामजन हो कामयाबी की राह पर, तो उसमें तो कोई मामला नहीं है, तो ये तो बल्कि आपके लिए नेमत है। तो यही है कि आपके पास अगर नेमत है तो उसमें एक इब्तिला का भी एक जाविया है, ये सिर्फ माल औलाद के हवाले से नहीं बल्कि दुनिया की ज़िंदगी में आपके पास जो भी है, वालिदैन है, वालिदैन नेमत है ना, लेकिन ये आपके लिए इम्तिहान भी है कि आप वालिदैन के साथ क्या किरदार अदा कर रहे हैं। अगर यही वालिदैन के साथ आप अगर उनकी खिदमत और उनके हवाले से अगर आप गाफिल हैं तो ये तो आपके लिए आजमाइश है। और अरदा रब फिर दलवाल जगह जगह में हदीस है, कुरान में सरासर हुक्म है, अल्लाह की इबादत के बाद सबसे अहम तरीन जो ज़िम्मेदारी है वो माँ बाप के साथ उसने सलूक है वालिदैन के साथ। तो इसमें अगर हम हमारी कोताही है, हम गफलत और लापरवाही के शिकार कर रहे हैं तो शिकार हो रहे हैं तो मामला गड़बड़ है और इसका काफ़ी सख्त हिसाब किताब होगा। तो ओवरऑल सामने कराम बात यही है कि जो नेमत है वो जहमत और नकमत में भी बदल सकती है। तो नेमत को नेमत अगर हम समझते हैं तो अपने जो मुनाइम है, जिसने हमें ये नेमत अता की है, उसकी सही जो अहकाम है उसको हमें बजा लाने हैं, उसकी रहनुमाई को हमें अपनी ज़िंदगी में नाफिज़ करनी है। और अगर हम जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम, उस राह पर चलना चाहते हैं जिस राह पर अल्लाह ने नेमत का यानी मज़ीद और नेमत का वादा किया है, और हमसे पहले जो नेक सालहीन गुजरे हैं उन पर अल्लाह सुब्हानहू ने नेमत का फ़ैसला किया था, अगर हम उस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमें नेमत की सही कदरदानी करनी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तौफीक अता फरमाए। बस प्रोग्राम के आखिरी मरहले तक हम पहुँच चुके हैं और ख़ुलासा बयान करने से पहले एक छोटा सा वक्फ़ा लौटते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। कोई अगर हमसे राबता करना चाहते हैं तो अभी एक वक्त है, एक दो कॉल ले सकेंगे। 443-443-77 है स्टूडियो का नंबर।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @ FM 107 कतर। दिल से देसी
2: नूर अला नूरी यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा। रोशनी पर रोशनी, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई फरमाता है।
3: इंसानों के मसले मसाइल और रोजमर्रा के मामलात पर रोशनी के लिए सुनते रहिए नूर इस्लाम,
4: हर जुमा शाम 4 बजे ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
5: दोस्तों इमरजेंसी नंबर 999 एक अहम जरूरी नंबर है, याद रखिए अगर आपको किसी इमरजेंसी में मदद की जरूरत हो तो सबसे पहले अपने आप को पूरी तरह से पूरी सिचुएशन में शामिल करें। अगर आप खुद पे या दूसरों पे खतरा महसूस कर रहे हैं

0: तो बिना किसी हेजिटेशन के 999 पर कॉल करें। जब आप कॉल करें तो अपना पूरा पता, अपनी हालत और जरूरी मालूमात, जैसे कि किस किस्म की इमरजेंसी है, किस वक्त का इशू है और किस जगह पे आप हैं, ये सब बताना बहुत जरूरी है। ये मालूमात देकर आप अपनी मदद के लिए जल्दी से रिस्पॉन्स हासिल कर सकते हैं। 999 पर कॉल करते वक्त ये जरूरी है कि आप पूरी तरह से शांत रहें। अगर आप घबराएंगे तो मदद देने वाले को आपकी बात समझने में मुश्किल हो सकती है, इसलिए अपनी कॉल को क्लियर और ठीक से देना जरूरी है। जब आप 999 पर कॉल करते हैं तो ये कॉल डायरेक्टली इमरजेंसी सर्विसेज सेंटर तक पहुंचती है। वहां पर ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स आपसे बात करते हैं और सिचुएशन के मुताबिक आपको मदद फराहम करते हैं। अगर आपको मेडिकल मदद की जरूरत है तो एम्बुलेंस भेजी जाती है। अगर किसी कुदरती तूफान या नेचुरल डिजास्टर का सामना है तो रेस्क्यू टीम और सिविल डिफेंस भी आपकी मदद के लिए आती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी, दिल से देसी।
3: आप सुन रहे हैं जुमा रिफ्लेक्शंस विद तलहा अशरफुज़्ज़मान ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
4: जी हाँ सामने क्राम, प्रोग्राम के आखिरी मरहले पर हैं और तकरीबन 3 मिनट बाकी है। तो वही बात है सामने क्राम, खानदान, नई जिंदगी और अपनी अमली ज़िंदगी या काम के जगह के हवाले से, जो अगर हम इसको बैलेंसिंग के बात करें, तवाज़ुन कैसे कायम करें, अगर ये सवाल है तो जैसे कि मैंने प्रोग्राम के शुरू से ही कहा कि भाई सबसे अहम बात ये है कि बाहर के स्ट्रेस को घर में ना लाए, बाहर के स्ट्रेस को घर में ना लाए, काम की थकन को बच्चों पर ना निकालें, दफ्तर की नाराज़ी को इधर आप घर वाली पर ना उतारें। यहाँ से बिल्कुल इसके बरक्स भी वाकई है कि भाई ख़ातून भी अगर यानी कोई ख़वातीन भी अगर उधर काम की जगह पर जाते हैं, काम करती हैं, तो फिर आप भी अपने काम की जगह के स्ट्रेस जो है ना वो घर पर या अपने शौहर के साथ बच्चों पर ना उतारें। तो ये नबवी अख्लाक है, जैसे कि मैंने रिलेट किया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी सारी ज़िम्मेदारियाँ थीं आप वसल्लम पर और इतना दबाव था, मक्के की मुखालफत, मदीने की ज़िम्मेदारियाँ, गज़वात, मुनाफिकीन, यहूद की साजिशें, उम्मत की तरबियत, वही की ज़िम्मेदारी, मगर इस सब के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों पर गुस्सा नहीं उतारते थे, वो बच्चों को प्यार करते थे और इन मामूली बातों पर यानी दुनिया के उमूर पर उनको था ही नहीं, दिलचस्पी नहीं लेते थे कि भाई जब तक दीन के मामले में कोई गलती हो जाए तो वो काफ़ी दिलचस्पी लेते थे कि नहीं अब तो इसकी तरबियत की ज़रूरत है। हाँ, और एक बात है कि मोहब्बत हो लेकिन मोहब्बत के साथ से तरबियत को नज़रअंदाज नहीं किया, कहा कि हाँ बच्चों को 7 साल के वक्त उन्हें ज़रूर हुक्म करो नमाज की, ये नहीं कि भाई बच्चा सो रहा है, 7 साल हो गया, अब क्या उस पर सख्ती करें और क्या कहें कि भाई नमाज के लिए जाओ, इसे नींद से उठाना, ये करना वो करना, ज़रूरत नहीं, वो अपने से जब खुद कर लेगा, बड़ा होगा ना, तब वो कह लेंगे, वो कर लेंगे, अब तो पढ़ाई की वो है। देखें, ये आप अपनी तरजीहात की तयन कर रहे हैं, तो तरजीहात अगर आपकी दीन हो और नमाज के हवाले से आप ये चाहते हो कि भाई मेरी नस्ल, मेरी औलाद, उनमें इस तरह की कोताही ना हो, नमाज के हवाले से मैं तो उनमें कोई कोताही नहीं देखना चाहता हूँ, तो आपको पक्का आइडल बनना है, ख़ुद को भी मस्जिद में उस तरह की हाज़िरी मौजूदगी और बच्चों के हवाले से भी उस तरह के हुक्म, उस तरह उन्हें कहा जाए और वो इस बात के आदी न बने कि माँ बाप को घर में हर वक्त नमाज पढ़ते हुए देखता है या फिर नमाज के अवकात में इस तरह गफलत और लापरवाही का शिकार देखता है, बस उसका आदी बन जाता है, उसको वो क्या तरबियत हासिल करेगा। तो इस वजह से आप सल्लम की तरबियत में, आप सल्लम की मोहब्बत में तरबियत भी थी, यूँ नहीं कि सिर्फ मोहब्बत, तो मोहब्बत

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: ए बनी आदम, क्या तुम दुआ का मजाक उड़ाते हो? दुआ को हकीर समझते हो? हालांकि तुम्हें खबर ही नहीं कि दुआ क्या कुछ करती है। ये रात के तीर हैं जो सीधे अपने निशाने पर जा लगते हैं, खता नहीं करते। अलबत्ता उनका एक वक्त मुकर्रर है जिसके बाद उनका असर जाहिर होता है। दोस्तों, प्रोग्राम आज की दुआ, इसका मकसद हमें याद दिलाना है कि दुआ बंदे का सबसे कीमती हथियार है, दिल का सुकून है और रब से ताल्लुक का सबसे मजबूत रिश्ता है। आइए चंद लम्हों के लिए हम अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगे। समीन, शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और दुश्मन भी ऐसा जिसे हम नहीं देख सकते। कुरान में अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैथु ला तरौनहुम, यानी वो और उसका लश्कर हमें देखते हैं मगर हम उन्हें नहीं देख सकते। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि उसके शर से हिफाजत के लिए सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही से मांगी जाए। सूरतुल मुमिनून में इस दुआ का जिक्र आया है, रब अऊजु बिक मिन हमजातिश शयातीन واعوذ بك رب ان يحضرون رب اعوذ بك اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں من همزات الشياطين شیطان کے وسوسوں سے واعوذ بك رب ان يحضرون اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے کسی بھی کام میں شامل نہ ہوں کھانے کے وقت इबादत के वक्त नींद के वक्त हर हाल में वो हमारे साथ शामिल ना हो। सामीन, इस दुआ के कई अहम असबाक हैं जिनमें एक सबक ये है कि असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, कोई और हमें शैतान से नहीं बचा सकता। शैतान इंसान का मुसलसल दुश्मन है जो हर हाल और हर मौके पर उसको बहकाने की कोशिश करता है, और जब बंदा इस दुआ को अपनी आदत बना ले तो हर शर से महफूज और हर खैर के करीब हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस शख्स के लिए जो नींद से घबरा उठे उसके लिए इस दुआ की तलकीन की है, अऊजु बिकलिमातिल्लाहि तम्मा मिन गज़बिही व इक़ाबिही व शर्रि इबादिही व मिन हमज़ातिश शयातीन व अन यहज़ुरून। तो या

फिर जब ये फरिश्तादे लूत के हां पहुंचे तो उसने कहा आप लोग अजनबी मालूम होते हैं। उन्होंने जवाब दिया नहीं बल्कि हम वही चीज लेकर आए हैं जिसके आने में ये लोग शक कर रहे थे। हम तुमसे सच कहते हैं कि हम हक के साथ तुम्हारे पास आए।

0: वही है जिसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी बरसाया जिससे तुम खुद भी सैराब होते हो और तुम्हारे जानवरों के लिए भी चारा पैदा होता है। वो इस पानी के जरिए से खेतियां उगाता है और जैतून और खजूर और अंगूर और तरह तरह के दूसरे फल पैदा करता है। इसमें एक बड़ी निशानी है उन लोगों के लिए जो गौर व फिक्र करते हैं। उसने तुम्हारी भलाई के लिए रात और दिन को और सूरज और चांद को मुसख्खर कर रखा है और सब तारे भी उसी के हुक्म से मुसख्खर हैं। इसमें बहुत निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल से काम लेते हैं। और ये जो बहुत सी रंग बरंग की चीजें उसने तुम्हारे लिए जमीन में पैदा कर रखी हैं, इनमें भी जरूर निशानी है उन लोगों के लिए जो सबक हासिल करने वाले हैं। वही है जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर रखा है ताकि तुम उससे तरोताजा गोश्त लेकर खाओ और उससे जीनत की वो चीजें निकालो जिन्हें तुम पहना करते हो। तुम देखते हो कि कश्ती समंदर का सीना चीरती हुई चलती है। ये सब कुछ इसलिए है कि तुम अपने रब का फजल तलाश करो और उसके शुक्रगुजार बनो। उसने जमीन में पहाड़ों की मेखें गाड़ दी ताकि जमीन तुमको लेकर ढलक ना जाए। उसने दरिया जारी किए और कुदरती रास्ते बनाए ताकि तुम हिदायत पाओ। उसने जमीन में रास्ता बताने वाली अलामतें रख दी और तारों से भी लोग हिदायत पाते हैं। फिर क्या वो जो पैदा करता है और वो जो कुछ भी पैदा नहीं करते दोनों यकसा हैं? क्या तुम होश में नहीं आते? अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। हकीकत यह है कि वो बड़ा ही दरगुजर करने वाला और रहीम है, हालांकि वो तुम्हारे खुले से भी वाकिफ है और छुपे से भी। सदकल्लाहुल अज़ीम।
1: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं।

कसम है बुर्जों वाले आसमान की और उस दिन की जिसका वादा किया गया है और हाजिर होने वाले की और उसकी जिसके पास लोग हाजिर हों। कुरान करीम ऐसे लफ्ज शाहिद और मशहूद हैं। शाहिद का तर्जुमा हाजिर होने वाले से और मशहूद का जिसके पास लोग हाजिर हों से किया गया है। उसकी एक तफसीर यह है कि शाहिद से मुराद जुमे का दिन है और मशहूद से मुराद अरफा का दिन है। उसकी एक दूसरी तफसीर यह है कि शाहिद से मुराद इंसान है और मशहूद से मुराद क़यामत का दिन है, क्योंकि हर इंसान उस दिन अल्लाह ताला के सामने हाजिर हो जाएगा। शाहिद का एक तर्जुमा गवाह भी किया जा सकता है और मशहूद का वो जिसके बारे में गवाही दी जाए, यानी क़यामत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अहले ईमान के ईमान की गवाही देंगे। इसलिए इस आयत में इस तरफ भी इशारा हो सकता है। अब मजीद तर्जुमे के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। क़ुतिला अस्हाबुल उख़दूद, के खुदा की मार है उन खंदक खोदने वालों पर, उस आग वालों पर जो ईंधन से भरी हुई थी जब उसके पास बैठे थे और वो ईमान वालों के साथ जो कुछ कर रहे थे उसका नजारा करते जाते थे, और वो ईमान वालों को किसी और बात की नहीं सिर्फ इस बात की सजा दे रहे थे कि वो उस अल्लाह पर ईमान ले आए थे जो बड़े इख्तदार वाला बहुत काबिल तारीफ है, जिसके कब्जे में सारे आसमानों और जमीन की सल्तनत है और अल्लाह हर चीज को देख रहा है। यकीन रखो कि जिन लोगों ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को जुल्म का निशाना बनाया फिर तौबा नहीं की, उनके लिए जहन्नम का अजाब है और उनको आग में चलने की सजा दी जाएगी। जो लोग ईमान लाए हैं और उन्होंने नेक अमल किए हैं उनके लिए बेशक जन्नत के ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं। ये है बड़ी कामयाबी। वाकया की तफसीलात जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।

के पास आने जाने लगा। इसे उसके दीन को सीखना शुरू कर दिया और ईमान ले आया और राहिब से सच्ची मसीहियत की तालीम हासिल करके आहिस्ता आहिस्ता आलिम दीन बन गया। अब उसने राहिब से इसरार किया कि मुझको इसमें आजम के मुतालिक कुछ बताइए, मगर राहिब ये कहकर टालता रहा कि ब्रादर ज़ादा, मुझे ये खौफ है कि तू इसको बर्दाश्त न कर सकेगा क्योंकि मैं तुझको कमजोर पाता हूँ। लड़का खामोश हो गया। यहाँ तो ये सिलसिला जारी था और उधर अब्दुल्ला का बाप तामिर ये समझता रहा कि मेरा लड़का जादूगर से जादू सीख रहा है। कुछ दिन खामोश होकर लड़के से सब्र न हो सका और उसने यकीन कर लिया कि राहिब बुखल कर रहा है और बताना नहीं चाहता। ये सोचकर उसने तीरों का मुट्ठा लिया और हर एक तीर पर खुदा का एक एक नाम लिखा और फिर आग रोशन की और एक एक तीर को उसमें डालना शुरू किया। तीर आहस्ता आहस्ता आग की नजर होते रहे और जलते रहे, मगर एक तीर जब आग में पहुंचा तो फौरन उछल कर दूर जा गिरा और लड़का समझ गया कि इस तीर पर इसमें ज़ात है, यही इसमें आजम है। और उसके बाद राहिब को सारा किस्सा कह सुनाया। राहिब ने सुना तो अब्दुल्ला को नसीहत की कि उसको हिफाजत के साथ अपने पास रखना। अब्दुल्ला ने उसको दीन हक की तबलीग का जरिया बना लिया। वो जिस किसी को मरीज पाता तो उसे कहता कि अगर तू खुदा वाहिद पर ईमान ले आए और मोमिन बन जाए तो मैं तेरे लिए अल्लाह ताला से दुआ करूं कि वो तुझको तंदुरुस्त कर दे। और जब वो शख्स सच्चे दिल से ईमान ले आता तो ये दुआ करता और मरीज चंगा हो जाता। आहिस्ता आहिस्ता ये बात नजरात के बादशाह तक पहुंची। उसने लड़के को बुलाया और कहा कि तूने मेरी ममलकत में फसाद मचाया और मेरे बाप दादा के दीन की मुखालफत शुरू कर दी, इसलिए अब तेरी सजा यह है कि तुझको कत्ल कर दिया जाए। लड़का कहने लगा, बादशाह मेरा कत्ल आपकी कुदरत से बाहर है। बादशाह ने गजबनाक होकर हुक्म दिया कि उसको पहाड़ की चोटी से गिरा दो। तो आगे जाके सरकारी आदमी उसके साथ या इस लड़के के साथ वही करते हैं जो पिछले वाक्य में हमने बताया है। इस तरह अहले शहर ने जब लड़के और बादशाह के दरमियान जंग का यह नजारा देखा तो वो सब सिद्क दिल से खुदा वाहिद पर ईमान ले आए और मुशर्रफ बाई इस्लाम हो गए। नजरान में ईसाइत की तरवीज लड़के और राहिब के वाकया का तस्करा यहूदी अल-मज़हब शाह यमन ज़ूनवास तक भी पहुंचा। उसने सुना तो सख्त इश्तियाल में आ गया और लश्कर जरार लेकर नजरान पहुंचा और तमाम शहर में ऐलान करा दिया कि कोई शख्स ईसाइत पर कायम नहीं रह सकता, या तो वो यहूदियत कबूल करे वरना मरने के लिए तैयार हो जाए। अहले नजरान के कल्ब में ईसाइत इस दर्जा घर कर चुकी थी कि उन्होंने मर जाना कबूल किया मगर ईसाइत से मुंह ना मोड़ा। ज़ूनवास ने देखा तो गैज़ो गज़ब में आ गया और हुक्म दिया कि शहर के गलियों और शाहराहियों में खंदकें और खाइयां खोदी जाए और उनमें आग दहकाई जाए। जब लश्करियों ने तामील कर दी तो उसने शहरियों को जमा करके हुक्म दिया कि जो शख्स यहूदियत कबूल करने से इनकार करता जाए, मर्द हो या औरत या बच्चा, उसको जिंदा आग में डाल दो। चुनांचा उस हुक्म के मुताबिक 20,000 के करीब मजलूम इंसानों को जाम शहादत पीना पड़ा। यही वो वाक़ा है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह बुरुज में किया है। तो इस वाक़े को नकल करने के बाद इब्न इसहाक कहता है कि ज़ूनवास यमन का मशहूर बादशाह, उसका असल नाम ज़रा था मगर सल्तनत के तख्त पर बैठने के बाद यूसुफ ज़ूनवास के नाम से शोहरत पाई। उसके बाप का नाम तब्बान असाद था और अबू कुर्ब कुनियत रखता था। यमन के इन बादशाहों का लकब तुब्बा था, इसलिए कुतुब तारीख में एक खानदान तबाबाए यमन कहलाता है। अबुकर वो पहला तुब्बा है जिसने बुतपरस्ती छोड़कर यहूदियत को कबूल कर लिया था। उसने मदीना पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था मगर बनू कुरैज़ा के दो यहूदी उलमा की तलखीन पर सच्चे दीन मुसवी को कबूल करके मदीना से वापस चला आया और फिर मक्का मुअज़्ज़मा पहुँच कर काबा पर गिलाफ चढ़ाया और दोनों यहूदी उलमा को यमन साथ ले आया। उन्होंने यमन में यहूदियत की तबलीग की और आहिस्ता आहिस्ता अहले यमन ने यहूदियत कबूल कर ली थी। अलहासल ज़ूनवास उसने एक दिन में नजरान के 20,000 हक परस्त इंसानों को शहीद कर दिया मगर उनमें से एक शख्स किसी तरह जान बचाकर निकल भागा और शाम में मुकीम कैसर रूम के दरबार में पहुंचकर नजरान के हादसे की दास्तान कह सुनाई और एहतजाज किया। कैसर ने फौरन हबशा के बादशाह नजाशी को लिखा कि वो यमन पर हमला करके ज़ूनवास से उस जुल्म का इंतकाम ले। नजाशी ने उस पर चढ़ाई कर दी और थोड़े ही अरसा बाद उसको शिकस्त देकर तमाम यमन पर कब्जा कर लिया। ज़ूनवास ने दरिका के रास्ता फरार होने की कोशिश की मगर गर्क हो गया और सर तकरीबन 70 साल तक यमन नसारा के जेर हुकूमत रहा। उसके बाद हमीरी खानदान के एक रईस सैफ बिन ज़ियज़न ने कोशिश की
کہ اپنے خاندان کی رہائش گاہ ملک پر دوبارہ قبضہ کرے. چنانچہ سلسلے میں اس نے کسرائے فارس سے مدد طلب کی، مگر کسرائے نے حکم دیا کہ مملکت میں جس قدر بھی

FM 107 पर हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्ला। आज हम बात करेंगे कि खवातीन की अमूमी सेहत और तंदुरुस्ती जो है वो कैसे बरकरार रखी जा सकती है। खवातीन खानदान और मुआशरे की बुनियाद हैं, लेकिन अक्सर वो अपनी सेहत को नज़रअंदाज कर देती हैं। घर, काम और बच्चों की जिम्मेदारियों के दरमियान अपनी सेहत का ख्याल

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se desi.
1: Scam alert. दोस्तों, नए जमाने में नए स्कैम्स हो रहे हैं और इस तरह के स्कैम से बचना आसान नहीं है जब तक आप इन स्कैम्स के बारे में ना जानते हो, और इसीलिए FM 107 की पूरी कोशिश है कि आपको नए जमाने के नए स्कैम से या फ्रॉडस्टर से बचाए। दोस्तों, घरों में स्मार्ट डिवाइसेस जैसे स्मार्ट सिक्योरिटी कैमराज, स्मार्ट लॉक्स और AI असिस्टेंट्स का यूज बहुत बढ़ गया है और यहीं से शुरू होता है हाईजैकिंग फ्रॉड। हैकर्स आपके होम वाईफाई नेटवर्क के जरिए इन अनसिक्योर्ड स्मार्ट डिवाइसेस को रिमोटली कंट्रोल कर लेते हैं। इसके बाद वो आपके घर के अंदर की प्राइवेट वीडियो रिकॉर्डिंग्स और पर्सनल फोटोज निकाल लेते हैं। फिर शुरू होता है एक्सटॉर्शन यानी ब्लैकमेलिंग का खेल, जहां आपसे डिजिटल करेंसी में बड़ी रकम मांगी जाती है और पैसे ना देने पर आपकी प्राइवेट लाइफ को इंटरनेट पर लीक करने की धमकी दी जाती है। कुछ केसेस में तो क्रिमिनल्स स्मार्ट लॉक्स को लॉक करके लोगों को उनके ही घर में कैद कर देते हैं जब तक रैंसम ना मिले। इस सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड से बचने के लिए अपने हर स्मार्ट डिवाइस का डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें और राउटर पर स्ट्रॉन्ग फायरवॉल लगाएं। 2026 में ये हैकर्स एडवांस्ड ऑटोमेटेड स्कैनर्स का यूज करते हैं जो वीक इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस को ऑटोमेटिक ढूंढ निकालते हैं, जिससे हर वो घर निशाने पर होता है जो बेसिक साइबर सिक्योरिटी अपडेट्स को इग्नोर करते हैं। लेकिन FM 107 आपको इसका सॉल्यूशन भी देता है। दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये है कि अपने स्मार्ट होम को सिक्योर रखने और इस एक्सटॉर्शन फ्रॉड से बचने के लिए आपको नेटवर्क सिक्योरिटी पर ध्यान देना होगा। सबसे पहला कदम ये है कि अपने वाईफाई राउटर का डिफॉल्ट यूजर नेम और पासवर्ड बदल कर एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड लगाएं। अपने मेन इंटरनेट राउटर पर एक गेस्ट नेटवर्क बनाएं और अपने सारे स्मार्ट होम डिवाइसेस, कैमरा, लॉक्स, टीवीज को इसी गेस्ट नेटवर्क से कनेक्ट करें। इससे अगर कोई हैकर किसी डिवाइस को हैक कर भी लेता है तो वो आपके मेन कंप्यूटर या मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचेगा। जहां आपका फाइनेंशियल डेटा होता है, किसी भी स्मार्ट डिवाइस को खरीदते वक्त सिर्फ उन ब्रांड को चुनें जो रेगुलर सिक्योरिटी अपडेट्स और फर्मवेयर पैचेस प्रोवाइड करती हैं। हर डिवाइस के डिफॉल्ट एक्सेस क्रेडेंशियल को सेटअप करते वक्त ही चेंज कर दें और उनमें मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनेबल करें। दोस्तों, ये था नए जमाने के स्कैम से बचने का तरीका। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नए जमाने के नए स्कैम पर बात करते हुए। सुनते रहें FM 107, दिल से देसी।
2: स्कैम अलर्ट। कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब। यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को। सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ। जूनियर जनाब विद आरजे सफा।
2: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सभी को खुशामदीद है उस शो में जिसका नाम है जूनियर जनाब। और भाई मैं हूँ आरजे सफा, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मैं आपको जमा करती हूँ, लेकर आती हूँ, जोड़ती हूँ एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर आपको उन लोगों से जिनके बारे में आप कह लें कि सितारों की तरह रोशन होते हैं, छोटे से लेकिन सितारों की तरह रोशन होते हैं। इनकी उम्र पे मत जाइएगा, लेकिन इनकी इस छोटी सी उम्र में इनके पास अचीवमेंट बहुत सारी होती है। साथियों आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक ऐसी यंग अचीवर जिन्होंने ये साबित कर दिया भाई कि अगर हौसला बुलंद हो तो भाई मंजिल दूर नहीं है। साथियों मैं बात कर रही हूँ आस्था की। आज मेरे साथ स्टूडियो में आस्था मौजूद हैं, और आस्था के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ कि यूँ समझ लें कि वन वर्ड में मैं कहूँ ऑलराउंडर हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है साथियों, अगर चलें आपको लिस्ट दे देती हूँ, ये पब्लिक स्पीकिंग, बास्केटबॉल, डिबेट, डांसिंग, ओलंपिक एग्जाम्स, आप नाम लें और आस्था की अचीवमेंट की लिस्ट में वो सब कुछ शामिल मिलेगा, बता रही हूँ भाई। 2023 में इन्होंने अपने स्कूल में ऑलराउंडर का अवार्ड भी जीता है। और साथियों ये अवार्ड सिर्फ कोई ट्रॉफी नहीं बल्कि उनकी लगन और डेडिकेशन की पहचान है। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे कि भाई ऐसा कैसे, इनको कोई चैलेंजेस नहीं हुए, इनकी कैसी जर्नी थी, इन्होंने क्या किया, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या थी, बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे साथ जुड़े रहें और आस्था की ही जबानी हम उनसे पूछेंगे कि आखिर इतना कुछ अचीव कैसे कर लिया भाई इतनी छोटी उम्र में, और उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए, उन्होंने कोई ख्वाब देखे हैं फ्यूचर के बारे में। अब इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी माशाल्लाह से लिस्ट हो जाए अगर इंसान की अचीवमेंट्स की, तो उनके दिमाग में क्या चलता है, कुछ रह गया है कि उनके पास से वो कहें कि मैं अचीव कर सकूं। तो भाई हम

0: करते हैं आस्था को. आस्था हेलो, हाउ आर यू?
1: हेलो मैम, आई एम फाइन, हाउ आर यू?
0: आई एम ऑल गुड. अच्छा आस्था, ये बताएं कि नविश्चविश तो नहीं फील कर रही?
1: नहीं नहीं,
0: वैसे ये होना नहीं चाहिए क्योंकि माशाल्लाह इतनी भाई फुल टाइम अचीवर चल रही हैं, तो कहाँ से नर्वस फील करेंगी. अच्छा ये बताएं आस्था, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर लिसनर्स इन योर ओन वर्ड्स? आस्था कौन है, आस्था कितने साल की हैं, कुछ भी अपने बारे में थोड़ा बहुत.
1: हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आस्था और मैं ग्रेड 8 की स्टूडेंट हूँ फ्रॉम DPS मॉडर्न इंडियन स्कूल एंड आई एम 13 ईयर्स ओल्ड.
0: माशाल्लाह 13 ईयर्स. देखें अब अगर इन्होंने जता ही दिया कि मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ तो ये इसलिए जता रही हैं कि सुन लें कि ये एज के हिसाब से नहीं होती अचीवमेंट्स. अच्छा आस्था टेल मी, हाउ डिड योर जर्नी एज अ मल्टी टैलेंटेड अचीवर बिगिन? एक होता है ना, हम कहते हैं कि भाई किसी एक डायरेक्शन में लग जाओ तो अचीवमेंट हो जाती है, वो पूरा हो जाता है. ये मल्टी टैलेंटेड होने का क्या कोई शौक है, कोई राज है, क्या है क्या?
1: नहीं असल में कोई राज नहीं है बेसिकली, मतलब आई थिंक जब से मैं 4-5 साल की हूँ मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे बहुत से क्लासेस में डाले लाइक छोटे पर सी ड्राइंग में, स्केटिंग में, डांसिंग में. तो इवेंचुअली आई थिंक वन गुड क्वालिटी अबाउट माई सेल्फ इज कि अगर मैं कोई एक चीज सीखूँ तो मैं अपनी पूरी मतलब जी जान लगा देती हूँ.
0: सही.
1: सो आई गेट इवेंचुअली गुड इन दैट पर्टिकुलर थिंग एंड आई थिंक उसी से मतलब मेरे इंटरेस्ट हर चीज में मतलब बहुत से अच्छे से हुए. तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट मल्टीटास्किंग का जो जर्नी उधर से शुरू हुआ.
0: अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाता है. ठीक है, ओके. अच्छा ये बताइएगा, हु और व्हाट एक्चुअली इंस्पायर्ड यू द मोस्ट इन योर अर्ली इयर्स? कहते हैं ना कोई एक हो हमारे दिमाग में, मुझे फलानी पर्सनालिटी बहुत पसंद है, या फॉर गर्ल्स हमें होता है कि हमारी मदर हमारे लिए एक रोल मॉडल होती. आपके लिए कौन था?
1: मेरे लिए मेरी बड़ी दीदी थी.
0: यू लाइक मी, माय मॉम एंड माय सिस्टर, आई आल्सो ऑलवेज लुक अप टू देम. ओके, एंड शी इज आल्सो अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन.
1: शी इज आल्सो अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन एंड आई थिंक फ्रॉम हर द वन थिंग आई हैव लर्न्ड इज कि मतलब आई थिंक जितनी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिले उतने उन्हें नहीं मिले थे. तो मतलब जैसे मुझे छोटे पर से ही लाइक मम्मी ने मुझे इतने सारे क्लासेस में डाला पर उन्हें उतने नहीं थे जहाँ पे हम पहले रहते थे. सो व्हेन शी यू नो लाइक केम टू 8th स्टैंडर्ड एंड ऑल, तो उसमें पढ़ाई का प्रेशर भी बढ़ते जाता है बट एट द सेम टाइम शी बैलेंस्ड एवरीथिंग. सो यू नो एंड वी हैव लाइक 8 ईयर्स एज गैप बिटवीन अस एंड मेरा एक बड़ा भाई भी है. हाँ, तो फिर यू नो आई हैव ऑलवेज लुक्ड अप टू हर एंड शी हैज ऑलवेज बीन सच अ बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. ये सब कुछ बैलेंस करना एंड यू नो एट द सेम टाइम बीइंग अ रियली काइंड पर्सन एंड डूइंग एवरीथिंग, सो That's what has inspired me.
0: अच्छा जी, अच्छा ये बताएं कि अगर आपके अचीवमेंट्स के बारे में बात की जाए तो वो जो अवार्ड आपको मिला फर्स्ट टाइम, यू वर्न समथिंग, इट्स अ ह्यूज थिंग व्हेन वी फर्स्ट टाइम अचीव समथिंग, वी हैव ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट इट. तो हाउ, व्हाट वर योर फीलिंग्स, व्हाट एग्जैक्टली वाज गोइंग इन योर माइंड, इन योर सेंसेस के भाई क्या होगा, क्या किया है, कुछ ऐसा जो आपको याद हो एक्स्ट्रॉर्डिनरी सा?
1: जी, तो मेरा फर्स्ट एवर अवार्ड मैंने जीता था 4th स्टैंडर्ड में व्हेन आई वॉन अ इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन ऑफ स्टोरी टेलिंग इन हिंदी एंड स्टोरी बड़ी फनी सी थी. इट वॉज अबाउट एन आलसी ब्राह्मण. तो हाँ, तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा ऑडिशन था. मैम ने मुझे कॉल किया एंड बोला कि ऐसा होने वाला है तो इफ़ यू लाइक यू कैन सेंड मी अ वीडियो. तो मैंने उन्हें भेजा एंड आई गॉट सेलेक्ट.

0: school. So it was
1: so your hard work paid off.
0: Yes.
1: Oh my god, it's an interesting story. अच्छा ये बताएं कि ये जो हम कहते हैं ना different activities का शौक होता है, ये आपको शुरू से ही था या कहीं जाकर एक टाइम आता है ना जब हम कहते हैं नहीं आई वॉन्ट टू बी मल्टी टैलेंटेड, आई वॉन्ट टू डू मल्टीपल टास्किंग और मल्टीपल एक्टिविटीज. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं एक चीज को पकड़ो और आई विल डू माई बेस्ट इन. तो ये शौक जो मल्टी एक्टिविटीज का था ये पहले से था?
0: आई वुड से पहले से इतना नहीं था. देखो मेरी इंस्पिरेशन मेरी बड़ी दीदी थी तो मुझे लगा कि ये सब कुछ नॉर्मल होता है कि
1: अच्छा।
0: मतलब हाँ मुझे लगा कि ओके मोस्टली आई थिंक सभी लोग बहुत से क्लासेस करते हैं, बहुत से इंटरेस्ट होते, तो आई थॉट इट्स वेरी नॉर्मल. फिर धीरे धीरे जब स्कूल में कॉम्पिटिटिव एटमोसफियर ज्यादा बढ़ा तो हम लाइक ओ मतलब एवरी वन हैज वन पर्टिकुलर इंटरेस्ट दे आर गोइंग फॉर एंड व्हेन समवन आस्क्स मी माय हॉबीज आई एम गिविंग देम अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड दे आर लाइक ओ तुम मतलब तुम्हें ये सब कुछ आता है. लाइक ओ ओके.
2: अब लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे करेंगे और भी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर. सुनते रहिए FM 107.
3: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
1: अच्छा ये बताएं अब अक्सर औकात ये भी होता है ना व्हेन यू आर मल्टी टैलेंटेड पर्सन, आप मल्टीपल एक्टिविटीज करते हैं तो फ्रेंड्स के सर्कल में कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि फ्रेंड्स आर टॉन्टिंग यू के यू आर बूस्टिंग अबाउट योर सेल्फ टू मच और समथिंग के जो ना वो शो ऑफ कर रही है बहुत कुछ. हाँ इट हैपेंस समटाइम्स, पीपल ट्राई टू पुल यू डाउन. आई डोंट नो व्हाई बट माइट बी दे हैव डिफरेंट इंटरेस्ट या कुछ ऐसा. फ्रेंड आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? What is the particular thing which you have heard और आप कहें कि ये तो मुझे सुनने को मिलता ही मिलता है.
0: आई थिंक जैसे मतलब हमारे स्कूल में लाइक माई प्रिंसिपल इज वेरी सपोर्टिव ऑफ यू नो चिल्ड्रन. सो व्हेनेवर वी नो कॉम्पिटिशन हमारा यू नो नाम आता है वेबसाइट पर, स्कूल के फेसबुक पर, तो ऐसे कई बार सपोज मेरे नाम आते हैं तो वो आता है सपोज, या फिर कोई ना कोई टीचर इज शी इज कमिंग इन क्लास में शी लाइक मैम आई वांट टू आस्क फॉर दिस कॉम्पिटिशन दैट कॉम्पिटिशन. तो ऑब्वियसली क्लास में इसको भी पता है कि ये सब कुछ चल रहा है. तो येस आई थिंक आई वुड से स्लाइट उनके बिहेवियर में थोड़ा चेंजेस तो आता है व्हेन आई कम बैक फ्रॉम लाइक अ प्रैक्टिस एंड देन दे आर लाइक यू नो कहाँ गई थी लाइक टीचर पूछे तो मैं उनको बताती हूँ एंड देन दे कहते हैं लाइक मैम आशा तो हमेशा ही बाहर रहती है एंड येट शी इज यू नो एबल टू यू नो द स्कोर द मार्क्स एंड एवरीथिंग. तो आई एम लाइक ओके इज दिस अ गुड वे और यू नो व्हाट आर यू ट्राइंग टू से बिकॉज if I'm able to balance everything at the same time I think it's God's grace yeah, that I'm able
1: yeah,
0: to do it.
1: Yeah, of course.
0: Yeah, and yeah there will be people who are you know trying to pull you down and trying to say bad things about you but it's okay. You just you know maintain your things and like that. So yeah that is common that I hear is ki matlab ye to sab kuch hi karti hai ise hi sab kuch kyun milta hai mehnat karni padti hai
1: ye hota hai. Acha a very particular question, ek bahut personal question hai ye ke what do you think do you believe in luck or hard work?
0: Okay, this is a tricky question.
1: Yeah, it's a tricky question. I'll tell you why I want to know about it. Because hota ye hai ke some people don't credit their hard work that much that they should. Are you one of them ki jo soche ke bhai मेरे तो मतलब लोग कहते हैं ना आपको फीड कर देते हैं कि भाई इसकी तो लक अच्छी है, इसकी तो लक अच्छी. एवरी टाइम यू हियर दिस पीपल आर नॉट लुकिंग इनटू हाउ मच हार्ड वर्क यू आर पुटिंग इनटू दैट थिंग व्हिच यू आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन. आप रातों को सोते नहीं हो, आप प्रॉपरली खा नहीं पाते हो, आप एक ऐसा लगता है जैसे एक हम कहते हैं ना तराजू हमने पकड़ा होता है कि एकेडमिक्स भी बैलेंस करने हैं, एक्टिविटीज बैलेंस करनी है, अपने आप को भी खुश रखना है. तो व्हाट डू यू थिंक, इज इट योर हार्ड वर्क और इज इट द लक यू गिव मोर क्रेडिट टू?
0: आई बिलीव कि लक भी उन्हीं का साथ देता है जो हार्ड वर्क करते हैं. लक विल नॉट जस्ट यू नो रैंडमली कम टू यू कि आप बस बैठे हो एंड यू जस्ट एक्सपेक्ट कि यू नो आई शुड गेट अपॉर्चुनिटीज, आई शुड गेट दिस. नो हाँ भले ही अगर यू नो इफ आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन समथिंग आई वुड कॉल दैट एज लक. बट इफ यू आर यू नो विनिंग दैट ओके थोड़ा बहुत मे बी यू नो 10% 5% लक का होता है बट मोस्टली इट इज योर हार्ड वर्क. लक विल नॉट जस्ट रैंडमली कम टू यू, यू हैव टू पुट योर एफर्ट्स इन दैट.
1: मतलब बात

0: बिल्कुल सही बैठती, मैं बिल्कुल सही सोच रही थी कि अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है, इट्स जस्ट द सम पीपल ग्रैब इट सम पीपल डोंट. वो कहते हैं ना रेस स्टार्ट होती है तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो रेस शुरू में ही नहीं भागते. तो इट इफ यू रियली वांट टू विन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. You might not be a multitasking person, but you have to start from somewhere. कुछ बच्चों का ये भी होता है कि वो कहते हैं हम चलो हम academics ही पूरे कर लें, वो ही बहुत बड़ी बात है. तो you have to for such kids, you have to start. ये मत देखें कि आप जीतेंगे हारेंगे. The first thing should come into your mind is I will participate. अच्छा जी, ये मुझे बताएं कि जैसा कि मैंने शुरू में भी आपके इंट्रोडक्शन में सबको बताया, आपने बास्केटबॉल, डिबेट्स, डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह की है, इन सारी एक्टिविटीज में जो जिनके अंदर आप इन्वॉल्व हैं, इनमें से आपकी आपका है ना सबसे फेवरेट वाली कौन सी है? आपकी एक पर्टिकुलर तो होगी ना कोई, तो वो कौन सी वाली है?
1: आई थिंक पर्टिकुलरली मैं कहूँगी पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज आई थिंक ये जर्नी मतलब आई डिस्कवर्ड मेरा टैलेंट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग आई थिंक इन थर्ड ग्रेड. उसके पहले यू नो इट वॉज डांसिंग एंड एवरीथिंग, गेस्ट आते घर पे तो उन्हें डांस करके दिखाना, एंड दैट वाज लाइक काइंड ऑफ माय हॉबी, राइट?
0: गर्ली स्टफ होता है वो, हाँ, बैलेरिना एंड दिस एंड दैट. या
1: फिर उसके बाद पब्लिक स्पीकिंग, आई थिंक अभी भी करेंटली मेरा सबसे फेवरेट विल बी पब्लिक स्पीकिंग, बिकॉज अभी रिसेंटली हमारे स्कूल में एक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन हुआ था, इट वॉज अबाउट डिबेट. एंड लास्ट ईयर लाइक हमारा स्कूल क्या करता है कि देयर विल बी स्टूडेंट्स, टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 8th ग्रेड एंड वन स्टूडेंट फ्रॉम 7th ग्रेड. लास्ट ईयर आई वॉज इन 7th, सो फ्रॉम द एंटायर ग्रेड आई वॉज सेलेक्टेड एंड वॉज अ वेरी गुड थिंग फॉर मी. बट थिंग इज दैट आई डिड नॉट नो मच अबाउट डिबेट, सो माई सीनियर्स यू नो दे हेल्प मी इन एवरीथिंग एंड वी वेंट टिल द फाइनल्स, बट वी अनफॉर्चुनेटली कुडंट विन द फाइनल्स, बट इट्स ओके, इट वॉज एन एक्सपीरियंस,
0: इट वॉज एन एक्सपीरियंस.
1: या एंड अगेन दिस ईयर I mean, so हमारे ग्रेड से दो बच्चे सेलेक्ट होंगे, तो it was me and this one more boy. Now we both, अभी I knew about debate basics, right? So we had to train this one girl from 7th, and like me, when I was in 7th, she is also a beginner, she didn't know anything about debate. So I would say, मतलब जब responsibility खुद पर आती ना, ऐसा लगता है कि oh, how did these, you know, my seniors handle me as a kid? So you know, I kind of, you know, trained her and everything like that. And then from that moment, and I think from that moment, I would say ki when you want to teach something to someone, you have to explain them very well. And I would say ki I did a very well job, because that girl, she understood debate basics, I think within like 2 to 3 days. And we won the semifinals, we won the finals as well.
0: Very
1: so
0: good.
1: Yeah, and since I was a senior this time, I felt really, really proud about it.
0: Ab pata chal raha hai, teacher ko kaisa feel hota hoga. Acha, the thing about making others learn is, kuch bachche aise hote hain, would you agree on it, कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास जितनी नॉलेज हो ना, दे जस्ट ट्राई टू कीप इट टिल देम. वो कहते हैं लिमिटेड, किसी को मैं इतना एक्सेस नहीं दूँ तो ये हमसे आगे निकल जाएंगे. एंड एट द अदर साइड कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, दे आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, दे वेरी हेल्पफुल, दे वेरी काइंड, अच्छा मैं मुझे आता है मैं तुम्हें भी सिखा देता हूँ. तो होता ये कि जो बच्चा ऐसा होता है ना जो दूसरों को भी सिखाता है, आई थिंक कि जब आप दूसरों को सिखाते हो ना, यू गेट टू नो वेयर इन विच टॉपिक यू आर नोइंग, यू आर हैविंग लेस नॉलेज, आप फिर उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हो.
1: यस,
0: तो क्योंकि एक बात होती है ना कि मैं आपसे बात कर रही हूँ एंड आई जस्ट गो ब्लैंक, माइंड फॉग हो जाता है, और आप कहते हो हाँ ये भी तो एक सवाल उठ सकता है लेकिन इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है. यू गेट टू नो योर वीक पॉइंट्स व्हेन यू आर मेकिंग अदर स्टडी. तो ओके, मतलब यू आर अ वेरी हेल्पफुल कम्युनिकेटिव पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह. ओके, अच्छा ये बताएं वो कौन सी फर्स्ट एक्टिविटी थी जो आपने शुरू की थी?
1: फर्स्ट
0: कहाँ से शुरू, ये सफर शुरू कहाँ से हुआ था?
1: मतलब ओके, मैं जिस कंपाउंड में रहती हूँ, इट्स फिल्ड विद टैलेंटेड पीपल, लाइक एवरीवेयर यू गो द पीपल यू नो टीचिंग अदर्स व्हाट टू डू, लाइक क्लासेस एंड एवरीथिंग. तो बड़ा ही यू नो इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग, माय मॉम जस्ट रैंडमली, मम्मी ने एक मुझे डांस क्लास में डाला एंड आई गो ओवर देयर, एंड ऑब्वियसली मेरी बड़ी दीदी वाज माय इंस्पिरेशन, सो शी वाज आल्सो लर्निंग डांस एंड एवरीथिंग, एंड आई लर्न, एंड द डांस टीचर वाज वेरी इंप्रेस्ड यू नो विद माय डांस, एंड विद दैट आई रैंडमली गिव यू नो लाइक एन ऑडिशन इन स्कूल एंड आई गॉट सेलेक्टेड फॉर दैट एज वेल. तो यस, फ्रॉम दैट ऑल्सो द स्कूल टीचर ने भी डिस्कवर किया डांसिंग वाला टैलेंट, एंड उसके साथ साथ आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई वाज गोइंग फॉर स्केटिंग क्लासेस, आई वाज गोइंग फॉर ड्रॉइंग क्लासेस एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो जर्नी की आई थिंक फर्स्ट एक्टिविटी दैट स्टार्टेड वाज डांसिंग, उसके बाद से देन.
0: सही सही सही. अच्छा ये मतलब ये बात बिल्कुल सही है कि जब हम कहते हैं ना कि इट टेक्स अ होल विलेज टू ट्रेन अ चाइल्ड, तो वो आपके ऊपर बनता है कि आपका एनवायरमेंट माशाल्लाह इतना अच्छा था आसपास का, जैसे आप कह रही हैं, एक तो फैमिली से स्टार्ट होता है, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स पुट टू मच एफर्ट इन यू, ठीक है ओके, और फिर आसपास की आपकी गैदरिंग से भी, ठीक है ओके. अच्छा ये बताइएगा, आप मुझे बताएं कि एक बेसिक सा क्वेश्चन जो हर कोई पूछेगा कि ये बताएं कि हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन एकेडमिक्स एंड योर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज. भाई ये क्या ये अगर आपने मुझे इस ताले की चाबी दे दी तो भाई हमारा भी कुछ भला हो जाएगा. तो ये बताएं कि हाउ द बिग क्वेश्चन मार्क कम्स इन, हाउ डू यू डू दैट.
1: This is like, I have been asked this question so many times till now. So many times. Okay. Bada hi simple sa concept hai. If you keep yourself motivated, I believe more in discipline than motivation because it takes, you know, longer. You'll be able to achieve anything. Obviously, there have been times ki mujhe lagta hai ki aray sab kuch main kaise balance karungi. You know, I think I should drop out from something. It happened very recently with me as well. But at the end of the day, you know, you just tell yourself ki you're also a human. You also feel tired. It is okay. It is okay. You just remember why you started it. You know, agar dil mein aisa lagta hai ki, you know, I want to do something. I want to accomplish something. Sochna bada hi aasan hai. But to do something, it takes a lot of efforts.
0: And yes.
1: Journey mein, you will feel a lot of times, you'll feel tired. You'll feel demotivated. You'll feel like, mujhe nahi karna hai abhi. I want to give up. But you have to remind yourself that it's okay. It happens sometimes. You know, you can take a break. But you don't have to stop.
0: Exactly.
1: There's a big difference between putting a pause and putting a full stop.
0: Okay, if you feel tired, yes. Take a break, then restart
1: again. But don't just completely give up. Remind yourself why I started this. Because it takes a lot of courage also to think about things, you know. I wouldn't say ki randomly tumhare dimag mein thought aaye the ki, you know, I want to do this, I want to do that. Remind yourself ki if I was brave enough to think ki mujhe, you know, I want to balance both the things, then I must be brave enough to continue with these things as well.
0: Sahi.
1: So yeah, and time management is also a big factor. Agar aap time acche se manage kar paate ho, then you can manage both studies and extracurriculars. It will be easy for you.
2: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब. यहाँ मिलेंगे आपको छोटे छोटे अचीवर्स, बड़ी बड़ी कहानियाँ जो इंस्पायर करेंगे आपको और आपके बच्चों को. सो गेट रेडी, क्योंकि जूनियर जनाब ला रहा है एक नया अंदाज, एक नया जज्बा और ढेर सारी मस्तियाँ. जूनियर जनाब विद आरजे सफा.
0: अच्छा, डू यू फॉलो दैट? एक होता है ना, हमारे पास स्केड्यूल होता है, कुछ हम अपने लिए टाइम टेबल बनाते हैं. आजकल तो माशाल्लाह से मोबाइल्स भी आए हैं बच्चों के पास. मोबाइल्स के अंदर जो है ना नोट पैड्स होते हैं जिसके अंदर आप अपने डेली के टास्क लिखते हो. आई फील इफ यू आर नॉट writing down on a paper, writing down in your mobile, do you think it's important to write stuff down, make a to-do list and then follow it? Does that take off the anxiety off the shoulder ki bhai ha maine ek list banayi thi and I achieved it? तो आप ऐसा करते हो, कोई लिस्ट चीज बनाते हो या आप कहते हो नहीं, अच्छा ये एक रैंडम सी बात आई दिमाग में, आज ये कर लूंगी, आज वो कर लूंगी, आज वो कर लूंगी, कुछ ऐसा है जो आप फॉलो करती हो?
1: हाँ, आई मीन एज अ मल्टी टास्किंग पर्सन आई वुड से कि मतलब बहुत सी चीजें होते करने को एंड आई थिंक सब कुछ हम याद नहीं रख सकते.
0: Exactly.
1: तो मैं ऐसे एक पेपर पे नॉर्मली आई जस्ट राइट इट इन द पेपर एंड एक बॉक्स बना दूंगी उसके बाजू में. तो यू नो आफ्टर कंप्लीटिंग अ टास्क जब उसको टिक करते तो वो जो यू नो सेटिस्फैक्शन मिलती है.
0: तो जो आपको एंजाइटी हो रही होती है ना, एंक्शियसनेस हो रही होती है, नहीं ये भी रहता है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो उससे बहुत ज्यादा कम हो जाता है. यू फील अचीव्ड. अच्छा ठीक है. अच्छा ये बताइएगा कि आपने हमें बताया था कि आपको 2023 में ऑलराउंडर का अवार्ड मिला था, आपके स्कूल से मिला था, राइट? तो ये बताएं कि व्हाट एक्चुअली डिड इट मीन टू यू? क्योंकि इतना कुछ जब इंसान अचीव कर रहा होता है ना, तो कहीं ना कहीं जाकर आइदर वी बिकम ओवर कॉन्फिडेंट या हमारे अंदर ना एक हम कहते हैं ना एक वो आ जाती है पर्टिकुलरली क्या कहूँ मैं, वी फील ओवर प्राउड, ओवर अचीव्ड और हम कहते हैं ये तो मेरे दाएं हाथ का खेल था. तो कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आप कहें ये तो एक मामूली सी चीज़ थी? और वो जो अवार्ड पर्टिकुलरली आपको मिला था, डिड इट एक्चुअली मीन, वो एक फीलिंग आई थी कि भाई बहुत बड़ी चीज़ मिल गई हो?
1: जी नहीं, जब फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे पता नहीं था कि मेरा स्कूल को ऐसा अवार्ड देता है फॉर यू नो अचीविंग लॉट. आई वाज जस्ट यू नो डूइंग समथिंग दैट फॉर फन. आई वाज जस्ट यू नो पार्टिसिपेटिंग इन एवरीथिंग आई गॉट अपॉर्चुनिटी, जस्ट यू नो वर्क हार्ड गेट द अवार्ड एंड आई डिड नॉट नो द अवार्ड समथिंग लाइक दिस अंटिल आई वेंट टू सिक्स्थ ग्रेड. इट वॉज अ नॉर्मल डे, आई वाज सिटिंग इन द इंग्लिश क्लास. दिस वन बॉय ही जस्ट कम्स एंड ही इज लाइक मैम कैन आई हैव आस्था.

0: I'm just like, okay, go. And I go and I, you know, followed him to the auditorium. And I go and then there's a teacher standing over there. She showed me a list and there was a list of my achievements over there. And she's like, you know, just read if your name spelling is correct and these are your achievements. And I was like, yes, ma'am. And then she told me to sit down. I was like, okay. And then they made me, like, you know, walk on the stage and my achievements were being, you know, said by a teacher in the background.
1: Okay.
0: And I'm just wondering what's happening. And then the teacher, and then they said, we would like to award Aastha Malha an all-rounder award. It was a practice session.
1: Uh-huh.
0: And I'm just there, I'm like, oh, okay. Oh. Yeah. And then there are seniors, like, there's one person from each and every grade who gets that award.
1: Okay, okay.
0: So my seniors sitting over there and they're very chill up. They knew that this is going to happen. It's just me who's clueless. I was like, oh, and I was the first one from my batch to get it, right?
1: Okay.
0: Because it starts from sixth grade. So, and the teacher's like, you're going to get this all-rounder award after like 2 days. And I'm like, oh,
1: wow.
0: Okay, wow. Oh, ye bhi hota hai. And I go to class and I'm still in shock. And people are asking, kya ho? Why did they call you? And I'm just like, I'm going to get an award. And they're like, oh, for what? And I'm like, for being an all-rounder. And even everyone around me shocked. They're like, you get an award for that? Like, for doing everything?
1: Wow. ये एक नया ही एक्सपीरियंस के साथ ना, मतलब एक नया लेवल अनलॉक हो गया कि सबको पता चला, ओ यू डू गेट ऑलराउंडर अवार्ड, नोबडी न्यू अबाउट इट. ओके, अच्छा माशाल्लाह से यू हैव अचीव्ड सो मच. तो ये बताएं कि इन अचीवमेंट्स में ना, इतनी सारी अचीवमेंट्स से कोई एक मोमेंट तो ऐसा होगा जो आपको, आप कहती होंगी कि मुझे वो याद रह गया, देयर वाज समथिंग स्पेशल इन दैट मोमेंट और देयर वाज समथिंग स्पेशल इन दैट डे, कि वो चीज़ मुझे कभी नहीं भूलेगी, दैट फीलिंग और दैट पर्टिकुलर इवेंट आई विल नेवर फॉरगेट.
0: पर्टिकुलर इवेंट, ओके, आई थिंक इट हैड हैपेंड रिसेंटली. भले वो कोई बड़ा इवेंट नहीं था, इट वॉज अ नॉर्मल स्कूल का, यू नो, लाइक इंटर हाउस कॉम्पिटिशन. टोल्ड यू अबाउट डिबेट. वैसे डिबेट के साथ साथ देयर वॉज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन आई वॉज गोइंग टू. आई वॉज इन डांस, आई वॉज इन पोएम रेसिटेशन, आई वॉज इन दिस ड्रामा टाइप ऑफ थिंग विच इज कॉल्ड टाइम ट्रैवल कैरेक्टर. वी हैड कैरेक्टर्स फ्रॉम द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. एंड आई वॉज अमिताभ बच्चन इन दैट.
1: ओह वाओ. ओके,
0: या, एंड आई हैड टू वेयर लाइक अ वाइट बियर्ड एंड एवरीथिंग. एंड वो बियर्ड का आइडिया भी मेरा था. एंड मैम वॉज लाइक, यू रियली वॉन्ट टू वेयर इट? एंड आई वॉज लाइक, येस, बिकॉज हमारा मतलब मोटिव इज टू हंसाना है हमें लोगों को. एंड वी वांटेड टू विन इट. सो आई एम लाइक, अगर ये लोगों को हंसाएगा, सो व्हाई नॉट?
1: या,
0: ओके, दो पीपल मेड अ लॉट ऑफ फन ऑफ मी, बट आई वॉज लाइक, इट्स
1: यू आर द डेयर डेविल, कम ऑन, इट्स ओके.
0: आई एम लाइक, इट्स ओके, इट्स ओके. एंड आई लाफ्ड एट माई सेल्फ सो मच. ओके, आई लुक्ड एट माई सेल्फ द मिरर एंड आई एम लाइक, ओह ओके, आई लुक गुड. या, एंड उसी समय मेरी तबीयत बोले तो खराब हो गई थी. मुझे बुखार हो गया था एंड लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन. आई हैड एग्जाम्स एज वेल.
1: सही.
0: Yes, and I think, and उस टाइम मैंने आई थिंक थोड़े समय के लिए आई थिंक मैंने थोड़ी सी ना होप खो दी थी. आई वॉज लाइक कि आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू विन फर्स्ट प्राइज इन एवरी थिंग एंड मे बी नॉट इवन इन वन. आई वॉज लाइक ओके, बिकॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ थिंग्स आई हैड टू मैनेज इन द सेम टाइम. मतलब बहुत सी चीज़ें हो रही थी एंड आई एम लाइक, एंड मेरी तबियत भी खराब थी, यू नो, आई कुडंट इवन मेक माई सेल्फ वर्क फॉर दैट. सो मैं चाह कर भी नहीं कर पा रही थी. दैट मोमेंट फील सो बैड वेन यू नॉट एबल टू डू समथिंग यू वॉन्ट टू डू बिकॉज ऑफ योर हेल्थ एंड एवरी थिंग. सो आई फेल्ट रियली बैड, बट एनी वेज आई स्टिल वर्क हार्ड. I'm like, जो होगा देखेंगे, भगवान की अगर कृपा रही तो हम जीत जाएंगे. एंड आई गो एंड उसी दिन पे उन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया एंड दे जस्ट गो लाइक फर्स्ट प्राइज एंड यू नो माय हाउस का नेम. आई एम लाइक, ओह वाओ. एंड दैट मोमेंट, ओके, जो थकान थी सब कुछ, इट जस्ट सब खत्म, जस्ट वैनिश्ड. आई फेल्ट सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ एंड माय टीम एज वेल, बिकॉज एवरीवन हैड समथिंग ऑन द अदर गोइंग ऑन इन देयर लाइव्स, बट
1: या,
0: यू नो, स्टिल विद दैट we just, you know, worked hard for everything that we did. And
1: acha ye bataye, itna kuch to mashallah se achieve kar liya, ye bataye particularly ke future goals ke bare mein kya planning chal rahi hai dimag mein, itna kuch experience kar rahi hain life mein to kuch socha hoga.
0: फ्यूचर गोल्स, ओके, तो मुझे भी ये बहुत से लोग ने पूछा है मुझे क्या बनना है फ्यूचर में. बट द थिंग इज, आई थिंक ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है बीइंग अ मल्टी अचीवर, इज की यू नो यू गेट काइंड ऑफ कंफ्यूज कि तुम्हें क्या करना है फ्यूचर में, बिकॉज यू नो यू हैव इंटरेस्ट इन लॉट ऑफ थिंग्स.
1: या,
0: बट येस, आई वुड लाइक टू पुट माई कम्युनिकेशन स्किल्स इन लाइक वन फैक्टर, समथिंग आई वॉन्ट टू डू. एंड आई वुड से लाइक सेकेंडली, आई वॉन्ट टू do something that includes my communication at the same time and my awareness about the, you know, surroundings. But I haven't really thought of something particular I want to do. So,
1: Abhi time hai. Achha bhai, ab hamare show ka time bilkul khatam hone ko ja raha hai. Jaldi se mujhe ye bata dein ki jo aapke paas koi message hai, aisa short sa message jo aap dena chahengi apne chote listeners ko jo aapko sun rahe hain.
0: ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो मैं एक ही बात कहना चाहूँगी कि यू नेवर लूज होप. वट एवर यू आर डूइंग, जस्ट पुट योर फुल एफर्ट इन दैट. ओके, कीप प्रेइंग. ओके, कीप बी डेडिकेटेड, यू नो, बी डिसिप्लिन्ड, बी मोटिवेटेड. एंड यू नो, डोंट स्ट्रेस योर सेल्फ आउट, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन, यू गेट टायर्ड. टेक अ ब्रेक, बट कंटिन्यू डूइंग थिंग्स एंड यू नो एवरीथिंग विल बी फाइन.

0: एस पी दे दिया कि थक गए तो आप पॉज ले लें, रेस्ट कर लें, लेकिन फिर से उठें और फिर से ट्राई करें. नेवर फॉरगेट व्हाई यू स्टार्टेड. और हमारे जूनियर जनाब का आज का टाइम यहीं पे ख़त्म होता है. इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीक फिर मुलाकात होगी एक नए शो में, एक नए अचीवर के साथ. अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और सुनते रहिएगा एफ एम 107 दिल से देसी.
1: हर बच्चा एक स्टार होता है और हर टैलेंट को एक स्टेज की जरूरत होती है, और वो स्टेज है एक प्रोग्राम जिसका नाम है जूनियर जनाब.
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी.
3: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं. इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है. ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए. याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं. और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है.

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर। बराहे करम गर्मियों के दौरान गाड़ियों में आग लगने के खतरात से बचने के लिए जरूरी सेफ्टी गाइडलाइंस का ख्याल रखना इंतहाई अहम है। आप सबके लिए हमारी दुआ है कि ये गर्मियां महफूज और एक्सीडेंट फ्री गुजरें। गाड़ी को आग के खतरात से महफूज रखने के लिए चंद अहम बातों पर जरूर अमल करें। सबसे पहले मोबाइल फोन्स या किसी भी किस्म के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गाड़ी के अंदर छोड़कर ना जाएं, क्योंकि गाड़ी में ज्यादा गर्मी हो जाने की वजह से इनमें आग लग सकती है। हमेशा अपनी गाड़ी में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें जो इमरजेंसी के वक्त फौरन इस्तेमाल हो सके। किसी भी किस्म का एक्सप्लोजिव मटेरियल या जल्दी जलने वाली चीजें जैसे परफ्यूम्स, लाइटर्स या केमिकल्स गाड़ी में रखने से परहेज करें, और वहीं रेडिएटर में कूलेंट को बाकायदगी से चेक करते रहें ताकि ओवरहीटिंग से बचा जा सके और इंजन महफूज रहे। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी सेफ्टी आपकी पहली डिफेंस होती है। याद रखें, छोटी सी एहतियात बड़ी मुसीबत से बचा सकती है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
1: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर

0: पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107 दिल से देसी

0: अस्सलामुअलैकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और बहुत इंटरेस्टिंग और जीरो वेस्ट माइंडसेट वाला एपिसोड। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे हैबिट पर जो किचन के वेस्ट को भी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि बात करेंगे कंपोस्टिंग एट होम के बारे में। चलिए एक रिलेटेबल सीन से स्टार्ट करते हैं कि भाई होता क्या है। घर में कुकिंग हो रही होती है, सब्जी बन रही है, सैलड कट हो रहा है, फ्रूट कट किए जा रहे हैं और जो पील्स, स्टेम्स, लेफ्ट ओवर वेजिटेबल पार्ट्स होते हैं वो सीधा कहाँ जाते हैं? ये गया बिन में, चले जाते हैं ना डस्टबिन में। आप सोचते हैं कि भाई ये तो बस कचरा है और डेली रूटीन में ये वेस्ट क्वाइटली एक्यूमुलेट होता रहता है, लेकिन असल में ये वेस्ट नहीं होता बल्कि एक हिडन रिसोर्स होता है। अब थोड़ा सा ना इसको रियलिटी से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, फूड वेस्ट जब लैंडफिल्स में जाता है ना, तो वो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता। देखें, ये जो है ना डीकम्पोजिशन के प्रोसेस में मीथेन गैस भी रिलीज करता है जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती है। लेकिन अगर वही ऑर्गेनिक वेस्ट जो हमने जमा किया था उसको सही तरीके से हैंडल किया जाए तो उसे वैल्यूएबल कंपोस्ट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, अब इको स्विच क्या है इस सिचुएशन में? भाई आइडिया बड़ा सिंपल है। देखिए, किचन के ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में बदलना, मतलब फ्रूट पील्स, वेजिटेबल स्क्रैप्स और फूड लेफ्ट ओवर्स को रिसाइकल करके नेचुरल फर्टिलाइजर बनाना। अब बात करते हैं कि कंपोस्टिंग होती क्या है। देखिए, कंपोस्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स ब्रेक डाउन होते हैं और एक न्यूट्रिएंट रिच सॉइल बन जाता है जो प्लांट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। यानी आपके घर का कचरा दोबारा जमीन के लिए खाना बन जाता है, फूड बन जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि होम कंपोस्टिंग से क्या फायदा होता है, आखिर मैं क्यों उसके बारे में बात कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहला फायदा है वेस्ट रिडक्शन का। घर का ऑर्गेनिक वेस्ट लैंडफिल में जाने से बच जाता है। दूसरा फायदा है नेचुरल फर्टिलाइजर। देखिए, आप अपने प्लांट्स या गार्डन्स के लिए ना केमिकल फ्री खाद बना लेते हैं। तीसरा फायदा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मीथेन एमिशंस कम होती हैं और क्लाइमेट चेंज को रिड्यूस करने में हेल्प मिलती है। चौथा फायदा है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। आप अपनी डेली लाइफ में जीरो वेस्ट माइंडसेट एडॉप्ट कर लेते हैं। अच्छा, अगर एक रिलेटेबल एग्जांपल के बारे में बात करूं तो जरा सोचिए, आपके पास बेल्कनी में छोटा सा गार्डन है। अगर आप कंपोस्ट बनाकर यूज करें तो वही वेजिटेबल पील्स जो पहले डस्टबिन में जाते थे ना, अब आपके प्लांट्स को हेल्दी बना रहे हैं। यानी किचन वेस्ट अब गार्डन का न्यूट्रिशन बन जाता है। साथियों, दोहा जैसे सिटी में भी लोग बेल्कनी गार्डन्स और इंडोर प्लांट्स का ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए कंपोस्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ भी स्लोली पॉपुलर हो रहा है, स्पेशली इको कॉन्शियस हाउसहोल्ड्स में। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जो आप घर में इजीली फॉलो कर सकते हैं, आपको वो बता देती हूँ। लेकिन टिप नंबर 1 ये है कि सेपरेट बिन यूज करें, किचन में एक अलग कंटेनर रखें ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए। टिप नंबर 2, कंपोस्टेबल आइटम्स को समझें, यानी कि फ्रूट पील्स हो गई, टी बैग्स हो गए, वेजिटेबल स्क्रैप, ये सब कुछ कंपोस्ट हो सकते हैं। टिप नंबर 3, बैलेंस मेंटेन करें, ग्रीन वेस्ट यानी वेट वेस्ट और ड्राई मटेरियल्स का प्रॉपर मिक्स इंपॉर्टेंट होता है, ये याद रखें। अच्छा भाई, चौथी अगर टिप के बारे में बात करें तो स्मॉल स्टार्ट, छोटे छोटे स्टेप्स लेना। बहुत लार्ज सेटअप की जरूरत नहीं होती इसके लिए, छोटे कंटेनर से भी स्टार्ट किया जा सकता है। और पांचवी टिप, ओडर कंट्रोल रखें, मतलब ये कि प्रॉपर कवर और वेंटिलेशन से स्मेल अवॉइड की जा सकती है। अच्छा, इसका एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सा पर्सपेक्टिव भी बताती हूँ आपको। आपको पता है, दुनिया भर में अर्बन कंपोस्टिंग को प्रमोट किया जा रहा है ताकि सिटीज का वेस्ट लोड कम हो और ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग बढ़े। कई हाउसहोल्ड्स और कम्युनिटीज अब अपना ऑर्गेनिक वेस्ट खुद प्रोसेस करती हैं। अक्सर हम ये सोचते हैं साथियों कि कचरा तो कचरा होता है, लेकिन कंपोस्टिंग हमें ये सिखाती है कि नेचर में कुछ भी ट्रूली वेस्ट नहीं होता। हर चीज का एक नया साइकिल होता है, हर चीज एक अलग तरीके से डेवलप हो सकती है। अब थोड़ा सा बिहेवियर एंगल के बारे में बात करें तो बिहेवियर चेंज एंगल के बारे में बात की जाए, जब आप कंपोस्टिंग एडॉप्ट करते हैं तो आप अपनी किचन हैबिट्स को ज्यादा कॉन्शियस बना लेते हैं। आप सिर्फ वेस्ट प्रोड्यूसर नहीं रहते बल्कि रिसोर्स क्रिएटर बन जाते हैं। तो भाई आज का इको स्विच सिंपल है, किचन के ऑर्गेनिक वेस्ट को कंपोस्ट में कन्वर्ट करें। आज का चैलेंज ये है कि भाई आज अपने किचन में एक छोटा सा कंपोस्ट बिन सेटअप करने की कोशिश करें और ऑर्गेनिक वेस्ट को सेपरेट करना स्टार्ट करें। और अगर आप ऑलरेडी कंपोस्टिंग कर रहे हैं तो भाई किसी और को भी इस सस्टेनेबल हैबिट के लिए इंस्पायर करें ना। साथियों जमीन हमें सब कुछ देती है और कंपोस्टिंग एक तरीका है उसे कुछ वापस देने का। जब हम अपना ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्ट में डालते हैं ना तो हम सिर्फ कचरा मैनेज नहीं कर रहे होते बल्कि जमीन को दोबारा जिंदगी दे रहे होते हैं। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se Desi.

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलामु अलैकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है उस्ताद के एहतराम की अहमियत पर। टीचर सिर्फ इल्म नहीं देता बल्कि जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाता है। इस्लाम में टीचर का दर्जा बहुत बुलंद है। जिन लोगों ने हमें सिखाया उनका एहतराम करना फर्ज है। उनकी मेहनत और उनकी रहनुमाई हमारी कामयाबी की बुनियाद होती है। आज की दुनिया में हम अक्सर टीचर्स की वैल्यू को भूल जाते हैं, लेकिन असल में वो हमारी जिंदगी के हीरोज होते हैं। आज का अमल ये है कि अपने किसी टीचर को याद करें, उनके लिए दुआ करें, उनको कॉल करें और उनका शुक्रिया अदा करें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूँ आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: आप सुन रहे हैं FM 107,
0: दिल से देसी। One step to 2030.
3: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
4: One Step to 2030.
3: आज मैं बात करूंगी टूरिज्म डेवलपमेंट और कल्चरल प्रमोशन की। देखिए, टूरिज्म डेवलपमेंट विजन 2030 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करता है। टूरिज्म का मतलब सिर्फ विजिटर्स को अट्रैक्ट करना नहीं है दोस्तों, बल्कि ये एक ऐसा एक्सपीरियंस क्रिएट करना है जो कल्चर, हेरिटेज और मॉडर्न लाइफस्टाइल का

0: शोकेस हो। जब टूरिज्म स्ट्रॉन्ग होता है तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह से जॉब्स क्रिएट होती हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज इसका हिस्सा होते हैं। टूरिज्म इनकम जनरेट करता है और स्मॉल बिजनेसेस को भी सपोर्ट करता है। टूरिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ का एक स्ट्रॉन्ग ड्राइवर है और ग्लोबल लेवल पर भी इसे डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये जॉब्स क्रिएट करता है, इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करता है और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करता है। कतर ने रीसेंट ईयर्स में अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया है। आप देखते हैं यहाँ कितने इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, कल्चरल इवेंट्स हुए, मेगा इवेंट्स हुए, इन सबके चलते कहीं ना कहीं टूरिज्म इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही है। इससे कंट्री की ग्लोबल इमेज इम्प्रूव हुई है और विजिटर्स का इंटरेस्ट भी तो बढ़ रहा है। दिया, टूरिज्म विजन 2030 के अंदर देखा जाए तो डाइवर्सिफाई इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर भी है। टूरिज्म सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट नहीं करता बल्कि कल्चर और आइडेंटिटी को भी प्रमोट करता है। कतर का नेशनल विजन 2030 जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पर फोकस करता है, जोर देता है। गवर्नमेंट इस डायरेक्शन में लगातार काम कर रही है, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। जैसे मिसाल के तौर पे पानी और बिजली को बचाना, वेस्ट कम करना, ग्रीन बिल्डिंग्स और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना कहीं ना कहीं सस्टेनेबिलिटी को सपोर्ट करता है। जी हाँ, सोलर एनर्जी इनिशिएटिव्स और वाटर कंजर्वेशन कैंपेन्स इसका एक बड़ा हिस्सा है। ये विजन 2030 का एक स्ट्रॉन्ग टूल है जो कतर को ग्लोबल डेस्टिनेशन के तौर पर एस्टैब्लिश कर रहा है। चलिए, हमारी दुआएं इस मुल्क के साथ हैं और हम ये दुआ करते हैं कि कतर इसी तरह से अपनी ग्लोबल पोजीशन को मजीद मजबूत बनाता रहे। फिलहाल इस दुआ के साथ मुझे यानी नाजिया को दीजिए इजाजत। आपकी और मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते और सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil Se Desi.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: हेलो,
5: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
4: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
6: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामिन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में आसर की अजान का वक्त हो गया है।
7: अल्लाहु अकबर।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें। हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: टेक इनोवेशन शो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो मेरी तरह हैं। गैजेट को देखती हमें कुछ हो जाता है। मैं बता रहा हूं, ये ऐसा खर्चा है कि कंपनीज ने डिसाइड किया है कि हम आप पे बिल्कुल रहम नहीं खाएंगे। आगे आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे गैजेट्स आने वाले हैं ना भाई साहब, कुछ तो मैं आपको बता दूंगा जो आ चुके हैं और आप बोलेंगे भाई ये तो खर्चा करना पड़ेगा। खैर अस्सलाम वालेकुम, मैं दोहा वाला कबीर FM 107 पे, वेलकम टू टेक इनोवेशन, वो दुनिया जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, जहां पर गेमिंग की बात होती है, जहां पर गैजेट्स आते हैं, जहां पर एप्स आती हैं। पिछले हफ्ते लोगों ने बोला भाई एंड्रॉयड को ही सब देते रहोगे, हम iOS वाले को तो भला करो, कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो हमारा फॉरन बड़ा सिंपल है, पहले एप्स आएंगी, देन गैजेट्स, देन इन टेक न्यूज। तो सबसे पहले शुरू करेंगे ऐप से, एप्स दिस वीक,
1: ट्रेंडिंग एप्स। ट्रेंडिंग एप्स
0: देखो, ये जितनी भी ऐप्स हैं ये बिल्कुल भी रैंक्ड नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1, 2, 3 बता रहा हूँ तो ऐप नंबर 1, तो ओहो इससे बढ़िया तो कोई ऐप ही नहीं है। नहीं, रैंक्ड नहीं है, बट मैं इन ऑर्डर बता रहा हूँ विदाउट रैंकिंग। तो नंबर 1 जो ऐप है ऑन द लिस्ट टुडे इज अ वेरी सिंपल ऐप, और ये एप्पल की ही है, ये iOS ही दे रहा है लेकिन लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। ये ऐप जो है इसका नाम है फाइनल कट कैमरा। एक है फाइनल कट प्रो, एज वी ऑल नो, एक है फाइनल कट कैमरा। अब अगर आपने ये ऐप कभी डाउनलोड करी है इससे पहले, मेरे बताने से पहले, तो आप शायद जानते होंगे कुछ ना कुछ इसमें होता रहता है, थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आती है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो भाई साहब एक नंबर ऐप है। आप अपने वीडियोस पे पूरा का पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, एडिट करना बेहद आसान है, प्रोफेशनली यू कैन एडिट योर वीडियोस, एंड सबसे बेस्ट पार्ट इसमें जब आप फाइल सेव करते हैं तो वो ऐप के अंदर सेव होती है, ना कि आपकी फोन की गैलरी में। That makes a lot of sense because जब कोई ऐप चीजें सेव करती है और आपकी गैलरी को भर देती है तो आपकी गैलरी में आप डिलीट कर करके थक जाएंगे या आप भूल जाएंगे, फोन आपको बोलेगा स्टोरेज फुल है मालिक, आगे नहीं चल सकता मैं। बट इन दिस केस ऑफकोर्स आपका फोन हो सकता है कि स्टोरेज तब भी भरे क्योंकि ऐप भी हैवी होती है, बट देन अगेन एवरीथिंग इज ईजी टू डिलीट, ऑमिट, एडिट इन साइड द ऐप इटसेल्फ। तो ये जो ऐप है ये आपको पूरा कंट्रोल देती है आपकी फोटोग्राफी के लिए और स्पेसिफिकली आपकी वीडियोस के लिए, एडिट करने के लिए, शूट करने के लिए। एक इसका ड्रॉबैक है, मैक्रो शॉट्स नहीं ले पाता है, विच इज ओके। अगर आपको मैक्रो शॉट लेना तो आप एनीवे अपने फोन के जो जनरल ऐप है उससे ले सकते हैं, मगर आपको थोड़ा सा इन्हांस करना है iOS, थोड़ा बढ़ाना है, घटाना है, शेडोज पे आपको बहुत टेंशन होती है, इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है, दिस इज समथिंग टू डाउनलोड टू एंड ऑल्सो टू लर्न। इस ऐप के जरिए आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो नंबर 1 ऑन द लिस्ट इज फाइनल कट कैमरा, अगेन इट इज बाय एप्पल ऑन द iOS। हम बढ़ते हैं आगे। अगली ऐप अगेन फ्रॉम iOS और ये मेरी फेवरेट ऐप है बिकॉज आई यूज इट ऑन डेली बेसिस। इसका नाम है डैज कैमरा, DAZCAMERA, डैज कैमरा। अब ये क्या करता है, ये आपको बहुत बेहतरीन फिल्टर्स देता है। देखो आप कहेंगे फिल्टर्स का जमाना भाई सब चला गया, आप कौन यूज करता है फिल्टर, आई कैन यूज एन AI, सिंपल। बट देन आपको AI के लिए प्रॉम्प्ट श्रॉम्प्ट देते रहो, उसमें AI के लिए आप भरेंगे, मगर जो एक सीमिंगली एक इजी नॉस्टैल्जिक आपको जो पिक मिलेगी, एडिट होगी तो सामने आएगी, वो इस ऐप से बहुत बढ़िया आती है। आई हैव टेस्टेड टू मोर AIs अगेंस्ट दिस ऐप और सच बता रहा हूँ ये AI एक्चुअली में इसके आगे थोड़े फीके पड़ जाते हैं बिकॉज दिस डज अ ग्रेट जॉब विदाउट चेंजिंग और

0: नेक्स्ट वन। अब नंबर थ्री ऑन द लिस्ट, ये बहुत बहुत काम आने वाली ऐप है मेरे फोन में जमानों से और अपडेट हो चुकी है, बहुत ज्यादा अपडेट हुई है, बहुत कमाल की। इसका नाम है डॉक्यूमेंट्स। iOS यूजर्स इसे जरूर डाउनलोड करें, जरूर। मैं ये कह रहा हूँ ये हर किसी के काम आने वाली है, मतलब इट गोज विदाउट सेइंग, ये ऐप आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपके फोन में कभी डिलीट नहीं करेंगे। मैं उसकी वजह देता हूँ आपको। सारी की सारी मेजर ड्राइव्स, चाहे आपके फोटोज आपके डॉक्यूमेंट्स गूगल ड्राइव पे हों, आई क्लाउड पे हों, किधर भी हों, आई क्लाउड तो आपके फोन के अंदर ही है, कोई सी भी ड्राइव हो, है ना, सारे के सारे पोर्टल, सारी की सारी ऐप एक ही जगह पर इस ऐप के अंदर। यू कैन एक्सेस ऑल योर फोटोज, ऑल योर वीडियोज वन ड्राइव पे, गूगल ड्राइव पे, कहीं पर भी हो। और ये जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो यू विल फील कि हाँ मैं काफी ऐप जगल कर रहा था, क्योंकि क्या होता है जब आपको गूगल ड्राइव से फोटोज चेक करने होते हैं, निकालने होते हैं, डाउनलोड करने होते हैं, डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, यू गो एंड डाउनलोड गूगल ड्राइव सेपरेटली एंड देन यू चेक। इसमें सब कुछ है, सब कुछ है। इंटरेस्ट भी, ये बहुत काम की ऐप है। ये आपने एक मरतबा डाउनलोड कर ली, आई डोंट थिंक सो आप इसे डिलीट करने वाले, आई रियली डोंट थिंक सो। सो डॉक्यूमेंट्स इसका नाम है, DOCUMENTS। iOS यूजर्स के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत कमाल की ऐप है, एंड ये भाई साहब आपके फोन के साथ चिपकी रहेगी, ठीक है, तो डाउनलोड कर लीजिए। ये तो हो गई ऐप्स, अब बढ़ते हैं जरा गैजेट्स की तरफ। इन गैजेट्स दिस वीक,
1: Gadgets.
0: All right, so gadget number one, मुझे बहुत मजा आया भाई ये गैजेट देख के, मैं सही बता रहा हूँ। सिंपल सटीक काम की चीज, आप इसे गैजेट कह रहे हैं, फर्नीचर के लिए किसी में फर्नीचर मान लीजिए, आपकी मर्जी है, बट लेट मी टेल यू, इसका नाम है डॉक सेफ चेयर। डॉक सेफ चेयर, ये एक चेयर है। आप बोलेंगे गैजेट थोड़ी हुआ है तो फर्नीचर बता रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये चेयर है, इसके अंदर स्टोरेज है, ये फायर और वाटर रेजिस्टेंस है, और इसको इजीली इधर से उधर मूव किया जा सकता है। इट इज अमेजिंग। मैं मुझे कभी नहीं लगा था, अगर दो तीन साल पहले भी आप पूछते कि कोई चेयर की तारीफ करेगा, मैं इतनी तारीफ तो नहीं करता, वो भी टैग शो के अंदर, बट डॉक सेफ चेयर सच में बहुत बहुत सही है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बड़ी कमाल की है, एंड उसके ओपन करने का तरीका भी अच्छा, और ऊपर से फायर और वाटर रेजिस्टेंस है। यू कैन मूव इट एनीवेयर यू वांट, टेक इट ऑन अ बीच, नो प्रॉब्लम। और इसके साथ आप घर में रखें, लिविंग रूम में रखें, एंड इवन आप

आप देखिएगा अमेजोन पे जाके अवेलेबल है एंड ऑफर्स में मिल जाएगी आपको, बहुत सही है. ओके मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन जो आपके सीधा किचन में जगह बनाएगा. अगली जो ऐप सॉरी गैजेट है, मैं ऐप्स पे टिका हूँ, गैजेट की तरफ आ चुके हैं हम. अगला गैजेट है, इसका नाम है फेपो फूड वार्मिंग मैट, FEPPO फूड वार्मिंग मैट. सच में मैट ही है, आपको लगेगा कि छोटा सा दस्तरखान है, मगर ये छोटा और कमाल का दस्तरखान जो है आपके खाने को गर्म रखेगा, घंटों तक गर्म रखेगा. ठंडा खाना है तो उसे ठंडा रखेगा, खराब नहीं होने देगा. इसके अंदर 6 एडजस्टेबल डायल्स के जरिए टेम्परेचर्स हैं, आप उन्हें सेट कर सकते हैं और आप इस पर खाना रख दीजिए भाई, ताज़ा गर्म रहेगा, घंटों तक गर्म रहेगा. ये ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि घरों में होनी चाहिए. ऑफकोर्स बच्चों से थोड़ा दूर रखिएगा इन्हें, बट बहुत बहुत कमाल की चीज़ है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो खाना रखा रहता है और वो नहीं खाते. मुझे डांट पड़ चुकी है इसलिए मेरी टोन नीचे हो गई. ये घर में रखने वाली चीज है भाई, इसको लाके रखिए, आपके काम आएगी सीरियसली. सो फेपो फूड वार्मिंग मैट जरा से दिखने वाला है, इसमें 6 एडजस्टेबल टेम्परेचर जैसे मैंने कहा. इवन आपका खाना ठंडा भी है तो उसको ठंडा रखिएगा, टेम्परेचर सेट कर दीजिए, बिल्कुल माइनस में ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं. खाना गर्म रखना है गर्म रखो. कुछ लोगों को ये होता है ना, कह देते हैं बस मैं आया आया आया और फिर आने में घंटा लग जाता है. सो इस पे खाना रख दिया, छुट्टी हो गई आपकी, वापस इसे हीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये आप घर में आराम से रख सकते हैं. और जैसे मैंने कहा बच्चों से दूर रखिएगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे अगर हाथ लगा देंगे तो ओ हाथ जल गया, ऐसा भी कुछ नहीं है. बहुत बहुत अच्छे कंट्रोल्स हैं इसके एंड ये ऐसा गैजेट है जो एक बार आप घर ले आए, आई एम प्रीटी श्योर यू विल बी यूजिंग इट एवरी नाउ एंड देन. और मेहमान आते हैं उन्हें भी तो कूल लगता है ना, अरे भाई क्या चीज है उनके घर में. तो अगर शोबाजी के लिए भी आप लेना चाहें तो गो फॉर इट, फेपो फूड वार्मिंग मैट. ओके नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. अगला बहुत ही छोटा, बहुत ही प्यारा, बहुत ही क्यूट गैजेट है, इसका नाम है YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर. YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर. अब ये एक छोटी सी, हम हिंदी में कहते हैं ना डबिया है डबिया, इस पे इसके अराउंड पूरा का पूरा एक वो लगा हुआ है साफ करने के लिए, और अंदर इसके मिस्ट क्लीनर, आपने स्प्रे किया और स्प्रे करके इसी से साफ कर लिया. बहुत बहुत इजी टू यूज एंड आपको एक्स्ट्रा कोई भी कपड़ा खरीदने की कोई जरूरत नहीं है स्पेसिफिकली, अरे मेरी स्क्रीन खराब हो जाएगी, नहीं जी इससे आप कर लीजिए. ये चीज को मैं हल्के में लेता था, बट आई हैव रियलाइज्ड कि भाई फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन, आजकल आधी चीजें स्क्रीन पर हैं एंड यू वांट टू क्लीन देम अप. इट्स जस्ट दैट आपको लगता है अरे कौन स्प्रे लाए, ये लाए वो लाए, ये आप अपने बैग में रखिए, आपको कहीं भी लगे फोन गंदा हो गया, कुछ हो गया, लैपटॉप की स्क्रीन साफ करनी है, ये बेस्ट चीज है, मैं आपको बता रहा हूँ. दिस हैज टू बी इन योर बैग ऑल द टाइम. और जरा यार बहुत जरा सा स्प्रे है और स्प्रे से ही सबको साफ हो जा रहा है, ये बहुत काम की चीज है. आई एम गोइंग टू बाई दिस फॉर श्योर एंड आई हाईली हाईली रिकमेंड कि ये आप जरूर रखें अगर आपके पास एन नंबर ऑफ गैजेट्स हैं जिनपे स्क्रीन हैं. तो YTT टच स्क्रीन मिस्ट क्लीनर बजट फ्रेंडली क्लीनर है और बहुत अच्छे से साफ करता है. ओके बड़े हम खबरों की तरफ, सो आइए इन टेक न्यूज की तरफ. देखो खबरों में सबसे पहले गूगल छाया हुआ है. गूगल ने नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉप कर दिया था, उन्होंने बहुत सारी बातें करी थी, उसमें बहुत सारे अर्ली एड्स दिए थे, एक टीजर दिया था, उन्होंने कहा था कि नाउ स्क्रीन रिएक्शंस विद जेमिनी ओमनी पॉड फीचर्स, ये अगली अपडेट का हिस्सा होगा. तो ये लास्ट पिक्सल ड्रॉप जो उन्होंने किया था वो मार्च की 2026 में किया था, मतलब इसी साल में किया था. और अब गूगल जो है वो आगे बढ़ रहा है, दे आर मूविंग ऑन विद अदर स्टफ इन देयर इकोसिस्टम. सो इसमें म्यूजिक जनरेशन एंड स्क्रीन रिएक्शंस, ये उनका नेक्स्ट पिक्सल ड्रॉप अपडेट होने वाला है, विच इज ह्यूज. आई बिलीव गूगल पिक्सल के जो फोन हैं वो धीरे धीरे धीरे धीरे सैमसंग और एप्पल की लड़ाई के बीच में आगे आके कहीं जीत ही ना जाए रेस, यू नो स्लो एंड स्टडी विन द रेस. आई वुड रियली वॉन्ट समबडी एल्स टू टेक द थ्रोन और प्रोबेबली बी इन द रेस, एंड गूगल पिक्सल बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नजर आ रहा है. ये जो वीडियोज अभी आ चुके थे बहुत सारी वेबसाइट्स पे आप देख सकते हैं एंड यूट्यूब पर
स्पेशली अवेलेबल हैं. एंड गूगल हैज बीन अपडेटेड, हैज बीइंग अपडेट, बीइंग अपडेटेड, अपडेटिंग क्या हो गया मेरी इंग्लिश को, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन द पास्ट टू और थ्री इयर्स. और उन्होंने बहुत अच्छे अपडेट्स दिए हैं अपने फोन्स के साथ स्पेसिफिकली जो गूगल पिक्सल्स आते रहे. आई एग्री उनकी प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं, बट देन उस

0: प्राइस में जो आपको चीज मिल रही है वो बड़ी कमाल की है. एंड आई थिंक एक एक बग एक फीचर जो है फिक्स करें जहाँ पे स्क्रीन अपने आप को लॉक कर लेती है एंड देन यू रिक्वायर कि उसको आप पीसी से कनेक्ट करें और एक सॉफ्टवेयर रन करें, वो परेशानी दूर हो जाए. बाकी गूगल पिक्सल बहुत सही फोन से और अपडेट्स जो है बड़ी कमाल की, सो यू कैन एडिट योर वीडियोस इन रियल टाइम एज यू शूट. उसके साथ साथ आप बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख सकते हैं, उसका AI बहुत स्ट्रॉन्ग है. फिर अभी आने वाले वक्त में दे आर ड्रॉपिंग म्यूजिक जनरेशन, सो आई थिंक इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज एंड गूगल पिक्सल बहुत कमाल करने वाला है. ऑलराइट, नाउ द गेम गेमिंग न्यूज, क्योंकि अगली और लास्ट चीज पे ध्यान देंगे. पेपर के बाद आई आपको ये पेपर आपके लिए पलट रहा हूँ मैं.
1: गेम एंड एंटरटेनमेंट,
0: अगली खबर बड़ी मेन है. अगली खबर जो है वो गेमिंग की दुनिया से आती है, सीधा उस गेम से जुड़ी हुई जो कि तहलका मचा सकता है. इस साल सबको इंतजार है नवंबर में GTA 6 आए, एवरीबॉडी नोज दैट. और नवंबर में कोई भी गेमिंग कम्युनिटी, कोई भी गेमिंग डेवलपर राजी नहीं है रिलीज करने के लिए, सबको डर लग रहा है. लेकिन एक गेम है जो तहलका मचा सकता है, वो है फैंटम ब्लेड जीरो. जब इसका टीजर ट्रेलर आया था हमें लगा भाई ये क्या कर रहे हैं. उन्होंने असली मोकैप, जो मोकैप आर्टिस्ट हैं जो रिकॉर्ड करते हैं पूरी सीन्स को, उसके लिए असली मार्शल आर्ट आर्टिस्ट और कंगफू फैंस को लिया है जो कंगफू जानते हैं. देन दे हैव डेवलप्ड द गेम्स एंड दे आर सेइंग कि जो भी हमने आपको दिखाया ये तो साइड कॉन्टेंट है. समझ रहे फ्लैक्स आप, Phantom Blade Zero can be the next contender जो GTA 6 से पंगा ले सके. बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, ठीक है, ये अपने दिमाग में रखिएगा. Let this sink in, especially gamers. On that note, social media handles FM107Qatar, FM107Qatar. और शो के बिल्कुल इख्तिताम पहुंच चुका हूँ, तो आपसे बहुत प्यार आप भी भेजिएगा मुझे कोई भी ऐप गैजेट आपको नजर आए और मुझे दीजिए इजाजत. This is Doha वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. मास्टरा
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन और आज हम बात करेंगे मोहम्मद सुलेमान के बारे में। मोहम्मद सुलेमान कौन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को बता दूं कि कतर की खेल की तारीख के सबसे अजीम एथलीट्स में से एक हैं और कतरी एथलेटिक्स के असल पायनियर अगर कोई है तो मोहम्मद सुलेमान है। उनकी पैदाइश 23 सितंबर 1969 को हुई और बता दूं कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों पायनियर है कतरी एथलेटिक्स में। उन्होंने 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में कतर के लिए पहला ओलंपिक मेडल जीतकर तारीख कायम। सो दैट्स द रीजन मोहम्मद सुलेमान इज सो इम्पोर्टेंट इन कतरी स्पोर्ट्स हिस्ट्री। मेंस 1500 मीटर दौड़ में मोहम्मद सुलेमान ने शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और कतर को पहली मर्तबा ओलंपिक मेडल टेबल पर जगह दिलाई। तो दैट वाज ओकेजन व्हेन कतर पहली मर्तबा ओलंपिक प्लेटफॉर्म में पहला अगर कोई मेडल लेके आया होगा तो यही बंदा था, इनका नाम है मोहम्मद सुलेमान। ओलंपिक कामयाबी से पहले भी सुलेमान एशिया के बेहतरीन मिडिल डिस्टेंस रनर्स में शुमार होते थे। उन्होंने एशियन गेम्स और एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप समेत कई इलाकाई और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के मुकाबलों में मेडल जीते। वो अपनी बेहतरीन स्ट्रेटजी, ज़बरदस्त स्टैमिना और दौड़ के आखिरी लम्हों में तेज़ रफ्तारी के लिए मशहूर थे। 1990 की दहाई में उन्होंने दुनिया के बेहतरीन रनर्स को सख्त मुकाबला दिया। मोहम्मद सुलेमान ने कई ओलंपिक गेम्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी कतर की नुमाइंदगी की जिससे गल्फ रीजन में एथलेटिक्स को फरोग मिला। उनकी कामयाबियों ने कतरी नौजवान एथलीट्स को इंस्पायर किया और साबित किया कि कतर दुनिया के बेहतरीन खेल मुकाबलों में मुकाबला कर सकता है। दोस्तों आज मोहम्मद सुलेमान को सिर्फ कतर का पहला ओलंपिक मेडल विनर नहीं बल्कि मुल्क के खेलों की तरक्की की बुनियाद रखने वाले हीरो के तौर पर भी याद किया जाता है। उनकी विरासत आज भी कतर के लिए फख्र का बायस है और नए एथलीट्स को कामयाबी के लिए मोटिवेट करती है। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी।
2: दोस्तों, गाड़ी की रूफटॉप पर बैठना या विंडो से बाहर झांकना सिर्फ एक ट्रैफिक वायलेशन नहीं, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सेफ्टी रिस्क भी है। जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे रवैयों से ना सिर्फ आपकी अपनी जान खतरे में होती है, बल्कि दूसरे लोग भी नुकसान उठाते हैं। ऐसे अनसेफ और इलीगल एक्शंस का सामना करते हुए हम ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं, बल्कि दूसरों को भी चोटों का शिकार बना सकते हैं। ट्रैफिक लॉज का मकसद सिर्फ कानून पर अमल करना नहीं, बल्कि हमारी और हमारे आसपास के लोगों की सेफ्टी को इंश्योर करना है। गाड़ी के अंदर रहकर सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना और विंडो के अंदर रहना जरूरी है। ये सब प्रिकॉशंस न सिर्फ हमारे लिए, बल्कि हमारे बच्चों और दूसरे सफर करते लोगों के लिए भी जरूरी हैं। ट्रैफिक वायलेशंस का अंजाम सिर्फ फाइंस या लीगल एक्शंस तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि इससे सीरियस इंजरीज और एक्सीडेंट्स का खतरा भी होता है। ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 83 के तहत ऐसे रवैयों को कानून के तहत सजा मिलती है, जो हमारे लिए एक जरूरी वार्निंग है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को सही रास्ते पर चलने की तालीम दें और उन्हें सफाई और हिफाजत के तरीकों का एहसास दिलाएं। आइए हम सब मिलकर ट्रैफिक रूल्स को अपनाकर ना सिर्फ अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करें, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक बेहतर और सेफर एनवायरनमेंट क्रिएट करें। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है।

0: दिया गया है, तो फिर क्या ये आपका लेना सही है या नहीं?
1: जी जी बस
0: जी, यकीनन इंशाल्लाह इस ताल्लुक से जवाब देंगे हमारे मेहमान शेख मूसा साहब। आप प्रोग्राम सुनते रहिए, जज़ाकुमुल्लाह। कोई और सवाल है भाई आपका? यह फ़ोन इनकी मुनक़ते हो गई है। कॉल यकीनन एक और कॉल आ गई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।
2: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह।
0: जी भाई आपका नाम?
2: मोहम्मद उस्मान।
0: जी उस्मान भाई, किस ताल्लुक से आप सवाल करना चाहेंगे?
2: शेख सैफुर्रहमान साहब कह रहे हैं
0: भाई। उन शेख सैफुर्रहमान साहब इदारे ने ये जिम्मेदारी अभी मुझे सौंपी है, अभी वो कहाँ हैं इसका इल्म तो मुझे नहीं है।
2: जी
0: कोई सवाल आपको पूछना है भाई?
2: जी
0: सवाल पूछना है।
2: जी पूछना है।
0: जी फरमाइए।
2: जी जैसे हम लोग नमाज पढ़ते हैं ना।
0: जी
2: नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम लोग दुरूद वगैरह या आयतुल कुर्सी या अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ ये हम पढ़ के, जैसे मेरा वक्त बहुत गया उसको मैं मतलब चुप कर सकता हूँ?
0: जी दुआ वगैरह पढ़ते हैं तो फिर क्या आप कर सकते हैं?
2: जी मतलब उसको मैं बख्श देता हूँ ना कि ये मेरा वालिद साहब को बख्श दे।
0: अच्छा यानी आप इसाले सवाब के ताल्लुक से पूछते हैं कि अगर आपने कोई इबादत की नमाज के बाद यानी दुरूद पढ़ा या अपने आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी, क्या आप वो अपने वालदैन वगैरह को सवाब उसका दे सकते हैं या नहीं?
2: जी
0: इस तरह ज़रूर इंशाल्लाह इसका जवाब देंगे आपको हमारे मेहमान शेख मूसा साहब। अगर कोई दूसरा सवाल है तो भाई पूछिए।
2: दूसरा सवाल ये है, जैसा पहला हम लोगों ने सुना था
0: जी
2: जो कोई आदमी परदेश में चले जाता है
0: जी,
2: तो उसका वो 4 महीने के बाद वो लाजिम वापस लौट के आ सकता है, शादीशुदा आदमी।
0: यानी
2: तो हम लोग अभी जी अभी तो हम लोग एक साल डेढ़ डेढ़ साल गुजारता है मजबूरी की वजह से, इसकी वजह से तो हम लोगों का गुना मिलता है या नहीं?
0: यानी परदेश में अगर कोई चला जाता है तो 4 महीने में उसको वापस आना होता है?
2: जैसे मतलब हम सुना था पहला हदीस शरीफ में
0: जी,
2: उसका इजाजत नहीं है 4 महीने से पहला, 6-4 महीने के बाद जी, तो वो परदेश में जो गुजारता है ना
0: जी
2: शादीशुदा आदमी
0: जी,
2: यही सवाल पूछता है। अभी तो हम लोग दो तीन ढाई ढाई साल गुजारता है, एक साल गुजारता है, तो क्या हम उसमें हमको गुना मिलता है?
0: अच्छा ये हजरत उमर का कॉल है मेरे ख्याल से, हदीस नहीं है। इस ताल्लुक से इंशाल्लाह ज़रूर इस ताल्लुक से भी हमारे मोहतरम शेख मूसा साहब गुफ्तगू फरमाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकुमुल्लाह। इंशाल्लाह शेख साहब सलाम करें।
2: वालेकुम अस्सलाम।
0: तो सामीन सवालात का सिलसिला भी जारी है, एक और कॉल ले सकते हैं, यकीनन ले सकते हैं। कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।
3: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह वबरकातुह। अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है।
3: खुशामदीद आपको इस प्रोग्राम में।
0: बिल्कुल खुशामदीद, आपका भी खैर मकदम करते हैं, जज़ाकुमुल्लाह बारकल्लाहु फीकुम।
3: मेरा सवाल था,
0: आपका नाम क्या है भाई, नाम अगर आप बता दें।
3: मेरा नाम अहमद सईद है।
0: अहमद सईद
3: जी मेरा सवाल मुहर्रमुल हराम के 9 और 10 के रोजों से
0: जी
3: तो इसमें हो सकता है 9 या 10 या अगर 9 का रोजा जो छूट गया
0: जी
3: तो उसके बजाय 10 और 11 भी रह सकते हैं
0: जी
3: तो इसके बारे में थोड़ा सा तफसील बताइएगा।
0: अच्छा,
3: और सवाब में या अजर में कुछ पर आता है क्या?
0: अच्छा, यानी अगर कोई शख्स 9 तारीख का रोजा नहीं रख सका, उसने 10 और 11 का रख लिया, तो क्या 10 और 11 का रोजा रखने वाले के सवाब में कमी आएगी उस शख्स के बनिस्बत जो 9 और 10 का रोजा रख रहा है?
3: जी बिल्कुल,
0: ये सवाल है। जी इंशाल्लाह। दूसरा सवाल है भाई
3: के बारे में, और दूसरा मतलब इसके ये रोजों की फजीलत क्या है इसके बता दीजिए।
0: अच्छा,
3: हदीस की रोशनी में
0: इंशाल्लाह जरूर इन रोजों की फजीलत के ताल्लुक से यकीनन गुफ्तगु फरमाएंगे हम हमारे शेख मूसा साहब। आप प्रोग्राम सुनिए, इंशाल्लाह इसके जवाब अभी हमारे शेख मूसा साहब देंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
3: वालेकुम।

0: तो कहा जाता कि भाई दूध ये गाय बहुत उम्दा है, अगर दूध तो वो कम दे रही है तो हम कहते हैं कि भाई वो अच्छी नहीं है। हम इसी पर ये कहते हैं भाई इंसान की तख्लीक का मकसद इबादत है, अब्दियत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियबुदून। लेकिन इस ताल्लुक से हम इंशाअल्लाह अगले हफ्ते बात करेंगे, इसलिए कि सवालात के जवाब भी लेने हैं। शेख मूसा साहब दामत बरकातुहुम, भाई रज़ुद्दीन ने सवाल किया है कि आशूरा के रोज़े के ताल्लुक से कि अगर कोई शख्स 9वीं और 11वीं तारीख का रोज़ा नहीं रखता, वो सिर्फ़ 10वीं का रखता है, और आपने जो फरमाया था कि ये तशब्बुह बिल यहूद है, इस वजह से 9वीं का रखो, फिर आपका विसाल हो गया, इस ज़माने में वो रोज़ा नहीं रखते, तो क्या इस वक्त अगर कोई शख्स उनको छोड़ रहा है और ये कहे कि भाई इस वक्त तशब्बुह बिल यहूद लाजिम नहीं आ रहा है, तो उसका ये करना कैसा है?
1: शेख मोहतरम आप इजाज़त देंगे तो ज़रा मज़ीद तफसील से इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे एक और सामे करीम ने भी इसके बारे में पूछा था। शेख मोहतरम अर्ज़ यही है सामे करीम से और सामे इन कराम सब से कि ये सुन्नत बाकिया है हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ा रखे हैं और हमें भी इसका हुक्म दिया है और इसी पर फिर वफात हो गए हैं। इसमें शरीयत में कोई ये रखने और कहने के बाद कोई तब्दीली नहीं आई, मतलब हुक्म बाकी है, मनसूख नहीं है। और अजर और सवाब इसका बहुत ज़्यादा है। शेख मोहतरम अल्लाह तबारक व तआला गुज़श्ता साल की जो गुनाह हैं उसको इसकी बरकत से माफ़ फरमाते हैं, जैसे हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इजहारी उम्मीद की है। और शेख इसके तीन दर्जात हैं। सबसे बेहतरीन रोज़ा जिस पर अल्लाह तबारक व तआला सबसे ज़्यादा अजर अता फरमाएगा यही है कि 9वां और फिर आशूरा और फिर उसके बाद वाला दिन जो है तीनों में रोज़ा रखा जाए। और अगर ये ना हो या ये कहेंगे कि दूसरे दर्जे में फिर दो दिनों का रोज़ा है जिस मैं फिर बेहतर यह है कि 9वां और 10वां रखा जाए, क्योंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा रहा अगले साल तक तो मैं फिर 9वां में 9वां दिन जो है उसमें भी रोज़ा रखूँगा। और इसमें शक नहीं है शेख मोहतरम के हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए बेहतरीन इबादत और अकमल और अफजल को इख्तियार फरमाते थे। लेकिन अगर आदमी ने आशूरा और उसके बाद वाले दिन में भी रोज़ा रखा तब भी इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है, बल्कि फजीलत भी हासिल है। और वो जिस हदफ से हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और दिन का रोज़ा रखने का हुक्म दिया है वो भी मुतहक्किक होगा इसमें इंशाअल्लाह, क्योंकि एक हदीस में शेख मोहतरम औ यौमन बादहू भी आया है, औ यौमन बादहू भी आया है। और शेख अगर ये भी मुमकिन ना हो किसी वजह से, जहाँ शेख जैसे आप ने तवज्जो फरमाया गया यहाँ लोग ज़्यादातर सख्त कामें करते हैं गर्मी वगैरह और काम भी भारी होती है तो और परदेश भी है शेख, तो तन्हा आशूरा का भी अगर रोज़ा रखा जाए शेख तो यहाँ के उलमा किराम जो है अलबत्ता हनफी मसलक में इस बारे में कुछ और हमारे अहनाफ उलमा ने फरमाया सख्ती ज़रा ज़्यादा करते हैं, लेकिन ये उलमा किराम इसके कायल है कि इसमें भी हर्ज नहीं है और वो अजर जिसका हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा दिया और इजहार उम्मीद की है उसके बारे में उसके लिए हासिल हो गया इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो इंशाअल्लाह एक दिन का भी रोज़ा रखना इन उलमा का जो कौल है इसके मुताबिक इंशाअल्लाह सही है और अजर उस पर भी अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाएंगे, वो अजर जिसके बारे में हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्मीद है अल्लाह से कि एक साल गुज़श्ता साल के जो गुनाह हैं वो माफ़ फरमाएंगे अल्लाह तबारक व तआला रोज़े की बरकत
0: इंशाअल्लाह। शेख साहब इसी ताल्लुक से इसी मज़मून के ताल्लुक से भाई अहमद सईद साहब ने सवाल किया था कि अगर कोई शख्स 9 और 10 का रोज़ा नहीं रख सका और वो 9 और 11 का रख रहा है, कि कोई शख्स 9 तारीख का रोज़ा नहीं रख सका वो 10 और 11 का रोज़ा रख रहा है, तो क्या इसमें कुछ सवाब में कमी होगी उस शख्स की बनिस्बत जिसने 9 और 10 का रोज़ा रखा?
1: वही बात होगी शेख मोहतरम, जैसे थोड़ी देर पहले अर्ज़ किया सामीन किराम से मैंने कि 10 और 11 को रखा तो दोनों सुन्नतें जो हैं इसने बजाय इसमें तो शक नहीं उस पर अमल तो इसने कर दिया है शेख मोहतरम, आशूरा का भी रख दिया और एक दिन उसके बाद भी रख दिया, तो हमारा जो रोज़ा है और यहूद या वो लोग इस दिन की तज़ीम करते थे तो इसलिए ताकि ताकि उन लोगों से हमारे इस काम का ये हो जाए फ़र्क हो जाए तो एक दिन और भी रखा इसने। और हज़बी के आसामीन के नाम से कि एक रिवायत में ये बात भी आई है और दोनों पर अल्लाह तबारक व तआला अजर अता फरमाएंगे दोनों सुन्नत को बजा लाने पर, लेकिन क्योंकि हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं ज़िंदा था अगले साल तक तो 9वां भी جو ہے 90 دن میں بھی عاشورہ سے پہلے دن میں بھی روزہ رکھوں گا تو شاید اس میں اجر زیادہ ہوگا انشاءاللہ تھا, کیونکہ وہی بات ہوگی

0: और ये सोना और चांदी तो नहीं है ना शेख, अपने आमाल से देंगे और वो बहुत महंगी चीज़ है, वहाँ बहुत शदीद ज़रूरत होगी लोगों को इसकी, तो यहाँ तकलीफ़ से इबादत, बहुत मुश्किल से इबादत और सवाब कमा कर फिर क़यामत के दिन, और गालिब शेख ऐसे लोगों को देंगे जिसको हम पसंद भी नहीं करेंगे।
1: इंशाल्लाह। भाई जमाल साहब ने सवाल किया था कि वो डिलीवरी का काम करते हैं, सामान लेने जाते हैं, ऑर्डर आया, रेस्टोरेंट पे गए या बकाले वगैरह पर गए, ग्रोसरी पर, तो वहाँ सामान लेने जाते हैं तो वहाँ जो काम करने वाले हैं वो उनको पानी दे देते हैं या कुछ खाने पीने की चीज़ दे देते हैं, लेकिन इस चीज़ का इल्म उस होटल के या उस बकाले के मालिक को नहीं है इसका इल्म, तो क्या वो ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं?
0: देखिए शेख मोहतरम, एक तो ये थोड़ी चीज़ है ना शेख
1: जी,
0: यसीर अरबी में जिसको पुकारते हैं अरब लोग, और उसमें शरीयत में ज़्यादा तशदीद नहीं है, उसमें गुंजाइश और आसानी है, हत्ता कि शेख मोहतरम उलमा किराम ने कुछ ये भी जिक्र किया है, आप रास्ते में गुजर रहे और देख लिया बागीचा है, बागीचा में पलों की दरख्ते हैं और नीचे कुछ गिरे हैं फ्रूट्स मेवे, और आपने उससे खाया तो खाने के लिए आप खाने पर तो खा सकते हैं, आपके लिए जायज़ है खाना, लेकिन उठा नहीं लेकर जा सकते हैं। और दूसरी बात यह है शेख मोहतरम के गालिबन इस्लामी सोसाइटी में और माशरे में ये जो आपके पास आते हैं मेहमान जिसको हम पुकारते हैं शेख, गालिबन हम इकराम करते हैं, उसका हक भी बनता है ना शेख मोहतरम, ज़ायर और वहक़ुन अलल मज़ूरी अन युकरिम ज़ायरहू, तो ये गालिबन करते हैं, तो मतलब ये कि गालिबन अगर उस मालिक को भी इसके बारे में पता चला तो वो कुछ नहीं कहेंगे बल्कि खुश हो जाएंगे इंशाल्लाह, इस लिहाज से इंशाल्लाह तबारक व तआला इसके लेने और खाने या पीने में कोई हर्ज नहीं है इंशाल्लाह।
1: भाई उस्मान साहब ने सवाल किया था कि वो नमाज पढ़ते हैं और नमाज के बाद दुरूद वगैरह पढ़ते हैं और दुरूद शरीफ है और आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ते हैं, तो क्या ये अपने वालदैन वगैरह को सवाब कर भेज सकते हैं, इसाले सवाब कर सकते हैं या नहीं?
0: बिल्कुल शेख मोहतरम, हमारे उस्मान भाई से अर्ज़ यह है और सामीन कराम सब से कि जमहूर उलमा इसके कायल है जिसमें हनाफ और हनाबिल भी शामिल हैं, जो भी अच्छा काम हो किसी मुसलमान ने उसको कर लिया और फिर हिदायत सवाब किसी और मुसलमान को हदिया अदा किया, जो भी अमल हो और जो भी मुसलमान हो जिंदा या कोई मुर्दा मुसलमान हो, ये जायज़ और सही है, जमहूर उलमा किराम यही फरमाते हैं, इसमें हनाबिला और अहनाफ दोनों शामिल हैं, सुबहानअल्लाह, हम्बली मज़हब भी यही है, लेकिन कुछ उलमा किराम जिसमें आजकल के बड़े उलमा किराम शामिल हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, तन्हा दुआ सदका और हज और उमरा, इसके अलावा और आमाल जो है वो तन्हा उसी आदमी को उसका अजर और सवाब मिलता है जो उसको करता है, करने वाले को, बहरहाल इस तीन चार इबादतों का अजर और सवाब तो यकीनन हासिल है, ज़्यादा कोशिश इसी में कर लीजिए, ज़्यादा तो यही कर ले आप, और बाकी भी इंशाअल्लाह तबारक व तआला चूँकि जमहूर उलमा किराम ये फरमाते हैं तो यकीनन इसकी दलील है और इंशाअल्लाह मशरू चीज़ है, अगर आप मुतमैन हैं तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं।
1: उस्मान भाई ने दूसरा सवाल पूछा था कि वो कोई परदेस में चला जाता है और वो चार माह, एक के उन्होंने हदीस का हवाला दिया, वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का कॉल है, वो फरमाते हैं कि कोई चार माह दूर रहा तो फिर ये तो ये कह रहे कि हमें साल डेढ़ साल तक नहीं जाते, दो साल हो जाता है, किसी का चार साल पाँच साल हो जाता है, तो क्या हुक्म है, गुनाहगार होंगे या नहीं?
0: और शेख मोहतरम अगर दोनों में एग्रीमेंट हो या बीवी में तो कुछ मुश्किल नहीं है, बीवी ने कहा हो कि चलो मुश्किल नहीं है, आप जितने टाइम भी गुजारते हैं वहाँ मेरी तरफ से इजाज़त है, फिर हरज नहीं। अलबत्त इससे पहले एक और चीज़ मुझे कहना चाहिए था, वो ये कि अगर फ़र्ज नफ़का अपने मुल्क और घर में जहाँ इसका घर है अपने जगह में हासिल कर सकता हूँ, ज़रूरी जो ज़िंदगी की ज़रूरी और बुनियादी ज़रूरियात है, तब
1: जी
0: फिर यह हुक्म है कि बीवी ने इजाज़त दी हो तो फिर कुछ मुश्किल नहीं है, नहीं दी हो तो फिर एफाफ शर्त है शेख मोहतरम, मतलब इतने अरसे के बाद जल्दी लौटना है, दर सूरत है कि वहाँ फ़र्ज़ नफ़का हासिल कर सकता अपने मुल्क में, नहीं कर सकता तो फिर तो मजबूरी है, फिर ये चीज़ नहीं है। तो चार से छः महीने तक, क्योंकि जैसे आपने फरमाया सैयदना उमर ने अपनी बेटी को इसके बारे में पूछा और उसने जवाब यही दिया कि चार से छः महीने तक सब्र कर सकती हैं बीवी, तो इसमें इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर हर नहीं। दोबारा शेख मैं रिपीट करता हूँ इसको, अगर फ़र्ज़ नफ़का अपने मुल्क में नहीं कमा सकता तो फिर तो ज़रूरत کی بات ہے جتنی بھی اس کو ضرورت ہو تو اس میں مواخذ اس پر نہیں ہے انشاءاللہ اگر چار یا چھ مہینے سے زیادہ بھی رہا اگر فرض مہینہ وہاں کا فرض نفقہ معافی چاہتا ہوں وہاں کما سکتا ہو تو پھر بیوی نے اگر اجازت دی پھر بھی کوئی حرج نہیں ہے جتنا بھی عرصہ گزارا

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آپ سن رہے ہیں FM 107.
2: Dil se desi.
3: Consistency is the key. ये तो सुना ही होगा आपने. और इसी consistency के साथ अगर हमने हमारी दुनिया का ख्याल किया और energy को sustain करने में आगे हाथ बढ़ाया, तो यूँ समझिए कि हमने हमारे कल को एक तोहफा दे दिया. So sustain the future. RJ महविश के साथ. छोटे-छोटे कदम उठाएं एक बेहतर और sustainable मुस्तकबिल के लिए. सिर्फ FM 107 par dil se desi.
4: Assalamu alaikum and welcome to Sustain the Future. जहाँ हम बात करते हैं environmental sustainability और अपने planet Earth को future generations के लिए protect करने के बारे में. मैं हूँ आपकी आरजे मावश और आज का show dedicated है एक बहुत ही बड़े issue के लिए, the food waste crisis. आज हम डिस्कस करेंगे कि फूड वेस्ट कैसे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है और हम इसे कैसे कम कर सकते हैं. सो अपना फेवरेट स्नैक या कॉफी लें और चलिए शुरू करते हैं. फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया @FM107Qatar और आइडियाज ये क्वेश्चंस व्हाट्सएप करें ऑन 666-22-107. लेट्स मेक सस्टेनेबिलिटी अ पार्ट ऑफ आवर लाइव्स. अब चलिए dive into today's topic.
1: Topic of the day.
4: Listeners, food waste यानी खाना बर्बाद करना सिर्फ एक छोटी सी आदत नहीं, ये एक global crisis है. हर साल दुनिया भर में लगभग 1.3 billion tons खाना waste हो जाता है. सोचिए ये खाना कितने लोगों का पेट भर सकता है. कतर में भी हम अक्सर देखते हैं के रेस्टोरेंट्स में बूफे कल्चर की वजह से लोग ज्यादा खाना प्लेट में ले लेते हैं लेकिन खा नहीं पाते. या फिर जब हम घर में कुछ पार्टीज करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं, तो ओवर ऑर्डरिंग हो जाती है और बचा हुआ खाना बिन में चला जाता है. अब ये फूड वेस्ट एनवायरनमेंट को कैसे हार्म करता है? तो जब खाना लैंडफिल में जाता है तो वो डीकम्पोज होते वक्त मीथेन गैस रिलीज करता है जो एक डेंजरस ग्रीन हाउस गैस है और क्लाइमेट चेंज को बढ़ाता है. इसके अलावा फूड प्रोडक्शन के लिए ढेर सारा पानी, एनर्जी और नेचुरल रिसोर्सेज यूज होते हैं. जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो ये सारी रिसोर्सेज भी वेस्ट हो जाती हैं. सो हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल फ्यूचर? सबसे पहला स्टेप है पोर्शन कंट्रोल. सिर्फ

0: उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। अगर रेस्टोरेंट में है तो लेफ्ट ओवर्स को पैक करवा के घर ले जाइए। दूसरा, कंपोस्टिंग। आपके किचन के ऑर्गेनिक वेस्ट जैसे वेजिटेबल पील्स या बचा हुआ खाना कंपोस्ट बनाने के काम आ सकता है। ये आपके प्लांट्स के लिए एक नेचुरल फर्टिलाइजर है। छोटी छोटी चीजें करके हम अपने प्लैनेट के लिए बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेट्स मेक कॉन्शियस चॉइसेस फॉर अ ग्रीनर टुमारो। अब जरा डिटेल में इस टॉपिक को समझते हैं। खाना वेस्ट होना सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक बड़ा मसला है जो हर मुल्क में बढ़ रहा है। हर साल, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बिलियन टन्स खाना वेस्ट होता है। ये खाना जिंदगी के लिए जरूरी रिसोर्सेस को बर्बाद कर रहा है। हर दिन बहुत से लोग फूड वेस्ट करते हैं, चाहे वो घर में हो या रेस्टोरेंट्स में। लेकिन आप सोच सकते हैं, अगर ये खाना वेस्ट ना होता तो कितने लोगों को इससे खाना मिल सकता था। कतर में या और मुल्कों में हम देखते हैं कि बुफे में लोग ज्यादा खाना प्लेट में डाल देते हैं लेकिन फिर खा नहीं पाते। ये खाना वेस्ट होता है। घर में पार्टीज के लिए फूड ऑर्डर करते वक्त भी हम अक्सर ज्यादा ऑर्डर कर लेते हैं जिससे बचा हुआ खाना वेस्ट होता है। इसके साथ ही जब हम खाना बनाते हैं तो वो भी बाज़ोकात अपनी ज़रूरत से ज़्यादा बनाते हैं। और एक और जो बुरी आदत पड़ती जा रही है, मैंने काफ़ी लोगों में देखा है कि वो बचा हुआ खाना नहीं खाते। यानी अगर कोई चीज़ बच गई है और अगर आप फ्रिज में रख लेते हैं तो यकीन मानिए वो खाने के लिए सेफ है क्योंकि आप उसको रेफ्रिजरेट कर रहे हैं। लेकिन अक्सर लोग वो खाना भी ये सोच के फेंक देते हैं कि हमें ताज़ा खाना ही खाना है। चलें, अच्छी बात है अगर आपके जहन में ये सोच है कि आप फ्रेश फूड ही खाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपने करना ये होगा कि जब भी आप कुकिंग करें तो उतनी ही क्वांटिटी में आप अपने लिए खाना बनाएं जितनी आपको ज़रूरत है। जब फूड लैंडफिल्स में जाता है तो डीकम्पोज होने पर मीथेन गैस रिलीज होती है जो क्लाइमेट चेंज को बढ़ाने का सबब बनती है। फूड प्रोडक्शन के लिए पानी, एनर्जी और लैंड का यूज होता है। जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो ये सारे रिसोर्सेस भी साथ में वेस्ट होते हैं। यानी हमने ना सिर्फ खाना वेस्ट किया बल्कि उसे बनाने में जो रिसोर्सेस लगी वो भी वेस्ट हो गई।
1: आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर आरजे महविश के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।
0: एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए नेचुरल इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय किया जाता है और फूड प्रोडक्शन के लिए ढेर सारी लैंड एरियाज को यूज किया जाता है। जब हम खाना वेस्ट करते हैं तो इकोसिस्टम्स भी इनडायरेक्टली वेस्ट हो जाते हैं। फूड वेस्ट का इकोनॉमिक लॉस भी है। जो खाना हम वेस्ट करते हैं उससे हमारी इकोनॉमी में पैसा वेस्ट होता है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स हो या फार्मर्स। अगर हम खाना वेस्ट कम करें तो इस पैसे को दूसरी प्रोडक्टिव कामों में भी लगाया जा सकता है। फूड वेस्ट को कैसे कम करें, तो सबसे अहम तो यही है कि पोर्शन कंट्रोल करना होगा। खाना लेते वक्त पोर्शन कंट्रोल का ख्याल रखें। सिर्फ उतना ही खाना लें जितना आप खा सकते हैं। अगर बुफे में है तो अपनी प्लेट को ज्यादा ना भरें। अगर घर में ऑर्गेनिक वेस्ट है जैसे कि वेजिटेबल पील्स और बचा हुआ खाना, तो कंपोस्ट बनाने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। यह आपके प्लांट्स के लिए भी एक अच्छा फर्टिलाइजर है। कंपोस्टिंग से खाना वेस्ट कम होता है और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होता है। अगर खाना बच जाए तो उसे क्रिएटिवली यूज करें। लेफ्ट ओवर वेजिटेबल्स और मीट को नई डिशेस में यूज किया जा सकता है। आप इनको सूप्स या सैंडविचेस में डालकर फ्रेश मील बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका खाना आप ज्यादा नहीं खा पाएंगे तो वो खाना किसी फूड बैंक या चैरिटी को डोनेट कर सकते हैं। ऐसे आप दूसरों की मदद करते हैं और खाना वेस्ट नहीं होता। अपनी ग्रोसरीज को स्मार्टली प्लान करें। ज्यादा फूड खरीदना जो बाद में वेस्ट हो जाए अवॉइड करें। शॉपिंग लिस्ट बनाएं और उस पर स्टिक करें। ऐसे आप ना सिर्फ खाना कम वेस्ट करेंगे बल्कि अपने बजट को भी मैनेज कर सकेंगे। फूड वेस्ट के बारे में अवेयरनेस फैलाना बहुत जरूरी है। स्कूल, कॉलेजेस और लोकल कम्युनिटीज में कैंपेन्स चलाकर लोगों को एजुकेट किया जा सकता है कि फूड वेस्ट कैसे कम किया जा सकता है। हर एक छोटी कोशिश का असर होता है। रेस्टोरेंट्स और फूड बिजनेसेस को भी फूड वेस्ट को कम करने के लिए इंसेंटिव्स देने

0: तो लिसनर्स वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं सस्टेन द फ्यूचर और चलते हैं अब अपने सेगमेंट की तरफ। अब वक्त है वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट का। वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट में आज हम सुनेंगे एक इंस्पायरिंग वॉइस जो एनवायरनमेंट के लिए काम कर रही है।
1: वॉइसेस ऑफ द प्लैनेट।
2: Food loss and waste can be caused by so many different factors. And I'm talking about technological issues, economic factors, business considerations, and very important human practices, attitudes, and human behavior.
3: It is not an issue only of developing countries. It is an issue of transition and industrialized countries alike. We talk about an issue that globally impacts directly food and nutrition security for all.
2: But we have to realize that for this food to be produced anywhere in the world, a high amount of precious natural resources are being used, like land and water, and a lot of energy is being used with the equivalent emission of greenhouse gases. And if this is all done for nothing because the food is not being eaten, that is something that we cannot allow to happen.
0: अभी आपने सुनी हमारी वॉइस ऑफ द प्लैनेट। मुझे उम्मीद है कि इनकी आवाज ने और इनके मैसेज ने आपको बहुत हद तक मोटिवेट किया होगा और आप ये जान भी चुके होंगे कि फूड वेस्ट से बचना और फूड की रिस्पेक्ट करना कितना जरूरी है। लेट्स जॉइन हैंड टू मेक आवर प्लैनेट अ बेटर प्लेस।
1: वीकली चैलेंज।
0: चलिए अब टेक अवे चैलेंज की बारी है। इस हफ्ते का चैलेंज है जीरो फूड वेस्ट वीक। जी हाँ, पूरे एक हफ्ते कोशिश करें

0: कि आप कोई भी खाना वेस्ट नहीं करेंगे। पोर्शन कंट्रोल प्रैक्टिस करें, लेफ्ट ओवर्स को रीयूज करें और कंपोस्ट शुरू करें। और अगले हफ्ते के शो में हमें बताएं कि आपने ये चैलेंज कैसे पूरा किया। व्हाट्सएप करें 666-22107 या सोशल मीडिया पर मैसेज भेजें @FM107 Qatar। डियर लिसनर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ट्यूनिंग इन टू सस्टेन द फ्यूचर। आपका साथ हमें इंस्पायर करता है। अगले हफ्ते हम बात करेंगे सस्टेनेबल फैशन, ड्रेसिंग विदाउट स्ट्रेसिंग द प्लैनेट के बारे में। सो डोंट मिस इट। फॉलो अस ऑन FM107 Qatar और मैसेजेस भेजें 666-22107 पर। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज एंड बाय बाय।
1: सस्टेन द फ्यूचर।
2: आपने सुना हमें ऑन एयर। नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी
3: FM107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें। आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
4: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे।
5: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ RJ नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
6: दोस्तों, घर की हिफाजत आपके हाथों में है। एयर कंडीशनर की सेफ्टी पर तवज्जो दें। हर साल कई घर सिर्फ इस वजह से आग के शिकार होते हैं कि लोग छोटी छोटी सेफ्टी को नजरअंदाज कर देते हैं। एयर कंडीशनर का सही इस्तेमाल और देखभाल आपको इस किस्म के हादसों से बचा सकता है। इससे मुताल्लिक कुछ एहतियात बरतें। एयर कंडीशन की सफाई में लापरवाही ना करें। अगर आप अपने एसी की सफाई नहीं करते हैं तो उसमें धूल मैल वगैरह जमा हो जाता है। ये ब्लॉकेज गर्म हवा का रास्ता रोकता है जिससे यूनिट ज्यादा गर्म होकर आग लग सकती है। हर 2-3 महीने में फिल्टर की सफाई करें और एक दफा एसी का ओवरऑल चेक जरूर करवाएं। बिजली के लोड का ख्याल कीजिए। अक्सर लोग मार्केट से सस्ता और नॉन स्टैंडर्ड डिवाइस या एक्सटेंशन ले आते हैं जो एयर कंडीशनर का लोड बर्दाश्त नहीं करते। ये छोटी सी गलती शॉर्ट सर्किट या स्पार्क बन सकती है। हमेशा सिर्फ सर्टिफाइड और अप्रूव्ड इलेक्ट्रिक आइटम्स का ही इस्तेमाल करें। हमेशा किसी प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से मशवरा लें। एसी से पानी टपकता है, वहां स्विच या सॉकेट लगाने से बिजली का करंट या शॉर्ट सर्किट हो सकता है। याद रखें, हमेशा किसी एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस करवाएं। अगर एसी से अजीब स्मेल, आवाज या ज्यादा गर्म हवा आ रही हो तो फौरन उसे बंद करें और चेक करवाएं। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात न सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
7: हवा के झोंके आज मौसमों से रूठ गए।
8: कुछ लोगों को पुराने जमाने के गाने पसंद है, कुछ लोगों को नए जमाने के गाने पसंद है। और कुछ लोगों को सिर्फ हिट गाने ही सुनने हैं। इसीलिए मैं लेकर आया हूँ एक ऐसा शो जहाँ पर आपके मर्जी के गाने प्ले होंगे, जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो। द रिक्वेस्ट शो हर शाम 4 से 5 फजील के साथ संडे से थर्सडे ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
9: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
6: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
9: तुम इस मत कीजिए, प्रोग्राम कतर

0: 360 जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आरजे नाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa। घर, ऑफिस और हमारा वजूद, सब संभाल कर रख लेने की ताकत और कुछ कर गुजरने की हिम्मत ख्वातीन में कुदरती है, तो इसलिए हम ला रहे हैं एक प्लेटफॉर्म शोकेस करने के लिए ऐसी ही इंस्पायरिंग वुमेन को। तो ट्यून इन कीजिए इंस्पायरिंग वुमेन विद आरजे नाजिया हर वेंसडे 5 बजे से 6 बजे तक, और सुनिए उनके सफर को जो प्रूफ करती है कि पैशन और डेडिकेशन से कुछ भी

0: कहते हैं ना कि ख्वाब बड़े होने पर पहला कदम छोटा ही होता है और उसी छोटे कदम से सफर शुरू होता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, खुशामदीद कहूंगी आप सभी को इस शो में जिसका नाम है इंस्पायरिंग वुमन।
1: उसकी कहानी हर किसी को आगे बढ़ने की ताकत देती है।
0: दोस्तों, मैं आपकी होस्ट नाजिया और आज के इस एपिसोड में भी हम उस फीमेल की कहानी को लेकर आए हैं जो हिम्मत, मेहनत और जज्बे की मिसाल है। वेल, आज हमारे साथ हमारे बीच मौजूद हैं एक कमाल की गेस्ट जो कि डिसेबिलिटी रिसर्चर हैं, आप फाउंडर हैं कतर डिसेबिलिटी रिसोर्स की, साथ ही टॉप 40 यंग लीडर्स में से एक है और कमाल के ओरेटर भी हैं। लेट्स वेलकम सबिका। हेलो एंड वेलकम ऑन FM 107। हाउ आर यू डूइंग?
2: थैंक यू सो मच फॉर द वार्म वेलकम। आई एम एक्साइटेड टू बी हियर।
0: रियली लुकिंग फॉरवर्ड।

0: यू वंस अगेन.
1: आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द कन्वर्सेशन. थैंक यू.
0: थैंक यू. दोस्तों, इसी के साथ अब वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का. इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे. तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए FM 107. दिल से डीसी.

0: प्यार की, वो जा रहा है कोई शबम गुजार की, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार।
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM 107 पे इस्तकबाल है दोस्तों आप सभी का, ये शो रिव्यू ऑफ द वीक। वेल, काफ़ी दिनों बाद आप मुझको सुन रहे हैं और मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे बोलूँ। कभी कभार होता है ना कि आप अपना काम भूल जाते हैं, लेकिन बोलना ही तो है। सो रिव्यू ऑफ द वीक, ये शो जहाँ पर हर हफ्ते आपको एक नई मूवी के बारे में पता चलता है, और इस हफ्ते हम कॉकटेल 2 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि कॉकटेल मूवी कई साल पहले आई थी, काफ़ी हिट हुई थी और दीपिका पादुकोण जैसी एक्ट्रेस कॉकटेल जैसी मूवी से बहुत ज़्यादा नाम कमाती हुई दिखी, और इस मूवी में कई नए स्टार हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसका मूड कैसा है, हाइप क्या है कॉकटेल 2 मूवी के अराउंड, और कितने स्टार रेटिंग इसे मिले हैं, क्रिटिक्स का क्या कहना है, सारी बातें हम यहाँ FM 107 पे करने वाले हैं।
4: कोई भी रिश्ता जब नया होता है ना, एक्साइटिंग होता है, क्योंकि वो नया होता है।
3: तो कॉकटेल 2 का जो मूड है वो ऊपर ऊपर से बहुत ग्लैमरस और हसीन है, लेकिन अंदर से बिल्कुल एक तरह से कहें तो खाली है। बस इतनी ही लाइन में आपको सारी बातें पता चल जाएंगी कि ये मूवी कैसी है। प्रॉब्लम ये है कि कई बार जब आप

0: कोई दूसरी सीक्वल या कोई दूसरा सीरीज आप बनाते हैं तो पहले वाले की सक्सेस जो है आपके दिमाग पे चल रही होती है, उसकी क्वालिटी आपके दिमाग में चल रही होती है, कितना बेहतरीन उसने काम किया था, कितने पैसे आए थे, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना अच्छा था, तो वो दिमाग में आपके चलता रहता है। इस वजह से नई जो चीज़ आप बनाते हैं या सीक्वेंस जब आप बनाते हैं उसका दूसरा पार्ट बनाते हैं,
1: नए दोस्त मज़ेदार लगते हैं क्योंकि उनकी कहानियाँ हमारे लिए नहीं होती, पुराने दोस्तों की वही कहानियाँ सुन सुन के हम पक जाते हैं। लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं, पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सलूशन रह जाता है।
0: तो ये प्रेशर आपके दूसरे पार्ट को खराब कर देता है और कॉकटेल 2 के साथ आई गेस यही हुआ है। लेकिन अगेन कुछ मूवीज ऐसी भी रही हैं जो बहुत ज्यादा हिट हुई हैं और कुछ मूवीज ऐसी जो एक्चुअली में इतनी हिट हुई हो ना हुई हो पता नहीं, लेकिन उनके व्यूज उनको पसंद करने वाले लोग बहुत ज्यादा रहे हैं और साथ ही माइंड यू उनकी लोकेशंस इतनी खूबसूरत रही हैं कि उनको लोकेशन की वजह से ज्यादा याद किया गया है, जैसे कि जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा। आई नो वेट, मुझे पता है कि जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा बहुत अच्छी मूवी है, लेकिन उसको इस तरह से सिनेमा के साथ, साउंड के साथ और डायरेक्टर का जो विजन रहा उसके साथ इस तरह से ढाला गया है ना कि आपको मूवी और साथ ही साथ उसकी लोकेशन, खूबसूरती, यूरोप का जो उसका पूरा था वो सब कुछ याद रहता है, इवन कार तक आपको याद रहती है कि कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब काम उसमें किया गया था। वेल कॉकटेल 2 के साथ भी यही है, आपको मूवी याद रहे ना रहे लेकिन आई एम 100% श्योर कि आपको एक्चुअली में इस मूवी का लोकेशन जरूर याद रहेगा, बिल्कुल खूबसूरत सीनिक ब्यूटी आपको इस मूवी में देखने को मिलेगा।

0: वेल आगे बढ़ते हैं। मूवी एक्चुअली शुरू होती है बिल्कुल एक महंगी इटली की वेकेशन जैसी लगती है। सिसिली के खूबसूरत बीचेस हैं, एक्टर्स के डिजाइनर कपड़े हैं, प्रीतम का जबरदस्त म्यूजिक एक बहुत ही एनर्जेटिक और मजाकिया माहौल इन सबको क्रिएट करते हैं। शुरू में लगता है कि ये आजकल के जमाने की एक बहुत ही मॉडर्न और कूल लव स्टोरी टाइप होगी जिसको देखकर मजा आ जाएगा, हंसी भी होगी, व्यू भी होगा और कोई ना कोई मायने होंगे। कैमरा जिस तरह से लग्जरी विलास और इटली के खूबसूरत सड़कों को दिखाता है उससे ऑडियंस को लगता है कि वो कोई महंगी ट्रेवल मैगजीन देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही लॉयल्टी टेस्ट का ड्रामा शुरू होता है मूवी का मूड खराब और एनॉइंग होने लगता है। फिल्म में दिलों को छूने वाला कोई सच्चा इमोशन जो है ना वो नहीं है। कैरेक्टर्स बहुत ही बच्चों जैसी और अजीब बातें करते हैं जिससे देखने वाले बोर हो जाते हैं। डायरेक्टर होमी का स्टाइलिश अंदाज और राइटर लव जैन की पुरानी सोच ये दोनों आपस में मैच नहीं कर पाती है और यही वजह रही मुझे लगता है ऐसा कि इतनी सुंदर जगह दिखाने के बावजूद मूवी देखकर रोना या दुख होना या पछतावा होना, कैरेक्टर से इमोशनली कनेक्ट होना ये नहीं हो पाता है, बल्कि उल्टा होता है। इसका गुस्सा आने लगता है मूवी देख के कि ये क्या है। ये एक ऐसी फिल्म है जो देखने में तो बहुत अच्छी है, मतलब ऐसा अगर आप देखेंगे भाई, आप इसका ट्रेलर देखिए, ट्रेलर जैसी देखेंगे आपको इतना लाजवाब इतना बेहतरीन डायलॉग सुनने को मिलेगा और व्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं शाहिद कपूर के और साथ ही साथ मूवी के कि आपका दिल करेगा यार ये मूवी तो देखनी चाहिए।
1: सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आता है और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है राइट।
0: लेकिन ट्रस्ट मी दिस इज नॉट अ गुड मूवी एट ऑल। लेकिन इसमें कोई ऐसी दिल या जज्बा जैसी चीज नहीं है। फिल्म मेकर्स ने सजावट पर तो बहुत पैसा खर्चा किया है लेकिन कैरेक्टर्स के रिश्तों में गहराई डालना एक तरह से भूल गए। जब मूवी का सेकेंड हाफ शुरू होता है तो रोमांटिक कॉमेडी वाला

0: मजा बिल्कुल खत्म हो जाता है। बैकग्राउंड म्यूजिक बार बार ऑडियंस को इमोशनल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब स्टोरी ही खराब हो तो म्यूजिक भी काम नहीं आता। मतलब आटा ही गीला है तो आप गूंदेंगे कैसे? अगर वे आप सिनेमा से खुश होकर नहीं बल्कि कैरेक्टर्स की बदतमीजी और बेवकूफ़ी पर परेशान होकर बाहर आते हो सकता है। अगर आप बहुत वाला हिसाब है ना कि यार मैं तो इंटेलेक्चुअल आदमी हूँ, मुझे ये चाहिए ही नहीं, आप बीच में ही मूवी छोड़ देंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी हाइप। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है पुरानी यादों में, क्या है इस मूवी के बारे में उस पर भी बात कर लेते हैं। रिलीज से पहले इस मूवी का जो क्रेज़ और हाइप थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, जिसकी वजह से पहले वीकेंड पर सिनेमाज में बहुत भीड़ देखने को मिली। इसका ट्रेलर भी बड़ा लाजवाब सेट किया गया है। ऐसा लग रहा है कि ट्रेलर दिखा के आपको मूवी बेकार कर दी। वो है ना कि अरे ये तो ट्रेलर है, मूवी अभी बाकी है। इस मूवी के लिए ये लाइन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकती कि ट्रेलर देखा है, अभी तो मूवी बाकी है, अभी तो बहुत कुछ देखना भाई। तो ये सीन हो जाएगा अगर आप जाएंगे हॉल में। तो इस मूवी की हाइप की एक सबसे बड़ी वजह थी, और आपको भी बताया 2012 की पहली कॉकटेल मूवी। लोग उस पुरानी फिल्म के गाने, दीपिका पादुकोण की एक्टिंग को आज भी याद करते हैं। इसलिए सब देखना चाहते थे कि क्या ये पार्ट टू भी वैसा ही जादू चला पाएगा। फैंस को उम्मीद थी कि इस बार भी दोस्ती और मोहब्बत की वैसी ही एक गहरी कहानी देखने को मिलेगी, और मॉडर्न जमाने में यार, क्योंकि इतने सालों बाद आ रही है, 14 सालों बाद, कुछ तो नया होगा। इसके अलावा शाहिद कपूर और कृति सेनन की नई जोड़ी को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया जा रहा था। इसका मेन रीजन था ऑब्वियसली ट्रेलर अगेन।
1: लेकिन प्यार उस फटी हुई टी शर्ट की तरह होता है जिसमें हम रोज रात सुकून से सोते हैं, पर जब प्यार दोस्ती बन जाता है और दोस्ती में प्यार का रंग मिल जाता है तो इससे बचने का एक ही सोल्यूशन रह जाता है।
0: जब फिल्म का ट्रेलर और इटली में शूट हुए गाने, ये जब दोनों रिलीज हुए तो यंग लोगों में इसको देखने का शौक मजीद बढ़ गया। इंटरनेट पर हर जगह, इंस्टाग्राम और रेडिट पर भी लॉयल्टी टेस्ट वाले टॉपिक पर बातें होने लगी। मतलब फिल्म की हाइप तगड़ी बनी हुई थी। हर कोई टिप्पणी कर रहा था, हर कोई अपनी तरह से बात कर रहा था स्टोरी को लेकर। इस भारी हाइप का फायदा मूवी को बॉक्स ऑफिस पर मिला और इसने पहले 2 दिनों में अपना पैसा थोड़ा बहुत तो निकाल लिया, 50 करोड़ तो कमा लिया था। एडवांस टिकट बुकिंग इतनी ज्यादा थी कि पहले 2 दिन के सारे इवनिंग शोज हाउसफुल थे।

0: तेरे लिए मर भी जा।
1: अगेन ये मुझे लगता है वो लोग पहुंचे थे जो कॉकटेल के दीवाने थे। अब फिर उन्होंने रिव्यूज देना शुरू करा टीवी चैनल्स पर, यूट्यूब पर भी ट्रेलर्स का बहुत ज्यादा प्रमोशन किया गया था। मार्केटिंग टीम ने हर मॉल और बड़ी जगह पर मूवी के बारे में हाइप बनाई थी, लेकिन अफसोस जितना बड़ा इस मूवी का नाम और हाइप था, मूवी की असल कहानी उस स्टैंडर्ड पर पूरी नहीं उतर पाई। हाइप ने लोगों की उम्मीदों को बहुत बढ़ा दिया और जब उन्होंने फिल्म देखी तो उन्होंने बहुत मायूसी महसूस करी कि यार क्या है यार, वही पुरानी कहानी। अभी अभी आगे चलकर मैं आपको कुछ देर में बताऊंगा कि इसका प्लॉट क्या है। आपको लगेगा कि यार ये कहानी तो 2010 की है यार, 2008 की कहानी अब 2026 में भी दिखा रहे हो यार, क्या मतलब पैसा कमाने के लिए क्या कुछ भी बना दे रहे हैं। ये कहानी तो कोई भी बना लेगा, कोई बच्चा भी बना लेगा आजकल, कुछ नया तो डालिए। तो ये मूवी ऐसी है कि अगर आप बगैर दिमाग के बैठ कर देखना चाहते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो वाई नॉट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्टार, कितने स्टार मिले इस मूवी को या क्रिटिक्स का क्या मानना है। वैसे क्रिटिक्स ने इस मूवी को तो बहुत ही बुरी तरह से रिव्यूज़ दिए हैं, बट मेरा मानना है कि 5 में से 2 स्टार तो अगेन मिलना ही चाहिए। इसके रीज़न पर भी आता हूँ मैं। 5 में से 2 स्टार में से 1 स्टार सिर्फ इसलिए क्योंकि कृति सेनन ने अच्छा काम किया। आपको इस बारे में तो कहना ही पड़ेगा कि जो काम बंदा अच्छा कर रहा है उसके बारे में तारीफ तो करनी चाहिए।
2: सब अपनी अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आते हैं और एक्सपायरी डेट के बाद तो दवा भी जहर बन जाती है। रही
1: इतने कम स्टार्स मिलने की सबसे बड़ी वजह इसकी कमजोर और पुरानी कहानी है। आज के दौर में 2 कामयाब और इंडिपेंडेंट लड़कियां एक लड़के के लिए इस तरह बचकाना तरीके से लड़े

0: लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया, ये लॉजिकल है ही नहीं। मूवी का सेकंड हाफ बहुत ही बुरा है और कैरेक्टर्स का आपस में कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नजर नहीं आता। रश्मिका मंदाना की खराब हिंदी डिक्शन ने उनकी एक्टिंग को मजीद खराब कर दिया, जिससे रेटिंग मजीद गिर गई। अब एक लाइन यहां पर आई है कि रश्मिका की हिंदी डिक्शन, ये अब आपको आगे आने वाले पूरे रिव्यू में सुनने को मिलेगा बार बार। मुझे लगता है अगर 1.5 स्टार रेटिंग कटी है तो रश्मिका की हिंदी की वजह से कटी है। सोचिए कोई ऐसी मूवी जो 2012 में अच्छा करके गई, 2026 में दोबारा आई और उसके ज्यादा स्क्रिप्ट के बारे में या कहानी के बारे में बात ना होते हुए रश्मिका की हिंदी के बारे में बात हो रही है। पूरे मूवी में एक्चुअली रश्मिका की जो हिंदी रही है, हिंदी डिक्शन रही है, वो इतनी क्लियर नहीं थी, इसकी वजह से इसकी 1 से 1.5 रेटिंग खराब हुई है। लेकिन ये मूवी 1 स्टार होने से सिर्फ कृति सनन की वजह से बच गई। कृति की एक्टिंग को बहुत पसंद किया और उन्होंने अकेले 3.5 स्टार दिए इस एक्ट्रेस को, सिर्फ कृति सनन को। माइंड यू इसमें तीनों एक्टर को और एक्ट्रेस को मिलाकर बात नहीं हो रही है, सिर्फ कृति के बारे में बात हो रही है। शाहिद कपूर ने भी इतनी अच्छी एक्टिंग नहीं करी। अच्छा, उनके बारे में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं, ऐसा लग रहा दो लड़कियों को लड़ाया गया बस। उन्होंने बोरिंग स्क्रिप्ट में, यानी कि कृति ने बोरिंग स्क्रिप्ट में भी अपनी जान डाली है। उनका स्टाइल देखने लायक है। इसके साथ साथ इटली के हसीन नज़ारे और प्रीतम के अच्छे गानों की वजह से फिल्म को थोड़े पॉइंट्स मिले हैं। नॉर्मल पब्लिक के लिए जो बिना दिमाग लगाए सिर्फ कपड़े और अच्छी जगहें देखना चाहती है, उनके लिए ये फिल्म 2.5 स्टार मान सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ। टेक्निकल टीम जैसे कि कैमरामैन, कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने अपना काम पूरा 5 स्टार वाला किया, उन्होंने मेहनत की है ना। वो भी होता है कि यार इतने पैसे मिल रहे तो जस्टिफाई तो कर दूं अपना काम तो उन्होंने अपना काम जस्टिफाई किया है। लेकिन राइटिंग टीम ने सब खराब कर दिया है। मूवी का बजट 150 करोड़ है और 2 दिन में 50 करोड़ कमा लिया, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आप देखें, कई बार जब लोग रिव्यू देते हैं तो फ्रेंड्स या रिलेटिव्स देते हैं, अरे यार छोड़ो मत देखने जाओ, इतनी अच्छी नहीं है, तो ऐसे बहुत तेज़ी से मूवी जो है वो गिरती है। अब 150 करोड़ तक पहुंच पाना, क्योंकि मूवी का बजट यही है, और असली जो कमाई होती है 150 करोड़ नहीं 300 करोड़ के बाद होती है। तो ये तो खेल एक सबसे बड़ा यहीं पर है कि 150 करोड़ रिकवर कर ले, अभी तो सिर्फ 50 ही करोड़ आए हैं, 100 करोड़ का नुकसान ही है। लेट्स सी कि आने वाले वक्त में क्या होगा, जनता जनार्दन वाली बात है। इसलिए सिर्फ 2 स्टार के साथ इसका हिट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि अभी 50 करोड़ इसने कमाए हैं, राइटिंग वगैरह इतनी कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं दोस्तों, और जब ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो मजीद कॉकटेल 2 मूवी के बारे में बात करेंगे। और अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें, आज हम कॉकटेल 2 मूवी के बारे में बात कर रहे हैं, एक ऐसी मूवी जो 2012 में आई थी, कॉकटेल जिसका नाम था, और ये मूवी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद करी थी। लेकिन अब सारा मामला ये है कि ये दूसरी जो मूवी आई है कॉकटेल 2, इसमें उस तरह का काम हुआ नहीं। अगर आपने अभी तक रिव्यू सुना है तो डिक्शन से लेकर स्टोरी तक, राइटिंग तक, वो बात नहीं रही जिसकी वजह से ये फिल्म इतनी ज़्यादा हिट हो पाती कि लोग 150 करोड़ तक ले जाते। बाकी जब हम वापस आएंगे तो बात करेंगे मूवी के फन फैक्ट्स के बारे में, डायरेक्टर का विजन क्या रहा, फिल्मिंग की लोकेशन क्या है, एक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन और सिनेमाटोग्राफी से लेकर साउंड तक क्या कुछ है इस मूवी में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनते रहे FM 107, दिल से देसी।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग

0: डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है, बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहाँ कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप into a world of puzzles and excitement.
2: Unlock your mind. Tune into Radio Ka unique game show, Escape Room with A for Amita. Sunday to Thursday, dupehar 1:30 baje se. Only on FM 107. Dil se, desi.
3: Absolute cinema.
4: Ye hai wo reaction jiske liye aap theater jana chahte hain. Par reviews, वो आपको कई मरतबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं। बट डोंट वरी, भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा। अस्सलाम वालेकुम, FM 107 पे फजील के साथ है दोस्तों। आप सुन रहे हैं ये शो रिव्यू ऑफ द वीक, जहां पर हम कॉकटेल 2 मूवी के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक तो आपको मोटा-मोटा पता चल गया कि इस मूवी को देखना है, नहीं देखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट के फन फैक्ट क्या रहे हैं इस मूवी के, और डायरेक्टर का विजन क्या रहा है, फिल्मिंग लोकेशन, एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, सिनेमाटोग्राफी एंड साउंड एज। तो दोस्तों, एक फन फैक्ट जो मुझे पता है कि आपको पता है, यहाँ इस मूवी को जिस जगह पे शूट किया गया, यानी कि इटली में जिस जगह शाहिद कपूर रहते हैं, उस लग्जरी जगह को ढूंढने में बड़ा टाइम लगा था, बहुत पैसे भी लगे थे। जिस घर में या जिस विला में वो रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा खूबसूरत है, और पूरी टीम ने तकरीबन 40 लग्जरी विलाज ढूंढे थे और फिर फाइनलाइज हुआ वो। तो जब आप मूवी देखेंगे और 40वां यानी कि उस विला को देखेंगे, तो आप ये तय कर लीजिएगा कि ये 40वां विला है, और इससे पहले 39 यानी कि 39 विलाज और ये देख चुके हैं। उसके बाद फिल्म ने इस विला को, यानी कि जहां पर शाहिद कपूर रहते हैं, उसको कंफर्म किया है। और एक और फैक्ट है, और ये टेक्निकल क्रू का फैक्ट है, बहुत कम ऐसा होता है कि जिस जगह पे शूटिंग हो रही हो, वहां के लोकल क्रूज को या लोकल लोगों को या लोकल एक्टर और एक्ट्रेस को हायर किया जाए, लेकिन इस मूवी में 60% लोकल को हायर किया गया है। कैमरा असिस्टेंट हो गए, इटालियन फिल्म मेकर एजेंसीज हो गई, ग्राउंड टेक्निकल क्रूज हो गए, तो इन सबको हायर किया गया, और 60% इनकी आबादी रही है, मतलब इस फिल्म को शूट करने के लिए। उसके अलावा वेदर एकदम से चेंज हो गया था एक बार, ऐसी इस मूवी का एक बहुत ही मज़ेदार गाना था, उसे शूट करना था, लेकिन वेदर जो है एकदम से चेंज हो गया, और फिर कुछ टाइम जो है वो ले लिया था। बीच पार्टी का ट्रैक था और उसको शूट करने के लिए लोग वहाँ पर गए, और इतनी ज़्यादा मौसम की ऐसी तैसी हो गई, मौसम ने ऐसी तैसी कर दी कि फिर पूरा जो ट्रैक है यानी कि पूरा जो शूट है उसे रोकना पड़ा, और फिर बाद में इसे दोबारा शुरू किया गया। और एक और फैक्ट जो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ये है रोड क्लोजर को लेकर। सिसिली में कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पर अलाउ है ही नहीं, है ना, तो शूटिंग वगैरह अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पर रोड क्लोज करके बाकायदा शूट किया गया, पूरी पब्लिक सेफ्टी के साथ। हाई स्पीड ड्रोन्स थे जिसकी शूटिंग होनी थी, शाहिद कपूर, कृति सेनन वहाँ पर थे, जहाँ पर वो बहुत तेज़ ड्राइव कर रहे थे स्पोर्ट्स कार, तो वहाँ पर अलाउ नहीं, बट बाकायदा वहाँ से परमिशन ली गई, रोड क्लोज किया गया, और फिर ये सारे सीन जो हैं वो शूट किए गए। और उसके बाद अब बात कर लेते हैं एक वॉच वाले सीन के बारे में। तो शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है वो बहुत अमीर है इस मूवी में,
3: तो अल्ट्रा वेल्दी कॉर्पोरेट बिजनेसमैन है, वो हाई एंड लग्जरी वॉचेस वगैरह का शौक रखता है। एक वॉच ब्रांड थी जो ऑफिशियली पार्टनर करना चाहती थी प्रोडक्शन के साथ, तो जो वॉच पहना है ना आप जब मूवी देखेंगे शाहिद कपूर ने, तो उन्होंने ऑफिशियली उनसे कोलैब किया और कहा कि जब भी आप बाहर निकले, यानी कि मूवी जब भी आप शूट कर रहे हो, तो प्लीज़ ये वॉच प्लीज पहन लिएगा। तो इस तरह से कोलैबोरेट किया, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डायरेक्टर विजन। इस मूवी में डायरेक्टर का विजन क्या रहा है? डायरेक्टर होमी का विजन हमेशा से बहुत स्टाइलिश, मॉडर्न और हटकर होता है। वो इस फिल्म के जरिए आजकल के जमाने के रिलेशनशिप और उनके दरमियान पैदा होने वाले इनसिक्योरिटीज को दिखाना चाहते थे।
5: तूने तो ऐसे रिया किया जैसे तुझे इतनी बुरी उम्र।
6: मैंने तो ये सोच के कहा था कि तुझे बुरा ना लग जाए।
7: पता नहीं मैं तेरे लायक हूं या नहीं।
3: उन्होंने इस कहानी को बहुत ही रिच और हाई क्लास लुक देने की कोशिश की, जहां लोग देखने में बहुत कूल लगते हैं। लेकिन इस बार उनका विजन थोड़ा खराब हो गया, क्योंकि उनके साथ को राइटर लव रंजन शामिल थे। लव रंजन का अपना एक अलग स्टाइल है लिखने का भी, जो अक्सर लड़कों की साइड लेते हैं, कमर्शियल मजाकिया फिल्में बनाते हैं। होमी चाहते थे कि मूवी बहुत इमोशनल और डीप हो, जबकि लव रंजन इसको एक मजाकिया और लड़का लड़की वाली लड़ाई जो है वो बनाना चाहते थे। इस दो तरह की सोच की वजह से मूवी का आखिरी मैसेज बहुत अजीब हो गया। इसीलिए कहते हैं जब भी राइटर और साथ ही साथ डायरेक्टर को जब मिलना चाहिए, तो पहले स्क्रिप्ट बनाने मत बैठ जाओ, एक दो दिन साथ में घूमो, है ना, जो स्क्रिप्ट है जो कहानी उस पर चर्चा करो, उस पर बात करो। ऐसे थोड़े कि आप पहुंच गए और फिर आपने स्क्रिप्ट लिख दी, फिर क्या दोनों का अलग विजन हो जाता है, इसकी वजह से फिल्म इसी तरह निकलती है। कॉकटेल टू आगे, यू नो, होमी ने मूवी को देखने में बिल्कुल एक इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाई है। अगर आप उनके इस मूवी को देखेंगे, सिनेमाटोग्राफी को देखेंगे, हर एक चीज़ को, जहां हर सीन बहुत महंगा और स्टाइलिश लगता है, उनका मकसद ऑडियंस को एक ऐसी दुनिया में ले जाना था जहां सब कुछ हसीन हो, भले ही कहानी में थोड़ी कमजोरियाँ क्यों ना हो।

अब बात कर लेते हैं फिल्मिंग लोकेशन के बारे में। यार इस मूवी में अगर कुछ है तो वो सिर्फ फिल्म की लोकेशन ही है। कॉकटेल 2 को बहुत ही खूबसूरत और महंगी इंटरनेशनल लोकेशंस पर शूट किया गया है, जो इस मूवी की सबसे बड़ी जान है। पूरी मूवी का मेन हिस्सा सिसिली यानी कि इटली में शूट हुआ है। यूरोप की ये जगह अपने पुराने पत्थरों वाले घरों, नीले समंदर और खूबसूरत हसीन धूप के लिए बहुत मशहूर है। मतलब आपको जिंदगी ना मिलेगी दोबारा ऐसा फील आ जाएगा। मूवी याद रहे ना रहे, सीन याद आ जाएगा। वहाँ शूटिंग की इजाज़त लेना एक बहुत बड़ा मसला होता है। क्रू को इटली के पुराने लग्जरी विलाज में शूट करने के लिए पूरे 4 महीने तक इंतज़ार करना पड़ा था। सोचिए एक ऐसी मूवी जो इतनी अच्छी भी नहीं है लेकिन व्यू इतना अच्छा है तो उसके लिए 4 महीना बनता है। प्रोडक्शन टीम ने वहाँ के 60% से ज़्यादा लोकल इटालियन टेक्नीशियंस को काम पर रखा। वहाँ की लंबी कोस्टल रोड्स पर शाहिद और कृति के कार चलाने वाले सीन्स बहुत ही अमेजिंग लगते हैं। इटली की ये हसीन धूप और दरिया बहुत ही लाजवाब है। गलियां बड़ी खूबसूरत थी। मूवी को एक आम बॉलीवुड फिल्म से ये सारी चीजें अलग बनाती हैं। जब आप थिएटर में ये मूवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि आपने सस्ते में इटली का एक महंगा टूर ले लिया हो। हर लोकेशन सीन को इतनी सफाई से दिखाया गया है कि लोग कहानी से ज्यादा वहां के नजारों में खो जाते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। इस मूवी के लिए तीनों मेन एक्टर्स ने अपने रूप और लुक पर बहुत ज्यादा मेहनत की है ताकि वो अल्ट्रा मॉडर्न कैरेक्टर्स लग सके। शाहिद कपूर ने इस फिल्म के लिए बाकायदा अपना वजन थोड़ा और कम किया। ऑलरेडी वो बहुत अच्छे लगते हैं यार, लेकिन उसके बावजूद कम किया है, शार्प दिखे हैं, फिट और मैच्योर लुक अपनाया है। उन्होंने बहुत ही स्टाइलिश शॉर्ट हेयर कट और महंगे डिजाइनर सूट्स पहने ताकि वो एक अमीर कॉरपोरेट बिजनेसमैन लग सके। लेकिन अगर कोई अमीर है, कॉरपोरेट बिजनेसमैन है और वो सूट बूट पहन के फिट भी हो, ये बहुत कम होता है। नहीं, हमारे अपने इंडिया में तो बहुत कम है, ऐसे मोटे हट्टे कट्टे तड़ंगे होते हैं दाल चावल खाने वाले। वेल, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि शाहिद कपूर की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही काम और कूल इस मूवी में दिखाया गया। कृति सेन, यार इनके बारे में तो ज्यादा कुछ है नहीं कहने को, इसलिए क्योंकि काम ही इतना अच्छा किया है ना। कई बार ऐसा होता है कि काम इतना अच्छा कर दो कि ज्यादा कुछ वैसे ही नहीं कहने को। क्योंकि खराब काम करने वाले ज्यादा हैं, उनके बारे में बहुत कुछ है कहने को। कृति सेनन ने इस मूवी में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है। उन्होंने एक बोल्ड बिंदास हाई फैशन लड़की एली

का रोल प्ले किया है। इसके लिए उन्होंने अपना पूरा स्टाइल चेंज किया, नए हेयर हाइलाइट्स, बहुत ही ग्लैमरस बोल्ड कपड़े। उनका ये लुक उनकी पुरानी फिल्मों से बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ रश्मिका को ले लीजिए, उन्होंने अपना लुक तो थोड़ा सिंपल और एलिगेंट रखा है, लेकिन उन्होंने अपनी हिंदी इतनी बेहतरीन कर दी है कि सुनने का मन ही नहीं करता। बहुत अजीब डिक्शन था यार, मजा ही नहीं आया। मतलब आप जब हिंदी और उर्दू बोलते हैं तो यही वाली लैंग्वेज होती है जैसे हम और आप बोल रहे हैं, उनकी डिक्शन बिल्कुल अलग थी। और रश्मिका को रखने का मुझे ऐसा कोई इसमें सीन लगा ही नहीं। मुझे लगता है कई बार ऐसा होता है ना, कास्टिंग वाले बंदे जो हैं वो पता नहीं क्या सोच के रश्मिका को ले लिया भाई, मुझे नहीं समझ में आया। हो सकता खूबसूरती समझ के ले लिया हो तो, बट आपको देखना पड़ेगा ना। अब हिंदी डिक्शन, सिर्फ ये बहुत बड़ी बात है कि हिंदी डिक्शन के लिए ट्रोल हो रही है रश्मिका। कोई एक्ट्रेस हिंदी डिक्शन के लिए ट्रोल हो रहा है, व्हाई? आपके पास इतने एक्ट्रेस हैं, इतने अच्छे काम करने वाले हैं, आपने कास्ट रश्मिका को करा जिनकी हिंदी इतनी क्लियर है नहीं। खैर कोई बात नहीं, बदकिस्मती की बात है। और यही वजह है कि रश्मिका की हिंदी की वजह से इस फिल्म के 1 से 1.5 स्टार रेटिंग जो है वो कम हो गई है, लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया है। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिनेमाटोग्राफी एंड

टेक्निकल लिहाज से कॉकटेल 2 एक बहुत ही बेहतरीन और टॉप क्लास फिल्म है। इसकी सिनेमाटोग्राफी बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। कैमरा ने इटली के रंगों को, समंदर के नीले पानी और एक्टर्स के चेहरों के एक्सप्रेशंस को इतनी खूबसूरत तरीके से लेंस में कैद किया है कि हर फ्रेम एक पिक्चर परफेक्ट पोस्टकार्ड लगता है। ड्रोन शॉट्स का इस्तेमाल बहुत ही कमाल का है, जो सिसिली के बड़े बड़े नज़ारों को बहुत ही ग्रैंड लुक देते हैं। साथ ही प्रीतम का म्यूजिक, एंड यार देखो, प्रीतम कोई नए लड़के तो है नहीं, इनकी कॉम्पोजिशन, इनके गाने, इनका म्यूजिक लाजवाब है। इसी की वजह से शायद कॉकटेल 1 के भी और कॉकटेल 2 के भी जो गाने रहे हैं वो लाजवाब रहे। प्रीतम का म्यूजिक दूसरा सबसे मजबूत हिस्सा है। गानों में मॉडर्न बीट्स के साथ साथ थोड़ा यूरोपियन और इटालियन टच भी दिया गया, वही जिंदगी नाम मिलेगी दोबारा जैसा हल्का फुल्का टच। प्रीतम ने खुद इटली जाकर वहां के स्ट्रीट म्यूजिशियंस के साथ काम किया ताकि बैकग्राउंड म्यूजिक में असली फील आ सके। पार्टी सॉन्ग बहुत ही एनर्जेटिक है, और मजेदार बात यह है कि गानों के दौरान शाहिद और कृति ने कुछ डांस स्टेप्स ऑन द स्पॉट खुद ही बनाए, तो ये और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है ना। अगर दोस्तों इस मूवी में से अच्छी सिनेमाटोग्राफी और म्यूजिक निकाल दिया जाए तो कहानी देखने लायक है ही नहीं, बस ऐसा समझ लीजिए एक खूबसूरत व्यूज जो है वो आपको सोशल मीडिया पर दिखा दिया गया है, कुछ ऐसे ही सीन रहेगा। तो ये कुछ बातें सिनेमाटोग्राफी, एक्टर ट्रांसफॉर्मेशन, फिल्मिंग लोकेशंस, डायरेक्टर का विजन, फन फैक्ट्स के बारे में हमने बात करा। रिव्यू ऑफ द वीक सुन रहे हैं आप, जल्दी से बात कर लेते हैं शॉर्ट स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। कॉकटेल 2 मूवी के बारे में आज हम बात करें, अगर आपने अभी ट्यून इन किया तो परफेक्ट परफेक्ट टाइम। तो दोस्तों बस ये इतनी सी कहानी है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक्टर्स के काम के बारे में। मूवी में एक्टर के लिहाज से मिला जुला काम देखने को मिला है, लेकिन एक एक्ट्रेस ने पूरी फिल्म में बाजी मार ली है, वो है सेनन, यानी कि कृति सेनन एली। इस पूरी मूवी का सबसे बेहतरीन हिस्सा वही रही है। And now about the critics. Critics का क्या कहना है? Critics ने कहा है कि फिल्म वही पुरानी घिसी पिटी कहानियों पर बनी है, 5 में से 2 स्टार ले जाइए आप। उनका ये भी कहना है कि मूवी सिर्फ ऊपर से चमकदार है पर अंदर से बिल्कुल खाली है। सबसे बड़ी वजह यह है कि मूवी की कहानी बहुत पुरानी और पिछड़ी हुई लगती है। क्रिटिक्स के मुताबिक साल 2026 में दो पढ़ी लिखी और कामयाब लड़कियों को एक लड़के के लिए इस तरह से लड़ते हुए दिखाना बिल्कुल अजीब है, और ये बात बिल्कुल जेन्युइन है भी यार। मूवी के डायरेक्शन में भी दो अलग सोचे जो है वो टकरा रही हैं। एक तरफ डायरेक्टर होमी का स्टाइलिश अंदाज और दूसरी तरफ राइटर लवजैन की पुरानी सोच। सिनेमा एक्सप्रेस के एक मशहूर रिव्यू में कहा गया कि फिल्म सिर्फ सजावट है, इसमें कोई गहराई नहीं है। एंड नाउ अबाउट द वर्डिक्ट। तो दोस्तों इस मूवी को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये पूरी तरह से आप पर डिपेंड करता है। अगर आपका दिल है तो आप देखिए, पैसे खर्च करने का दिल है तो क्यों नहीं, लेकिन अगर आप अपने पैसे बचाना चाहते हैं तो मत देखिए। अगेन लेकिन एक और चीज़ है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि यार बुद्धि नहीं लगानी है मुझे, है ना, तो भी आप ये मूवी देख सकते हैं। कॉकटेल 2 ऊपर से बहुत हसीन और ग्लैमरस लगती है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली फिल्म है, जो पहली कॉकटेल जैसी सच्चा और गहरा इमोशन नहीं दिखा सकी। हालांकि कृति सेनन ने बहुत ही जबरदस्त एक्टिंग की है, लेकिन फिल्म की खराब कहानी, टॉक्सिक प्लॉट, कमजोर कैरेक्टर ने पूरी मूवी का मजा खराब कर दिया। वेल बाकी आपकी मर्जी है। इसी के साथ मुझे यानी कि फजील को दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट

0: टू वीक एक नए मूवी के बारे में बात करते हुए नए अंदाज में सुनते हैं FM 107 दिल से देसी।
1: Qatar's most heard radio station FM 107 दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: Are you ready? Friday 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको. Top 10 countdown. सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में।
3: आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन FM 107।
2: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
4: हेलो एंड वेलकम टू अवर शो कॉल्ड कतर बिजनेस 360, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं इंस्पायरिंग स्टोरीज, वैल्यूएबल इनसाइट्स और वो लीडर्स जो बिजनेस लैंडस्केप को शेप कर रहे हैं, ना सिर्फ कतर में ही बल्कि ग्लोबली भी। आज हम फोकस कर रहे हैं हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर, जो किसी भी स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग इकोनॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पिलर होता है। आजकल फार्मेसीज की अगर बात की जाए तो ये सिर्फ मेडिसिन

0: expanding. In the coming future, there will be more coming.
1: Nice, right. Okay, in your opinion, how can the healthcare sector further improve to meet the growing needs of the community?
0: Definitely, people are in need of a lot of things, and pharma community can provide these facilities to everyone. And through proper understanding and supporting each other, we can make a lot of difference. It is not just giving medicine, it is also to educating people from how they can stay away from diseases, how they can lead a healthy lifestyle, and also in when we are aging, what all things we need to do to avoid future consequences and complications. So by learning and implementing all this information into practice, we can definitely make a huge impact and change in people's lives.
1: Right. All right. So in a world, we believe, where healthcare needs are rapidly evolving, how do you see the role of, you know, community pharmacies shaping the future of preventive healthcare?
0: Pharmacies can help people for a better lifestyle. Doctors are met mostly for the existing problem, and they are providing a cure for their disease or problems. But in pharmacies, those who are coming to a pharmacy, they can consult a pharmacist for free. And to be frank, a pharmacist is the only profession you can consult and get advices for free. So people come and the pharmacist advise on how to maintain a healthy lifestyle and avoid any chronic diseases, and to how to maintain strong bones, strong muscles, and what all medications or supplements they need or they can take to live this kind of a lifestyle. And in addition, not just medicines and supplements, we have various other products for skincare and hair care, all these segments. So pharmacist is a source of information and guidance for everyone who can just walk into any community pharmacy and get it for free.
1: Very well said. Beautiful. And now finally coming to the closing question, the final one. What advice would you like to give to someone who dreams of starting same business, a pharmacy or healthcare business?
0: First of all, we need to understand we are in a service industry, and we should be having a service mind. So this is something which I want to do. I will be helping people or improving people's life. And of course, we also need to make money out of it. But healthcare business is not something which we can make quick money. We should be ready to invest our time and effort and to build credibility and also the necessary infrastructure. And slowly, slowly, we have to grow it. After a period of time only, we will be able to take the profit out. And only if we have this patience and consistent effort, we can grow. That nice. Is what I have learned, and that is what I will advise anybody.
1: That's a wonderful advice, patience and consistency. Thank you so much. Thank you so much for taking out this time. It was truly a pleasure talking to you, and your insight on pharmacy and healthcare, I believe, were both valuable and inspiring. Thank you. We appreciate your time.
0: Thank you very much.
1: Thank you. Have a great day. Take care. इस इंटरव्यू में केयर एंड क्योर फार्मेसी के सीईओ मिस्टर ईपी अब्दुल रहमान ने फार्मेसी बिजनेस के बारे में हमसे बातचीत की. हेल्थ केयर सेक्टर और अपने पर्सनल सफर के बारे में भी उन्होंने बताया. आपने हमें बताया वाजे तौर पे कि आज के मॉडर्न दौर में फार्मेसी सिर्फ मेडिसिन सेल करने का जरिया नहीं रही, बल्कि एक कम्प्लीट हेल्थ केयर सपोर्ट सिस्टम बन चुकी है जो लोगों की जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है. जी हाँ, हमने लगातार सवाल पूछे फार्मेसी बिजनेस के बारे में, हमने जानने की कोशिश की, और हम और आप ये समझे कि फार्मेसी बिजनेस असल में क्या होता है और इसका लोगों की जिंदगी में क्या रोल है. मिस्टर रहमान ने बताया कि फार्मेसी एक ऐसा इदारा है जो सिर्फ दवा ही देने का काम नहीं करता, बल्कि लोगों को गाइड भी करता है, हेल्थ अवेयरनेस और प्रॉपर कंसल्टेशन भी देता है. उनका कहना था कि कई दफा लोग छोटे हेल्थ इश्यूज के लिए सीधे बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए फार्मेसी का रुख कर लेते हैं, जहां उन्हें इनिशियल गाइडेंस और प्रॉपर गाइडेंस मिलती है। इस तरह फार्मेसी सिस्टम, मैं कह सकती हूँ कि हेल्थ केयर का एक बेसिक और एक्सेसिबल हिस्सा है जो हॉस्पिटल्स और पेशेंट्स के दरमियान ब्रिज का काम करता है। और हमने और भी आगे जाने की कोशिश की कि फार्मेसीज जो है वो सिर्फ मेडिसिन तक महदूद नहीं है, और हमारे गेस्ट का भी कहना था कि इनका रोल काफी बढ़ चुका है। इस पर उन्होंने जवाब ये दिया कि आजकल जो फार्मेसीज है ना, वो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर पर भी फोकस कर रही हैं। इसमें हेल्थ चेकअप्स है, वेलनेस प्रोडक्ट्स है, वाइटामिन्स है, लाइफस्टाइल एडवाइस है और पेशेंट की काउंसलिंग शामिल है। आपका कहना था कि अगर लोग अपनी हेल्थ का ख्याल अर्ली स्टेज पर ही रखेंगे तो बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं, और फार्मेसीज इस प्रोसेस में बहुत मदद देती हैं। फिर उनसे उनके पर्सनल सफर के बारे में मैंने पूछा, जहां आपने बताया कि इस बिजनेस का आगाज कैसे हुआ, किस तरह से उन्होंने अपनी डिग्री इसी फील्ड में हासिल की, और इनिशियली किस तरह से एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे उन्होंने अपने करियर का आगाज किया, और फिर धीरे धीरे इसी सेक्टर में अपने आप को जब मजबूत कर लिया तो धीरे धीरे खुद का बिजनेस भी लॉन्च किया। उन्होंने बताया कि उनका इंटरेस्ट हमेशा से हेल्थ केयर सेक्टर में था और उन्होंने छोटे से लेवल से अपना सफर स्टार्ट भी किया। शुरुआत में उन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम किया, लेकिन स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और मेहनत से धीरे धीरे अपना बिजनेस जो था वो ग्रो किया। फिर हमने उनके इंस्पिरेशन के हवाले से भी सवाल पूछा, जहां आपने बताया कि शुरू से ही उनका इंटरेस्ट, पैशन और प्रोफेशन एक ही था बस, और साथ में एक चीज ये कि लोगों की खिदमत करना है, उनके लिए हेल्थ जो है वो टॉप प्रायोरिटी है। उनका मानना था हमारे गेस्ट का कि हेल्थ केयर एक ऐसी फील्ड है जहां काम करने से सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि इंसानियत को भी जिंदा रखा जाता है और किसी ना किसी तरह से लोगों की मदद की जाती है। शुरुआती दौर में जरूर चैलेंजेस रहे, जो कि उन्होंने बताया कि हर चीज में चैलेंजेस इनिशियली होते ही हैं, लेकिन जब आपकी टीम स्ट्रॉन्ग हो, जब आपकी टीम के एक पैशनेट टीम हो, तो आप आगे बढ़ ही जाते हैं। हेल्थ केयर सेक्टर में लोग अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, इसलिए उन्हें कन्विंस करना और उनका भरोसा जीतना आसान भी नहीं होता, ये भी बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कॉम्पिटिशन और फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स भी हैं जो कि चैलेंज बन ही जाते हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट और कमिटमेंट, ये सारी चीज़ें अगर आपने हैं, तो वो सारे चैलेंजेस को आप आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। फिर मैंने ये भी उनसे जानना चाहा कि आप अपना बिजनेस आपने कैसे ग्रो किया, जहां पर उन्होंने कहा कि राज जो है वो कंसिस्टेंसी और कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ट्रस्ट में और पेशेंस में छुपा है। उनका कहना था कि अगर आप कस्टमर्स को बेहतरीन सर्विस और जेन्युइन प्रोडक्ट्स देते हैं तो वो नेचुरली आप पर ट्रस्ट करते हैं और आपका बिजनेस ग्रो करता ही करता है। देखिए, आज के ना इस कॉम्पिटिटिव मार्केट के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इंडस्ट्री जो है वो अपने आप में देखने तो यूनिक है, लेकिन इसके अपने कुछ हिडन चैलेंजेस भी हैं। यहाँ पर कस्टमर का ट्रस्ट ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और आपने बताया कि बिल्कुल ट्रस्ट के साथ साथ क्वालिटी और अफोर्डेबल प्राइसेस और फिर पर्सनल केयर पे फोकस, ये सारी चीजें मिल जाएं तब कहीं जाकर आपका बिजनेस जो है वो सस्टेन करने की पोजीशन में आता है। उनका कहना था कि हर कस्टमर के साथ एक इंडिविजुअल अटेंशन देना उनका मिशन है, जो उन्हें दूसरों से भी अलग करता है। वहीं पर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में भी पूछा, जहां हमारे गेस्ट ने बताया कि टेक्नोलॉजी के रोल पर अगर बात की जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ने फार्मेसी बिजनेस को बहुत हद तक चेंज किया है। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स, डिजिटल प्रिस्क्रिप्शंस और ऑटोमेटेड सिस्टम्स ने जो है वो काम को फास्ट और एफिशिएंट बना दिया है। इससे कस्टमर्स को आसानी होती है और बिजनेस ऑपरेशंस भी स्मूथ चलते हैं। वहीं ट्रस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो आपने बताया कि ट्रस्ट जो है वो सेक्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कस्टमर आप पर ट्रस्ट करता है तो वो बार बार आपके पास आता है, और इस ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए वक्त लगता है, पेशेंस चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, ऑनेस्ट एडवाइस चाहिए, सर्टिफाइड मेडिसिन चाहिए और प्रोफेशनल बिहेवियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका कहना था एक ट्रस्ट जो है वो एक दिन में नहीं बनता, बल्कि ये टाइम के साथ जो है आपकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बलबूते पर डेवलप होता रहता है। वहीं पर हमने लास्ट में अपने गेस्ट से ये भी जानना चाहा कि मान लीजिए कोई इसी तरह का बिजनेस यहाँ पे कतर में स्टार्ट करना चाहे तो आप उनको क्या इंपॉर्टेंट एडवाइस देना चाहोगे। तो दो चीजें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो हमारे गेस्ट ने हाईलाइट की, वो था पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी. और ये एडवाइस मुझे लगता है नॉट दैट जस्ट हम हेल्थ केयर बिजनेस की बात करें वहीं पर एप्लीकेबल है, बल्कि सारे बिजनेसेस पर ये एप्लीकेबल है ही. इसके अलावा जो चीज बहुत और इंपॉर्टेंट हो जाती है वो है प्रॉपर नॉलेज. हमारे गेस्ट ने ये भी हमें बताया कि जो

सक्सेस है ना वो फौरन या शॉर्टकट तरीके से आपको नहीं मिलेगी. इसके लिए आपको सब्र और लगन, लगन से लगे रहना है, बस लगे रहना और कोशिश करते रहना है. वही देखिए, सूनर या लेटर आपको कामयाबी मिल ही जाएगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि उस कामयाबी को आपको किस तरह से सस्टेन करना है. अब फ्यूचर प्लान्स की जब मैंने बात की उनसे, तो हमारे गेस्ट ने बताया कि वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ब्रांचेस इस्टेब्लिश कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस्टेब्लिश हो भी रही हैं और हो भी जाएंगे और आपको पता भी चलेगा. इसके साथ साथ वो न्यू हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने का प्लान भी रखते हैं ताकि कस्टमर्स को और बेहतर फैसिलिटीज मिल सके. कस्टमर एक्सपीरियंस के हवाले से सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि पेशेंट को कंफर्टेबल फील हो, उसको वैल्यूड फील हो, उसको टॉप प्रायोरिटी पे रखा जाए, एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ट्रेन्ड स्टाफ हो और सर्विसेज काफ़ी क्विक होनी चाहिए, क्योंकि आज का दौर ऐसा है जहां हम सब के पास बीमारी के दौरान तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता. वैसे मैंने एक सवाल और भी इम्पॉर्टेंट किया था जो मुझे अभी याद आ रहा है, क्वालिटी कंट्रोल के हवाले से. जी हाँ, और इस पर भी हमारे गेस्ट ने बताया कि क्वालिटी कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है और सर्टिफाइड सप्लायर से मेडिसिन लेते हैं, प्रोडक्ट्स की अथेंटिसिटी हर हाल में इंश्योर की जाती है. ये उनके लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो डायरेक्टली उनका ताल्लुक जो है हेल्थ से है, तो किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज हो ही नहीं सकता. अच्छा, कस्टमर फीडबैक की अगर मैं देखूँ बात करूँ तो हालांकि ये भी सवाल मुझे पूछना चाहिए था, बट आई जस्ट मिस्ड इट. बट मुझे लगता है कि पता नहीं किस तरह से लोग इस फीडबैक को लेते होंगे या कोई देता भी है कि नहीं देता है, बट हाँ अगर सेटिस्फाइड नहीं होता होगा तो जरूर देता होगा. और एक चीज और मुझे यहाँ पर दोस्तों याद आती है, वो है इंडस्ट्री ट्रेंड्स. ये सवाल भी मैंने किया जिस पर हमारे गेस्ट का कहना था कि फ्यूचर में ना डिजिटल हेल्थ केयर और पर्सनलाइज मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. ऑनलाइन कंसल्टेशन और होम डिलीवरी सर्विस भी बढ़ रही हैं जो कि इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म भी कर रही हैं. ऐसे में एथिक्स का ख्याल रखना ये भी

0: बिजनेस की ग्रोथ के। एथिकल स्टैंडर्ड से कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहिए, क्योंकि आप हो सकता है थोड़ी देर के लिए कुछ पैसा बना भी लें, लेकिन आप अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट और वो भरोसा जो है ना वो खो बैठते हैं। तो बस पूरे इंटरव्यू में जितनी भी बातें हुई वहां से मुझे एक चीज समझ में आया कि फार्मेसी का जो बिजनेस है, जो दिखने में थोड़ा आसान लगता है, वो उतना आसान है नहीं। और फिर धीरे धीरे ये अपने तरीके से इवॉल्व भी हो रहा है। आज के दौर में एक सेक्टर जो है वो कम्युनिटी हेल्थ के लिए, अवेयरनेस के लिए और प्रिवेंशन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है। वहीं पर मिस्टर रहमान ने अपने सफर के जरिए दिखाया, बताया कि डेडिकेशन हो, हार्डवर्क हो, क्लियर विजन हो, तो आप किसी भी फील्ड में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। उन्होंने ये भी इम्फेसाइज किया कि बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने का जरिया नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों की लाइफ को बेहतर बनाने का भी जरिया होना चाहिए। सो ऑल टुगेदर मैं ये कह सकती हूँ कि ये इंटरव्यू एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी देता है कि हेल्थ केयर सेक्टर में काम करना सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं बल्कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फार्मेसीज आज के दौर में एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, जो कि सोसाइटी की वेलबीइंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं मिस्टर रहमान की बातें खास तौर पर उन लोगों के लिए इंस्पायरिंग है जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर हेल्थ केयर फील्ड में आना चाहते हैं। उनका फोकस क्वालिटी, ट्रस्ट और सर्विस पर है, जो किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस की बुनियाद है। आखिर में ये कहा जा सकता है कि अगर इसी तरह इनोवेशन, डेडिकेशन और कस्टमर केयर पर फोकस रखी जाए तो फार्मेसी सेक्टर मुस्तकबिल में और भी ज्यादा तरक्की करेगा और कम्युनिटी हेल्थ को बेहतर बनाने में एक स्ट्रॉन्ग रोल अदा करेगा। मुझे लगता है कि आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। मुझे यानी नाजिया और शहबाज अंसारी, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए एफएम 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन एफएम 107, दिल से।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आर यू रेडी? फ्राइडे 9 PM लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। सबसे जबरदस्त गाने, लेटेस्ट हिट्स और आपके

हर हफ्ते नए सरप्राइजेज और वो म्यूजिक जो बनाएंगे आपके दिन को और भी रॉकिंग। तो याद रखिए फ्राइडे 9 PM टॉप 10 सॉन्ग्स ऑफ द वीक विद आरजे कबीर ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी। दोस्तों कैंपिंग सीजन के लिए कैरेवन्स और ट्रेलर्स को टो करने के औकात समाप्त कीजिए। संडे से वेडनेसडे तक सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक, थर्सडे से सैटरडे तक सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बराए करम ऑर्बिटल हाईवे और उसकी एग्जिट का इस्तेमाल करें। राइट लेन में चलें और ओवरटेकिंग से बचें। और ये भी याद रखें कि खराब मौसम के दौरान टोइंग मना है। कैरेवन्स के लिए कुछ सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जिनको पूरा करना लाजिम है, इनमें शामिल है फायर एक्सटिंग्विशर की वैलिडिटी, ब्रेक्स और टायर्स की सेफ्टी, टोइंग व्हीकल के रेयर लाइटिंग का काम करना, रेयर रिफ्लेक्टर्स यानी रेड और साइड रिफ्लेक्टर्स यानी येलो की क्वालिटी, मैक्सिमम विड्थ 2.60 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड, मैक्सिमम लेंथ सिंगल एक्सल के लिए 3.5 मीटर्स है और डबल एक्सल के लिए मैक्सिमम लेंथ 4.20 मीटर्स हो सकती है इंक्लूडिंग द लोड। इसके अलावा कुछ और इकदामात का ख्याल करें, जैसे टोइंग करते वक्त अपनी और दूसरों की सेफ्टी का ख्याल रखें। कैरेवन्स या ट्रेलर्स के साथ सफर करते वक्त अपने रास्ते और स्पीड पर भी नजर रखें। अगर कैरेवन्स का लोड ज्यादा है तो उसे ठीक तरीके से बैलेंस करना जरूरी है। टोइंग के दौरान अपने ब्रेक सिस्टम को चेक करते रहें और टायर्स की कंडीशंस भी बराबर देखते रहें। टोइंग व्हीकल और कैरेवन्स की लाइट्स, रिफ्लेक्टर्स और इंडिकेटर्स का सही

0: आराम करना बेहद जरूरी है ताकि रात के वक्त या धीरे चलने पर किसी को कोई मुश्किल ना हो। वेदर कंडीशंस का भी ख्याल रखें। अगर मौसम खराब हो जैसे बरसात, धुंध या तेज हवाएं तो टोइंग करना मना है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे ए फॉर अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप खुद एक

0: आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: यू रेडी? लेकर आ रहे हैं आरजे कबीर, वो शो जिसका इंतजार रहता है सबको। टॉप 10 काउंटडाउन। ऑल राइट, द लिस्ट इज हियर भाई साहब, कागज लग गया है दीवार पे, आके सारे पढ़ लीजिए। आई फील लाइक रिजल्ट आया है। आओ जी, आओ रिजल्ट चेक कर लो, आपका गाना लिस्ट में है कि नहीं। वैसे बहुत सारे गाने जो है लिस्ट में आ गए हैं और बहुत सारे गाने जो है लिस्ट से बाहर जा चुके हैं। बहुत सारे पायदान चढ़े हैं तो बहुत सारे सांप सीढ़ी का खेल खेलते हुए नीचे भी आ गए हैं भाई, और कुछ तो लिस्ट से बाहर ही हो गए। तो आज की लिस्ट टॉप 10 की क्या होगी जानते हैं
1: मेरे आपके संवाददाता दोहा वाले कबीर के साथ।
0: So, जितने भी लोग ट्यून कर चुके हैं, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी, दिस इज टॉप 10। मैं हूं दोहा वाला कबीर एफएम 107 पे, एंड ये लिस्ट तैयार होती है जिसमें 10 गाने आप सुनते हैं जो बहुत ही चार्ट बस्टर्स हैं। उनके रीजन चार्ट बस्टर होने के बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि गाने के व्यूज कम है लेकिन गाना वायरल है, हो सकता है गाने का डांस नंबर बहुत बढ़िया है, स्टेप्स बहुत आगे जा रहे हैं, गाने के या तो व्यूज बहुत ही ज्यादा है जो आप इग्नोर नहीं कर सकते। मे बी यू डोंट लाइक द सॉन्ग बट द सॉन्ग इज अ हिट। सो सबके लिए सब कुछ है भाई शो में, सबके लिए सब कुछ है। और ये लिस्ट जो है हमने आपसे बात करके, आपकी मैसेजेस, हमारी टीम के मैसेजेस और ऑनलाइन रिसर्च करके तैयार किए हैं जो कि एफएम 107 पर गाने चल रहे हैं, तो उनको मिला जुला के अब लिस्ट में शुरू कर रहा हूं। सो हमारी लिस्ट आप जानते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम 10 एंड वी गो टिल द टॉप ट्रैक ऑफ दिस वीक। तो 10, 9 और 8 से शुरू करेंगे। गाना नंबर 10, ये अभी भी अपनी जगह पे बना हुआ है एंड आई एब्सोल्युटली लव द ट्रैक, बूम शाकलाका। ढांडा न्योली वाला और के एडोलेसेंट कृष्णा, दोनों ने भाई आग ला दी। मारे ढांडा भाई ने तो भाई रणवे में तो रैप किया है, मैंने कभी सोचा नहीं था भाई, कभी नहीं सोचा था कि ढांडा भाई का इतना बढ़िया रैप आ जाएगा। वैसे तो वो रैप बहुत बढ़िया करते हैं, इज मेलोडियस, इज वेरी वेरी क्रिएटिव एंड राइट नाउ ही इज माय फेवरेट, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन फास्ट रैप ढांडा भाई से सोचा नहीं था मैंने। तो कृष्णा डूइंग हिज थिंग, कृष्णा ने बहुत ही इंट्रिकेट रैप किया है, बहुत जबरदस्त डीप मीनिंग वाला रैप जो कृष्णा इसके लिए जाने जाते हैं। एंड ढांडा भाई ने भाई क्या रैप किया भाई, गति आग ला दी भाई, मौसम जमा दिया, मौज आ गए। बूम शाकलाका इज एट नंबर 10 इस गाने का, नॉट जस्ट द ऑडियो बट वीडियो भी बहुत बहुत कमाल का है। दोनों ने हरियाणवी फील में गाने को गाया है, रैप किया है, सारे पीछे हरियाणा के उसमें अटायर में है एंड दे आर जस्ट क्रेजी। मैंने कभी कोलैब सोचा नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि डांडा भाई और कृष्णा भाई एक दूसरे के साथ कभी गाने करने वाले हैं। हालांकि अब मैं समझ गया हूँ, मैंने एक डीकोड कर लिया चीज, अगर दो सेलिब्रिटी आपस में एक दूसरे के सोशल मीडिया पे कमेंट्स कर रहे हैं तो पक्का है कि ये दोनों साथ में काम करने वाले हैं। मैं बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा, ओनली फॉर सिंगर्स, ये सिंगर्स पे लागू होता है। जो सिंगर्स आपस में सोशल मीडिया पे एक दूसरे के फोटो के नीचे कमेंट कर रहे हैं, भाई साहब ये समझ लेना कि दोनों कभी कभी कभी ना कभी जाके कोलैब करने ही वाले हैं और वही हाल इनका भी हुआ है। तो कृष्णा भाई बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, डांडा भाई कमेंट कर रहे थे कृष्णा की वीडियो पे, एंड फाइनली इट्स हियर, बूम शाकलाका एट नंबर 10, डांडा भाई और न्यूली वाला, डांडा भाई न्यूली वाला नहीं, डांडा न्यूली वाला और कृष्णा दोनों एक साथ ऑन द सेम ट्रैक विच इज फायर। एंड नॉट जस्ट दैट, जैसे मैंने कहा ना आपको याद होगा सुनील चौहान और

0: कौन थी, श्रेया घोषाल, दोनों ही हमारी बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन सिंगर्स में से आती हैं। दोनों आपस से बात कर रही थी, देखा होगा आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे के फोटोज पे कमेंट करना, बाद में गाना आया नहीं आया, अब जरा नजर रखना कौन किससे बात कर रहा है, कोलैब होने वाला है भाई। फिलहाल तो ये धुआंधार कोलैब एट नंबर 10, बूम शाकलाका, डाना न्यूली वाला एंड केआर डॉलर साइन। आज अब अगले गाने पे जाते हैं। अगला गाना जी 9 नंबर पे है, एंट्री मारी है धमाल 4 के गाने ने। 2026 में धमाल 4 आएगी नहीं सोचा था मैंने, मगर बॉलीवुड का जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से कुछ भी हो सकता है। क्या चल रहा है? ट्रेंड चल रहा है भाई, क्यों यार मैं तंग आ चुका हूँ ये सीक्वल से। प्लीज बॉलीवुड प्लीज, ये तो बनाओ, मैं तो बना रहे हो तो बहुत बढ़िया बनाओ। मैं भी से मूवी को लताड़ूंगा नहीं कि मूवी बुरी है, मूवी जब आएगी तब देखी जाएगी, बट इट डजंट लुक दैट गुड। आई होप कि मूवी काम कर जाए, बट देखी जाएगी। गाना हालांकि चल गया, इसका गाने का नाम है कहर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिनका डांस बहुत बढ़िया लगा, डांडा भाई को, डांडा भाई कह रहा हूँ वापस 10 पे चला गया जिनका डांस बहुत बढ़िया लगा गुरु रंधावा को, और उन्होंने उन्हें मौका दिया कि वो इस गाने में परफॉर्म करें। हालांकि इससे पहले वो एक और गाने में परफॉर्म कर चुकी हैं और बहुत जबरदस्त किया था। तो कहर और उस इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का मैंने क्यों जिक्र किया, क्योंकि ओरिजिनल गाना, ओरिजिनल कह रहा हूँ, माइंड कीजिएगा मेरी बात को, कतल जो गुरु रंधावा ने गाया था, तेरी आंख कतल, वो गाना कहर के म्यूजिक सेम है भाई, एकदम सेम है भाई, लिरिक्स बदल दिए भाई ने, कहर कहर कतल कतल।
1: बॉम्बे तू बॉम्बे तेरा शहर कुड़ी, शहर कुड़ी, कहर कुड़ी।
0: आई नो सुनने में राइम नहीं कर रहा है, लेकिन जब आप बीट पे सुनेंगे तो एग्जैक्ट सेम लगेगा। हालांकि गाना बहुत बढ़िया है, इट इज एट नंबर 9 फ्रॉम द मूवी धमाल 4, एंड देखते हैं कि इस गाने के बाद क्या मूवी को थोड़ा पुश मिलता है, क्योंकि गाने बहुत हेल्प करते हैं पर डायरेक्टर्स जाग नहीं रहे हैं। अगर उनको समझ में आ जाए कि गाने मूवी को कितना पुश कर सकते हैं, स्पेशली जब वो सॉन्ग्स एडऑन्स ना हो, मूवी के अंदर हो एंड बहुत अच्छे से फिल्माए जाए तो बहुत कमाल हो सकता है। We have seen the example with Sayyara. Every song has a meaning. Every song was put in a situation. I hope कि movies ये करना शुरू करें। I know I'm praising Sayyara, लेकिन भाई जहां तारीफ बनती है वहां बनती है। तो मूवी के प्रोग्रेशन के साथ जब गाने आते हैं तो मजा आता है। I don't know ये कहर मूवी के अंदर कब आएगा। I just hope के टाइम पे आए और अच्छे से आए। So कहर by गुरु रंधावा from धमाल 4, which is a slight copy of कतल, the same track. The same singer actually, Guru Randhawa, is at number 9 on the list. अब number 8 पर जाते हैं। Number 8 पे again एक और sequel. अजय देवगन अक्षय कुमार के हाथ को थोड़ा रोको भाई, ये लोग बहुत आगे जा रहे हैं सीक्वल के मामले में। मैं पिछली मूवीज अगर उठा के देखूं तो सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही करे जा रहे हैं। अजय देवगन ने तो सारी हदें क्रॉस कर दी हैं। अक्षय कुमार फिर भी थोड़े काबू में है, पर वो भी सीक्वल्स के चक्कर में ही है। अभी एक और सीक्वल है वेलकम टू जंगल, जिसका ट्रेलर आपने देख लिया होगा, ट्रेलर में पूरी पिक्चर समझा दी गई है। बट गाने का क्या, एज एक्सपेक्टेड एक हिट गाना सबसे पहले मूवी का वेलकम का, वो इसमें आपको मिल जाएगा। गाने का नाम है ऊंचा लंबा कद, याद है ओरिजिनल ट्रैक, कटरीना कैफ अक्षय कुमार। That track has been brought to life yet again. मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, मुझे बॉलीवुड से पूरी पूरी उम्मीद है कि बॉलीवुड ये करता रहेगा जब तक उसके बस में है। So welcome to jungle, एक और sequel और एक और remake गाना पहली मूवी का, ऊंचा लंबा कद। लिरिसिस्ट ये बोलना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, जगाओ भाई लिरिसिस्ट को बॉलीवुड के, दे नीड टू वेक अप। अमिताभ भट्टाचार्य की जब जरूरत होती है वो कहां होते हैं यार, उनको कम से कम बुलाओ, आदमी लिख लेता है बहुत बढ़िया यार आज के जमाने में। बट नंदलेस ये गाना है एट नंबर 8, तो एक बार रिविजन कर लेते हैं। गाना नंबर 10 बूम शाकला का, डांडा न्यूली वाला और कृष्णा भाई। नंबर 9 पे कहर, कहर बेसिकली बाय गुरु रंधावा फ्रॉम द मूवी धमाल 4। 8वें नंबर पर है ऊंचा लंबा कद, वेलकम टू जंगल से। तो ये अभी तक की लिस्ट है, आगे आने वाली लिस्ट में हम सीधा पायदान भी चढ़ते चले जाएंगे 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। बट उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, और मैं दुहा वाला कबीर, जाना नहीं आपने स्टैचू।
2: FM 107 Top 10 Number 10।

0: FM 107 Top 10.
1: हाँ जी वेलकम बैक, मैं जी तो वाला कबीर एफ एम 107 पे। अस्सलाम वालेकुम फिर से जिन्होंने ट्यून किया है। आप थोड़ा सा लेट हैं, ज्यादा लेट नहीं है। 10, 9 और 8 ये पायदान हम बता चुके हैं हमारे टॉप 10 दिस वीक में। 10वें नंबर पर है बूम शाकलाका ढाणा न्योली वाला और कृष्णा भाई। नंबर 9 पे है कहर धमाल 4 से ये गाना। और नंबर 8 पे है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से एक और रीमेक। तो ये है अभी तक की लिस्ट। अब जरा आगे बढ़ने का वक्त आ गया है। एंड जो आगे हम बढ़ रहे हैं वो बढ़ेंगे हम 7, 6 और 5वें गाने के साथ। इन्होंने अपने पायदान को छोड़ा नहीं है, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। इस वाली लिस्ट में 7, 6 और 5वें नंबर पे वही गाने जो पिछले हफ्ते भी थे, बिकॉज दे डिजर्व टू स्टे। ओरिजिनैलिटी के इन्हें पूरे पूरे नंबर दिए भाई मैंने। एफर्ट के नंबर बनते ही बनते हैं और इनको तो बिल्कुल बनते हैं। तो 7वें नंबर पे अभी भी है आरजू आसिम अजहर का गाना। ओरिजिनल ट्रैक एंड ब्यूटीफुल वीडियो। जिस शादी के साथ आसिम अजहर काम कर रहे हैं और जिस तरीके से उनकी डिस्कोग्राफी बढ़ती जा रही है, आई विश हिम ऑल द लक ऑल द लव बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग म्यूजिक जो बहुत फ्रेश है। बॉलीवुड को सीखने की बहुत सख्त जरूरत है कि फ्रेश गाना कैसे बनता है। एंड आसिम अजहर इज डूइंग अ ग्रेट जॉब विद हिज डिस्कोग्राफी। आई कैन नॉट वेट। आसिम अजहर जो है बहुत काम करते रहते हैं लेकिन उनके मैंने सुना एल्बम का कोई अभी नहीं आता पता है। आई रियली होप कि आसिम अजहर एक एल्बम ड्रॉप करें। वी वॉन्ट एन एल्बम फ्रॉम आसिम अजहर। फिलहाल ये गाना आरजू विच इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रैक, एक किस्म का स्टोरी बोर्ड है गाने के अंदर, बहुत कुछ छुपा हुआ है एंड आई लव दिस। सो ये गाना है एट नंबर 7 वी फील के लिए, वाइब के लिए। अब नंबर 6 पर जाते हैं भाई साहब। नंबर 6 पे भी इन्होंने ही जगह बना रखी है। ये कह रहे हैं ये भी मेरा चित भी मेरी पट भी मेरी। तो नंबर 6 पर जो गाना है वो भी आसिम अजहर का ही है, तू है वही।
2: तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा।
1: अब ब्यूटीफुल ट्रैक, अब वायरल ट्रैक। कुछ लाइनें इसकी बहुत बहुत फेमस हुई हैं, लोगों को बहुत पसंद आया है गाना। एंड जिस हिसाब से आर्ट वर्क और एनिमेशन पे काम किया जा रहा है गानों की वीडियो बनाने के लिए, उसके पूरे पूरे 100 नंबर में देता हूँ। द कवर आर्ट ऑफ दिस सॉन्ग, द मेलोडी, द लिरिक्स ऑफ दिस ट्रैक इज एब्सोल्युटली फायर। आसिम अजहर हैज डन इट अगेन एंड मुझे बहुत बढ़िया लगाना है। तू है भाई बहुत बहुत प्यारा गाना। आई थिंक इसका रीमेक जरूर बनना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूँ भाई, मैं तनिष बागची जाग गया मेरे अंदर का। बना दो भाई जिसका मर्जी हो रीमेक बनाने की आदत हो, ये गाना आसिम अजहर से खरीद लो, भारी मोटी रकम देकर बना डालो। और अब आ जाते हैं नंबर 5 पे। ये जो पायदान होता है बड़ा क्रिटिकल होता है क्योंकि इसके ऊपर टॉप 5 गाने है ना, ये सारे टॉप 5 गाने। तो यहाँ पे जो गाना होता है वो एक किस्म का बेंचमार्क होता है। इस गाने का अता पता नहीं होता अगले हफ्ते कहाँ जाएगा, लेकिन पिछले हफ्ते भी यहीं पे था और इस हफ्ते भी यहीं पर ही है। इसका नाम है पीछे तेरे, कुंवर भाई का गाना है। 2 मिनट का गाना है। आई वॉन्टेड के थोड़ा बड़ा गाना होता बट ठीक है, कोई बात नहीं, गाना बढ़िया बनाया भाई ने। तो कुंवर साहब का जो गाना है पीछे तेरे इज एट नंबर 5 ऑन टॉप 10 की लिस्ट। अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक, काफी सादे लिरिक्स हैं मगर बहुत इफेक्टिवली गाया है। क्या होता है जब आप किसी बीट पे गा रहे होते हैं, आप रैप कर रहे होते हैं, इतनी मुझे समझ आ गई है खुद भी लिख लिख के, जब तक आपकी डिलीवरी अच्छी नहीं होती, नो मैटर हाउ गुड द सॉन्ग इज, नो मैटर हाउ गुड द म्यूजिक इज, कोई फायदा नहीं है। आपकी डिलीवरी बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड 10/10 फॉर द डिलीवरी ऑन दिस ट्रैक कुंवर साहब की तरफ से। तो अब मैं जरा लिस्ट रिवाइज करूंगा। लिस्ट में ऐसा है कि नंबर 10 पे है बूम शाकला का ढाणा न्योली वाला और साथ में के आर डॉलर साइन। नंबर 9 पे है कहर फ्रॉम धमाल 4। नंबर 8 पे है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से। नंबर 7 पे है आरजू आसिम अजहर और नंबर 6 पर है तू है वही अगेन बाय आसिम अजहर। और नंबर 5 पे है पीछे तेरे बाय कुंवर साहब, जिसकी जैसे मैंने कहा डिलीवरी ऑफ द सॉन्ग इज जस्ट अमेजिंग। गा बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन फिर आपको उसमें अरिजीत सिंह, विशाल मिश्रा ये सब ढूंढने हो तो डिलीवरी पे देखिए। डिलीवरी तब आती है जब आप दिल से गाते हैं। दिस इज वन ऑफ दोस ट्रैक्स जो पता लग रहा है भाई आदमी ने मेहनत करी है। ओके ये सुनिए, वापस आते हैं और फिर जरा बढ़ते हैं आगे 4, 3, 2, 1 की तरफ। मैं दो हवाला कबीर एफ एम 107 पे, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर।
0: FM 107 Top 10.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: जेंजी की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है फोमो, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 मेरे यानी दोहा वाले कबीर के साथ, रहिए अपडेटेड हर मंडे शाम 7:15 से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
4: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र

0: से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है। गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट,
0: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप,
0: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन।
0: सुनिए समर स्पोर्ट्स ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: FM 107 Top 10.
3: वेलकम वेलकम, आ गए क्या गाने सुनने के लिए। मैं दोहा वाला कबीर आए FM 107 पे, एंड दिस इज टॉप 10 दिस वीक। गानों को रिवीजन हम कर चुके हैं, 10, 9, 8, 7, 6, 5 तक पहुंच चुके हैं और अब बारी है गाना नंबर 4 की। ये गाना भी भाई साहब कतई ढीठ बन चुका है और ये गाना भी हिलने का नाम नहीं ले रहा। ये गाना इसलिए है बिकॉज ये एक एक्सपेरिमेंटल ट्रैक है, शुभ भाई का गाना है, गाने का नाम है बाउंस। मैंने इसके इंटरव्यूज वगैरह देखे, इस गाने के पीछे कहानी जानने की कोशिश करी बिकॉज ये बड़े अनयूजुअल बीट्स पे गाया गया है। ऐसी बीट्स पर अक्सर लोग रैप भी करना पसंद नहीं करते हैं अगर आप एक नए रैपर हैं, टू बिकॉज टू रैप ऑन दीज बीट्स इज एब्सोल्युटली डिफिकल्ट। और शुभ भाई ने गाया है भाई, बाकायदा एक पॉप गाना इस पे बनाना जिस बीट पे ये गाना है, इट्स जस्ट अमेजिंग। ये आर्टिस्ट की ट्रू आर्टिस्ट्री को दिखाता है। एंड बाउंस का ना सिर्फ ये गाने की वाइब है बल्कि इसका वीडियो भी बहुत अच्छा है, आप जाके देखेंगे। सो एवरीबॉडी हैज डन हैज गिवन 100% ऑन दिस सॉन्ग एंड आई लव्ड इट। शुभ भाई के गाने बहुत सारे आते हैं, उनमें कई सारी बातें हैं, गाड़ियों की बातें होती हैं और मोहब्बत की बातें होती हैं, अक्सर रूठने की बातें होती हैं, पर बाउंस कुछ वाइब है। एंड आने वाले वक्त में इन्हें कुछ क्लब ट्रैक्स बनाने चाहिए बिकॉज आई थिंक शुभ की जो आवाज़ है वो अलग है, एक यूनिकनेस जो हमारे दूसरे सरदार में है, हमारे दिलजीत दुसांझ में है, वैसी कशिश और एक जो अलग पना है, यू नो, बताना बड़ा मुश्किल होता है, एक एक्स फैक्टर होता है किसी में जो आप समझा नहीं सकते, बट यू जस्ट लाइक इट। वो शुभ भाई के साथ और शुभ का ये गाना है एट नंबर 4 जिसका नाम है बाउंस। अब जरा बढ़ जाते हैं गाना नंबर 3 की तरफ। गाना नंबर 3 इज जस्ट अमेजिंग, ये गाना मैं बताना चाहूंगा आपको क्योंकि ये गाना अभी एंट्री मार चुका है कुछ वजूहात के चलते। इस गाने ने जो किया है वो बहुत कम गाने कर पाते। देखो आजकल जितने भी गाने आते हैं उनके हुक लाइंस को सुन के आपको लगता है कि ठीक है यार, रिपीट कर लूंगा कभी कभी, या आप मजाक उड़ा लेते हैं हुक लाइंस का, लेकिन कुछ ऐसी हुक लाइंस होती हैं जिनको आप कभी भूल नहीं सकते। मैं क्या ना एग्जाम्पल दूंगा, मैं फैन हूं भाई तो एग्जाम्पल दूंगा, आवारापन का एग्जाम्पल लीजिए। जब ट्रेलर आया था आवारापन का, आपको गाना भले याद ना हो लेकिन आपको एक हुक लाइन याद हो गई थी, तो फिर आई वुड नॉट सिंग, आपका मूड नहीं खराब करूंगा, तो फिर आओ के जो हुक लाइन है, या तेरा मेरा रिश्ता पुराना, उसकी हुक लाइन है, दीज हुक लाइन्स वर अमेजिंग, पहले ही बार में आपको रट जाती है ना। वैसे ही इसकी हुक लाइन है जो आने वाला गाना जो नंबर 3 पे जगह बना चुका है। गाना है बढ़ जा तू मेरी, बढ़ जा भाई। ये गाना गाया चरणप्रीत भाई ने, मैं क्यों झूठ बोलूं, इससे पहले मैंने इन्हें नहीं सुना था। मैंने चरणप्रीत के साथ बादशाह भाई ने किया जी रैप। गाने के अंदर एक और खास बात है जिसकी वजह से नंबर 3 पर है। गाना तो बहुत ही बढ़िया है और हुक लाइन मैं कहता हूं महीनों के बाद कोई गाना ऐसा है जिसकी हुक लाइन इतनी बढ़िया है, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है ये, बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और हुक लाइन के साथ साथ इसमें जो डांस स्टेप है, जो एक बहुत खास डांस करती है, उनका नाम है आसी, आई होप इसी तरह उनका नाम प्रोनाउंस किया था, ASSI, शी हैज डन अ ग्रेट ग्रेट जॉब। मतलब यार इसका हुक स्टेप इतना वायरल हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया तक, गोरो तक पहुंच चुका है और गोरे भाई साहब इस गाने पे नाच रहे हैं, वो इस गाने पे डांस स्टेप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एवरीबॉडी इज इन ऑ ऑफ द ट्रैक। एंड आसी की खास बात ये कि वो हमेशा जो है अपना चेहरा छुपा के रखती हैं इन एवरी डांस वीडियो। इवन वो गुरु रंधावा के साथ थे तो भी उन्होंने अपना फेस छुपा के रखा था, एंड शी इज फेमस देन एनीवन एल्स जो चेहरा दिखा रहा होगा, मगर मेन मुद्दा चेहरा नहीं है, मेन मुद्दा काम है।

और काम बोलता है भाई। इस डांस स्टेप के साथ शी हैज बिकम वायरल, डांस हैज बिकम वायरल, द सॉन्ग हैज बिकम वायरल और गाने में वाइब है भाई। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो किसी और के गाने को कभी वाइब करते हुए डालते नहीं, उन्होंने भी इस गाने पे वाइब करते हुए बाकायदा वीडियोस बनाए। अच्छा एक फन फैक्ट इस गाने के बारे में, इस गाने की जो कोरियोग्राफर हैं उनका नाम दिव्या है, एंड दिव्या ने कोरियोग्राफी जब की, वैसे तो उन्होंने और भी गानों की कोरियोग्राफी करी है, लेकिन वो फेम नहीं मिल रहा था। अभी जब फेम मिला तो उनको 600 लाइक्स आए थे, बस लिटरली 600। आई कुड नॉट बिलीव ये कैसे मुमकिन है, मगर उन्होंने इस पे कैपिटलाइज किया, 600 भी कम नहीं है, और उन्होंने डांस क्लासेस शुरू कर दी है मुंबई, एंड नाउ शी इज टीचिंग दिस सेम स्टेप टू अ लॉट ऑफ पीपल। तो बन जा तू मेरी एक नॉर्मल गाना नहीं रहा भाई, अब ये वायरलिटी की एक और डेफिनेशन बन चुका है, और ये बिल्कुल बनता है इसका नंबर 3 पे रहना। चरणप्रीत का गाया हुआ हुक लाइन आप जरूर सुनिएगा, यू विल फॉल इन लव विद दिस सॉन्ग, एंड बादशाह भाई का रैप कतई कर रहा है भाई, कतई कर रहा है। इट इज जस्ट वो था ना, एक तो था दिल पे लगी, एक होता है दिल पे चीर दिया भाई, ये वो वाला रैप है और वो वाला गाना है। इट इज एट नंबर 3 ऑन आर लिस्ट, ठीक है सुन लो। ओके सो नाउ अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला गाना जो कि नंबर 2 पर है, अब ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए नंबर 2 और 1 डिसाइड करना, ये हमारी टीम में ही बहस हो गई थी, हमने कहा ये नहीं वो नहीं ये नहीं वो नहीं, बट डिसाइड कर लिया हमने। ये कागज क्या बताइए आपको, ये देखो दे रहा कागज, इस पे भाई साहब बाकायदा हमने पूरा सॉल्व किया है बैठ के, गणित लगाई है कौन सा गाना किस पे आना चाहिए। तो नंबर 2 पे जो गाना है वो नंबर 1 के पायदान से नीचे आया है, मगर ये भाई साहब रहेगा टॉप 5 टॉप 3 में रहेगा, बिकॉज ये गाना यूनिक है। नंबर 2 पे जो गाना है इसका नाम है माशूका, माशूका नहीं गाऊंगा सॉरी, ये बोल के गा देता हूँ फिर आपको तकलीफ हो जाती है। एनीवे शाहिद कपूर, कृति सैनन और रश्मिका, मूवी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा, मैं निशब्द हूं जो कि मूवी के क्या कर रहे हैं डायरेक्टर्स यार, मैं ना रह नहीं पाता, फिर भी रेंटिंग शुरू कर दूंगा। बट एनीवे मूवी को जरा कीजिए साइड, कॉकटेल 2 जैसी भी गई हो, मगर गाना बहुत बढ़िया। माशूका इज अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट ट्रैक, प्रीतम दा का संगीत है और अमिताभ भट्टाचार्य के लिरिक्स हैं। जैसे मैंने कहा था अमिताभ भट्टाचार्य राइट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट ट्रैक, जब वो अपनी पे आते हैं ना भाई तो वो फिर बहुत बढ़िया लिखते हैं, एंड राघव सी और साथ में है, और ये गाना भाई इंटरनेट पे फटा है, और क्या फटा है, लोगों को बहुत बहुत पसंद आया। ऑल द रीमिक्सेस और रीप्राइज वर्जन, ना जाने कौन कौन से वर्जन लोगों ने बनाए हैं, इसका एक प्रॉपर स्पेनिश वर्जन भी है, बट लिसन टू दिस वन बिकॉज ये बड़ा खास है, इसमें स्पेनिश भी आपको मिल जाएगी इन केस यू अंडरस्टैंड, बट ब्यूटिफुल ट्रैक, बिल्कुल बनता है इसका नंबर 2 पे आना, माशूका फ्रॉम द मूवी कॉकटेल 2। अब जरा एक रिविजन कर लेते हैं बिफोर वी मूव ऑन, तो रिवीजन बड़ा सिंपल है, नंबर 10 से लेकर नंबर 2 तक आता हूं फिलहाल में। नंबर 10 पे है बूम शाकला का ढांडा न्यूले वाला, नंबर 9 पे है कहर धमाल, नंबर 8 पे है ऊंचा लंबा कद वेलकम टू जंगल से, नंबर 7 पे है आरजू आसिम अजहर, नंबर 6 पे है तू है वही अगेन आसिम अजहर, नंबर 5 पे है पीछे तेरे कुंवर साहब का गाना, नंबर 4 पे शुभ विद बाउंस, नंबर 3 पे है बन जा तू मेरी, एंड नंबर 2 पे है माशूका, और अब वक्त है नंबर 1 गाने। तो अभी थोड़ी आगे बताते हैं, जाइएगा नहीं, स्टे ट्यून्ड FM 107।

0: FM 107 Top 10.
1: Welcome back. Assalamualaikum. मैं दुआ वाला कबीर FM 107 पे and it's time to reveal the track, number one track, जो कि FM 107 की top 10 की लिस्ट में टॉप कर रहा है. हर गाने के लिए मुश्किल होता है जगह बनाना. कुछ गाने अपनी वायरलिटी के चलते, कुछ गाने अपने व्यूज के चलते, कुछ गाने कंट्रोवर्सी के चलते, कुछ गाने अपने हुक लाइन के चलते, कुछ गाने इसलिए क्योंकि आपको पसंद थे, कुछ गाने हमें पसंद थे इसलिए लिस्ट में आ गए. मगर अगला जो गाना है ये लिस्ट में आया है और लिस्ट में भाई सब सीधा पहले पायदान पे है अपने नॉस्टैल्जिया के चलते. एक और गाना है इसी मूवी का, मैंने लिस्ट में उसे इसलिए रखा बिकॉज दैट इज क्वाइट अ डिफरेंट ट्रैक. उसको मैं अगले हफ्ते लिस्ट में शामिल करूंगा. उस गाने को ये मत सोचिएगा कि लिस्ट से बाहर कर दिया, यूं समझ लीजिए कि उस गाने के लिए नंबर नहीं मिल रहा था. वो गाने का नाम अभी नहीं लूंगा, वो भी कॉकटेल से ही है. मगर ये गाना एट नंबर वन इट इज बंधु 2.0. कॉकटेल 2 का ये गाना प्योरली बेस्ड ऑन नॉस्टैल्जिया. बड़ा जरूरी था कि कोई गाना हमारे नॉस्टैल्जिक दिमाग के अंदर जो है थोड़ी सी खुजली पैदा करे, हमें वो चीजें याद आए. अब मूवी से तो याद आएंगी नहीं बिकॉज अपेरेंटली बॉलीवुड कैन नॉट क्रिएट सीक्वल्स अगेन. कितना क्रिटिसाइज करोगे कबीर साहब, बट द फैक्ट रिमेन्स मूवी भले आपको नॉस्टैल्जिया ना दे पाए, ये गाना आपको नॉस्टैल्जिक जरूर फील कराएगा. यू रिमेम्बर दोस डेज जब आपने कॉकटेल की शायद टिकट बुक करेंगे. मैं अपना बता देता हूँ, आई बुक माई टिकट फॉर कॉकटेल सुबह के वक्त तकरीबन 9:30 बजे का शो था. 65 रुपए का टिकट आता था हमारे यहाँ, ठीक है, सुबह सुबह के शोज का जो अर्ली मॉर्निंग हुआ करते थे 11 बजे से पहले पहले वाले. मैंने भाई जाके ये इसका शो देखा.

था कॉकटेल का अपने तीन दोस्तों के साथ, और हमने जो पार्टी करी थी भाई, मौज आ गई थी उस मूवी को देख के. और जब ये गाना आया था, इट वॉज अ ब्यूटिफुल ट्रैक देन एंड नाउ. तो बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2 इज एट नंबर 1 ऑन द लिस्ट एंड वेरी वेल डिजर्व्ड बाय द वे. पर इसी के साथ साथ इजाजत तो लूंगा आपसे, पर आप भी अपने गाने बताइए. आपको लगता है कोई गाना ऐसा है जो लिस्ट में आना चाहिए, एंड एनी सॉन्ग दैट यू फील के लिस्ट में आने के लायक है या मिस आउट हो गया हमसे. क्योंकि एक गाना है वो मैंने जानबूझ के मिस आउट किया, क्योंकि मुझे उसके लिए पायदान नहीं मिल रहा है. गाना बहुत अच्छा है, गाने का नाम ले दूंगा, ले देता हूँ, वल्ला वल्ला गाने का नाम है, ब्यूटीफुल ट्रैक. ये मत सोचिएगा कि लिस्ट से बाहर है वो, जैसे अभी उसको मैंने साइड में रखा हुआ है वो बहुत बढ़िया ट्रैक. बट आपके जहन में कोई ट्रैक हो या आपके आसपास कोई सुनता हो जो आपको कैच हो गया, आपके कान में लगा अरे भाई ये कौन सा ट्रैक है, तो बताइएगा जरूर. सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 कतर, FM107 कतर हम इस नाम से मौजूद हैं. अगर आप मुझे ढूंढना चाहें, आवाज और शक्ल को मिलाना चाहें, सो दोहा वाला कबीर इस नाम से आपको मिल जाऊंगा. प्लीज प्लीज प्लीज मुझसे भी जुड़े, मुझसे भी बतिया लिया करें, अच्छा लगेगा मुझे भी. एंड दिस इज दोहा वाला कबीर साइनिंग ऑफ. अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप बेहद बेहद जरूरी है. माशाल्लाह. FM 107 Top 10 Number 1.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
2: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
3: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से। तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए। प्रोग्राम दोहा डायरीज विद RJ सरवर मिर्जा। हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जवानी। हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद। मेरी पहचान, सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, मरहबा मरहबा मरहबा, आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है ऑन एफएम 107। मैं हूँ आपकी अमिता, आपके साथ। शो का नाम है मेरी पहचान, और आज मेरी पहचान में आज की बातों को शुरू करने से पहले मुझे लगता है कि आपसे ये सवाल पूछना जरूरी है। चाहे आप इस वक्त गाड़ी चला रही हो, किचन में काम कर रही हो, या ऑफिस डेस्क पर बैठकर एक हेडफोन्स के जरिए हमारा शो सुन रही हो, बस एक लंबी गहरी सांस लें और अपनी आंखें बस कुछ देर के लिए बंद करें और महसूस कीजिए कि इतने दिनों से जो आप काम करते आ रहे हैं, क्या वो लाइफ में ईजी लग रहा है, या फिर यू आर फीलिंग कि उफ काफी बोझ जैसा फील हो रहा है। अब धीरे से आंख खोलिए, फोन उठाइए, देखिए उन अनरेड मैसेजेस को, देखिए उन इनविटेशंस को, उन गैदरिंग्स के लिए जहां आपका जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था।

और उन रिक्वेस्ट को देखिए जो लोगों ने फेवर्स के नाम पर आपसे मांगी है, जिन्हें देखकर आपका दिल बैठ जाता है, यानी आपकी स्टमक एकदम से ना सिकुड़ जाती है। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो हर वक्त हमसे हमारा एक हिस्सा मांगती रहती है। सही कह रही हूँ ना? कभी हमारा वक्त, कभी हमारा तवज्जो और कभी हमारी खामोशी। पिछले हफ्ते हमने उस इनविजिबल ज्यूरी की बात की थी और वो था लोग क्या कहेंगे। ये वाला जो सिंड्रोम है जो हमारी पर्सनालिटी को दबा देता है, हम हमेशा इस डर में जीते आए हैं कि अगर हमने किसी की बात नहीं मानी तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, क्या ओपिनियन बनाएंगे। लेकिन जनाब, आज हम उस हथियार, उस वेपन की बात करेंगे जो आपको उस ज्यूरी से बचाएगा। ये एक बहुत ही टाइनी, दो अक्षरों का, दो अल्फाबेट्स का शब्द है जो सुनने में तो बहुत छोटा है, लेकिन जब इसे कहने की बारी आती है तो ये हमारे गले में एक भारी भारीपन जैसा महसूस कराता है। यस, एंड वो शब्द है नो, नहीं। हमने बचपन से सीखा है कि हाँ कहना अच्छी बात है, यस कहने वाले लोग सबके फेवरेट होते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस यस की कीमत क्या है? Why is it that कि we can say yes to everyone, but जब हमें नो कहना होता है अपने ओन पीस के लिए, अपने ओन रेस्ट के लिए, अपने सपनों के लिए, तो फिर क्यों हम कह नहीं पाते? आज मेरी पहचान पर हमारा पर्पस, हमारा मकसद है अपना वक्त वापस मांगने का, रिक्लेमिंग आवर टाइम। हम आज ये सीखेंगे कि नो कहना किसी दूसरे की इंसल्ट नहीं है, बल्कि ये खुद के लिए एक बहुत बड़ा यस है, एक अपने लिए बहुत बड़ा स्टैंड है।

जब आप किसी ऐसी चीज को नहीं कहते हो जो आपको अंदर से थका रही होती है ना, तो असल में आप अपनी मेंटल हेल्थ के लिए हाँ कह रहे होते हो, आप अपने सुकून को हाँ कह रहे होते हो। हमने खुद को ना इतना अवेलेबल बना दिया है कि लोग हमारी नो को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको लगता है अरे ये हमें कैसे ना कह सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन जनाब मेरी ब्यूटीफुल लेडीज, हमारी पहचान इस बात से नहीं होनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए कितना झुक सकते हैं या कितना अवेलेबल हो सकते हैं, बल्कि इस बात से होनी चाहिए कि हम अपने प्रिंसिपल्स पर कितने मजबूती से खड़े हो सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज आप मेरे साथ खुलकर बात करें और ये जो हमारा शो है, मेरी पहचान का ये जो प्लेटफॉर्म है, इस पर आप मुझे बताएं कि वो ऐसी कौन सी आखिरी चीज थी जिसे आपने यस कहा जबकि आपका दिल अंदर से नहीं नहीं नहीं कह रहा था। हाँ, आप शेयर कर सकती हैं 6622107 पर, 6622107 पर अपने नाम के साथ। यस, कि वो ऑफिस में एक एक्स्ट्रा शिफ्ट थी जो आपने सिर्फ इसीलिए की क्योंकि आप ना नहीं कह पाई जबकि आपको घर जाकर अपने बच्चों के साथ वक्त बिताना था, या क्या वो कोई फैमिली डिनर था जब आप थकान से चूर थी लेकिन आपने सोचा कि नहीं गई तो रिश्तेदार बुरा मान जाएंगे, या शायद कोई ऐसा उधार या लोन जो किसी ने आपसे मांगा और आपकी अपनी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी फिर भी आपने हाँ कर दिया। शेयर कीजिए अपने ये जो थॉट्स, अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ 6622107 पर अपने नाम के साथ, और हम यहाँ एक दूसरे की कहानियों से सीखेंगे कि कैसे ना कहना इम्पोर्टेंट है और कैसे ना कहना हमें चाहिए। याद रखिए, हर वो यस जो आप गिल्ट में आकर कहते हैं वो आपकी पहचान को ना कम करता है। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट कि हम ना कहना भी सीखें, ठीक है। तो आगे इस पर थोड़ी डिटेल डिस्कशन होगा, आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी।

वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं एफएम 107. मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ और शो का नाम है मेरी पहचान. और अब हम बात करेंगे आज की सोच के बारे में. हाँ, मैं आपसे एक बहुत ही कड़वा सच शेयर करने जा रही हूँ. हम सबके अंदर एक मशीन चलती रहती है. नहीं, मैं किसी रोबोटिक मशीन की बात नहीं कर रही. मैं बात कर रही हूँ उस पीपल प्लीजिंग मशीन की जो हम बचपन से अपने अंदर फिट कर लेते हैं. सोचिए जरा, हमें कैसे बड़ा किया जाता है. हमें अच्छी बेटी बनाने की तालीम दी जाती है, वो बेटी जो कभी सवाल नहीं करती. हमें समझदार बीवी बनने को कहा जाता है, वो जो हर बात पर सर झुका लेती है और कहती है हाँ हाँ ठीक है. और हेल्पफुल बहू, ओ हो, वो जो थककर चूर हो जाए पर ना ना कहे. हाय हाय हाय, हमारी तहजीब में, हमारे कल्चर में ना कहने को बदतमीजी, या यूं कहें सेल्फिशनेस, या यूं कहें एरोगेंस, ये समझा जाता है. हमें लगता है कि अगर हमने किसी की बात टाल दी तो हम बुरे इंसान बन गए. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस अच्छे इंसान बनने की दौड़ में हम कहाँ खो गए हैं? हम एक पीपल प्लीजिंग मशीन बन गए हैं जो सिर्फ एक्सटर्नल वैलिडेशन के फ्यूल पर चलती है. हमें लगता है कि जब दूसरे हमें अच्छा कहेंगे तभी हम अच्छे हैं. बिल्कुल नहीं. जरा एक तस्वीर सोचिए, इमेजिन कीजिए, आप पूरे दिन काम करके थकी हुई हैं, आपका सर दर्द से फटा जा रहा है और तभी किसी दूर के रिश्तेदार का फोन आया है कि उनके घर डिनर पर जाना है. अब आपका मन कह रहा है नहीं भाई, नहीं हो पाएगा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन आपकी जुबान से निकल जाता है जी बिल्कुल हम पहुंच जाएंगे. जब आप उस थके हुए और वो कहते हैं ना बिल्कुल रेस्टलेसनेस में अपने मन को मार कर जब वहां पहुंचती हैं, तो क्या आप सच में वहां मौजूद होती हैं? क्या आप वहां खुशी बांट रही होती हैं? नहीं ना, आप वहां एक फेक वर्जन लेकर जाती हैं अपना. हाँ, वहीं बैठी रहती हैं, पोलाइटली बात कर रही होती हैं और नजर से नजर मिला रही होती हैं, सर में दर्द हो रहा होता है, आप गोली खाकर बैठी होती.

नहीं करेंगे। लेकिन सच तो ये है कि अगर आप खुद को पसंद नहीं करोगे तो पूरी दुनिया की पसंद आपके लिए बेमानी सी हो जाएगी। सस्टेनेबिलिटी सिर्फ हमारे जो कहते हैं ना एनवायरनमेंट के लिए नहीं होती, सस्टेनेबिलिटी हमारी अपनी एनर्जी के लिए भी बहुत जरूरी है। आप कब तक खुद को जलाकर दूसरों के घर में रोशनी करेंगे? एक दिन आपकी अपनी जो आग है, यूं कहें अपनी बत्ती जो है, वो भी बुझ जाएगी, तब क्या करेंगे? बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि अमिता, अगर हमने बाउंड्री सेट कर दी तो लोग हमें घमंडी कहेंगे, हम अकेले रह जाएंगे। वेल, बाउंड्री सेट करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों को रोकने के लिए एक दीवार बना रहे हैं। नो नो नो नो, बाउंड्री तो एक गेट की तरह होती है, एक ऐसा गेट जिसके गार्डियन आप होते हैं। आप तय करते हैं कि आपके इस सेक्रेट स्पेस में, आपकी मेंटल शांति में कौन आएगा और कौन नहीं। जस्ट याद रखिए कि अगर आपकी हर हाँ सिर्फ गिल्ट से निकल रही है तो ये एक ऐसा डेट है या कर्ज है जो आपको अपनी मेंटल हेल्थ से चुकाना पड़ेगा। और मेंटल हेल्थ का कर्ज इतना महंगा होता है भाई, मैं आपको बता रही हूँ, उसे चुकाते चुकाते जिंदगी गुजर जाती है। और हम जो सेल्फ केयर की बात करते हैं ना, वो कभी भी हम नहीं कर पाते, और सेल्फ प्रिजर्वेशन तो फिर भूल ही जाइए। वेल, अभी अभी हमारे पास एक मैसेज आया है और मैंने आपसे पूछा था ना कि कौन सी वो चीज है जिसके लिए आपको ना कहना था लेकिन आपने हाँ कह दिया। तो यहाँ पर आफरीन मुझे लिखती है कि अमिता, आपकी बातें सुनकर तो एकदम मेरा दिल भर आया, और बस मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि अगर मैंने ना कहना शुरू कर दिया तो मेरे बरसों पुराने रिश्ते टूट जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। ओफो आफरीन, मेरी बात बहुत गौर से सुनिए और आप सब भी सुनिए। आफरीन जैसा महसूस करती है, जो रिश्ता एक ना सुनने की हिम्मत नहीं रखता, जो रिश्ता आपकी थकान की कदर नहीं कर सकता, वो रिश्ता शायद पहले से ही बहुत कमजोर है। आप समझ रही है, बाउंड्रीज रिश्तों को तोड़ती नहीं है आफरीन, बल्कि उन्हें गहरा और क्लियर बनाती है। जो आपसे वाकई मोहब्बत करते हैं वो आपकी ना के पीछे मतलब बिल्कुल वो फील समझ पाएंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई ना कहा है तो मतलब हमें इंसल्ट कर रही है, बल्कि वो ये समझ पाएंगे कि शायद कोई वजह होगी कि जिसकी वजह से आफरीन ने ना कहा। हम बाकी लिसनर्स के मैसेजेस भी लेंगे और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक बहुत ही सुकून भरे सॉन्ग का जो कि आपके सामने आ रहा है। सो डोंट गो एनीवेयर, बने रहिए FM 107 पर, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शब्द की जो हमारी जिंदगी बदल सकता है एंड दैट इज नहीं या फिर नो। क्या आपने कभी गौर किया है, अक्सर हमें बिना किसी वजह के सर दर्द रहता है, हाँ, या फिर हमारे कंधों पर गर्दन में हमेशा एक तनाव एक स्टिफनेस महसूस होती रहती है। हम रात को 8 घंटे सोते हैं लेकिन सुबह जब उठते हैं, मतलब स्पेशली जो लोग लंबा सो पाते हैं और सुबह उठते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई काम करके आया है, मतलब वो थकान वो दर्द वो महसूस ही होता रहता है। हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने दिल से पूछा है कि ये दर्द कहाँ से आ रहा है? दिस इज बर्न आउट। यस, आपका जो शरीर है वो आपसे प्रोटेस्ट कर रहा है, ये आपके जिस्म की पुकार है उन बाउंड्रीज के लिए जो आपने कभी सेट ही नहीं की। जब हम अपने मन को ना कहने से रोकते हैं ना, तो हमारा शरीर उस बोझ को उठाने से इनकार कर देता है। कतर में रहना हमें बहुत अच्छा लगता है लेकिन हमारी जो सोशल लाइफ है वो बहुत वाइब्रेंट और खूबसूरत होती है और एक ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर हमें मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है और हमें लगता है कि हर जगह हाजिर होना हमारी जिम्मेदारी है। हमें डर लगता है कि अगर हम नहीं कहेंगे तो लोग कहेंगे देखो कितना ज्यादा घमंड है, या ये तो हमेशा ना ही कहते हैं या तो अपनी ही चीजों के बारे में सोचते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, किस कीमत पर हम हाँ कहेंगे जब हम एक्चुअली स्ट्रगल कर रहे होते हैं? अपने सुकून की कीमत पर, अपनी नींद की कीमत पर? हम सिर्फ अटेंडेंस लगाने के लिए जाते हैं जबकि हमारा दिमाग घर के कामों में या अपनी थकान में उलझा होता है। हम वहां फिजिकली होते हैं पर मेंटली एब्सेंट होते हैं। तो ब्यूटीफुल लेडीज, ये एक तरह का धोखा है। ये उन लोगों के साथ भी धोखा है जिनसे आप मिलने गए हैं और सबसे बड़ा धोखा आपके अपने साथ है। हाँ जी, मुझे फिल्म डियर जिंदगी का वो सीन बड़ा खूबसूरत लगता है जब शाहरुख खान आलिया को बैठा कर समझा रहे होते हैं कि हम हमेशा मुश्किल रास्ता क्यों चुनते हैं, जरूरी है क्या? कभी कभी आसान रास्ता चुन लेना चाहिए, इट्स जस्ट ओके। हमने दिमाग में ये बैठा लिया है कि अच्छा इंसान वही है जो सबके लिए हर वक्त अवेलेबल हो। हमने ना कहने के रास्ते को मुश्किल बना दिया है क्योंकि हमें लगता है कि हमें सबको खुश रखना है। लेकिन ब्यूटीफुल लेडीज, सबको खुश रखना हमारा मकसद हमारा गोल नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए एक हेल्दी जिंदगी जीना। कभी कभी घर पर रहकर आराम करना या किसी इनवाइट को प्यार से मना कर देना वही आसान और सही रास्ता होता है। इट्स ओके टू चूज योरसेल्फ। इसका एक और बहुत कड़वा पहलू है, एक एस्पेक्ट है, जब हम बाहर वालों को या दूर के रिश्तेदारों को ना नहीं कह पाते हैं ना, तो बताए क्या होता है, हम वो सारी थकान और जो चिड़चिड़ापन है वो भी लेकर उनके घर चले जाते हैं और हम बाहर तो जी बिल्कुल कह देते हैं लेकिन घर आकर वही गुस्सा अपने बच्चों पर निकाल देते हैं। वो निकलता ही है, आप माने या ना माने। हम अपने पार्टनर्स के साथ कोल्ड बिहेवियर नहीं कर पाते हैं, हमको लगता है क्या हो रहा है। तो आपने सोचा क्यों होता ये? क्योंकि हमारी एनर्जी खत्म हो चुकी होती है, हमने अपना सारा पेशेंस बाहर वालों को प्लीज करने में खर्च कर दिया होता है। ना खुशी एक ऐसा जहर है जो हम खुद भी पी रहे होते हैं और उम्मीद कर रहे होते हैं कि उसका असर दूसरे पर ना हो, पर ये तो इम्पॉसिबल है कि दूसरे पर उसका असर होता ही है। जब आप किसी डर की वजह से हाँ कहते हैं ना, तो आपके अंदर उस इंसान के लिए नफरत पैदा हो जाती है। क्या आप ऐसे रिश्ते चाहते हैं जो जहर पर टिके हो? नहीं ना। बाउंड्री वो दीवार नहीं है जो लोगों को दूर करती है, बाउंड्री वो ब्रिज है जो रिश्तों को सेहतमंद और मजबूत बनाता है। जब आप साफ तौर पर अपनी लिमिट बता देते हो ना, तो लोग आपकी कद्र करते हैं और नहीं करते उस वक्त तो धीरे धीरे करना सीख जाते हैं। एक पुरानी कहावत है, यू कैन नॉट पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। आप खाली प्याले से किसी को कुछ नहीं पिला सकते। सोचिए अगर आपका अपना कप खाली है और आपकी अपनी मेंटल हेल्थ डाउन है, तो आप अपने बच्चों को अपने परिवार को क्या देंगे? सिर्फ थकान और गुस्सा? पहले अपना प्याला भरिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए, अपने आप को वक्त दीजिए, और वो प्याला भरने का रास्ता सिर्फ एक ही है, ना कहना, नहीं कहना। यस, ये कहने की हिम्मत अपने अंदर लाइए, क्योंकि जब आप गलत चीजों को नो कहेंगे तभी आप सही चीजों को यस कह पाएंगे। हाँ जी, अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का और उसके बाद हमारी बातों को हम कंटिन्यू करेंगे, तो कहीं ना जाए, बने रहे FM 107 पर, दिल से देसी।

वेलकम बैक. बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर. मैं हूँ आपकी अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं शो मेरी पहचान. हम पहुंच गए हैं आज के सफर के उस मोड़ पर जहां हमें आईने में खुद को देखना है. यस, क्या आपने कभी सोचा है कि उस हर हाँ के पीछे जो आपने डर या गिल्ट में कही है उसमें कौन सी औरत छुपी हुई है? मैं उसे कहती हूँ छुपी हुई मैं. वो असली आप जो शायद इस दिखावे और लोगों को खुश करने के बोझ के नीचे कहीं दब गई है. हमने इतने मास्क पहने हुए हैं ना कि हम भूल गए हैं कि हमारा असली चेहरा कैसा दिखता है. वो छुपी हुई मैं कौन है? वो शायद वो ब्यूटीफुल लेडी है जो सैटरडे की रात किसी शानदार पार्टी में जाने की बजाय अपने घर के सुकून में बैठकर एक पुरानी किताब पढ़ना चाहती है. वो शायद वो प्रोफेशनल है जो 5 बजे अपना लैपटॉप बंद करके कॉर्निश पर जाकर ढलते सूरज को देखना चाहती है, ना कि किसी और का काम अपने सर लेकर रात तक ऑफिस में बैठना चाहती है. वो शायद वो माँ है जो एक दिन थक कर कहना चाहती है, आज मैं खाना नहीं पकाऊंगी, आज मुझे किचन से छुट्टी चाहिए, मुझे आज सिर्फ थोड़ा वक्त अपने लिए चाहिए. ये रियलिटी है, लेकिन हम इस हकीकत को छुपा देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमने अपनी जरूरत बताई तो हम बुरे बन जाएंगे. याद रखिए, जब आप उन चीजों को ना कहना शुरू करते हैं जो आपकी एनर्जी निचोड़ लेती है, आपको ड्रेन कर देती है, तभी आप उस औरत से दोबारा मिलते हैं जिसके पास खुशी के लिए एनर्जी बची होती थी. हाँ, कब तक आप दूसरों की स्क्रिप्ट पर चलोगे? हाँ, स्टॉप बीइंग अ कैरेक्टर भाई. आप अपनी मूवी की हीरोइन हो. हाँ, आप दूसरों की फिल्म में सिर्फ एक सपोर्टिंग एक्टर बनकर रह गए हो, लेकिन आप भूल गए हो कि आप खुद अपनी फिल्म की हीरोइन हो, अपनी फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर हो और अपनी ही फिल्म की डायरेक्टर हो. आप तय कीजिए कि आपकी जिंदगी की कहानी कैसी लिखी जानी चाहिए. आप तय कीजिए कि आपका वक्त और आपकी मोहब्बत किस पर खर्च होनी चाहिए. जब आप नो कहते हैं तो आप एक्चुअली अपनी सेल्फ वर्थ को यस कह देते हैं. आप अपनी पर्सनालिटी को दोबारा तराश रहे होते हैं और वो छुपी हुई मैं जो दब गई थी उसे बाहर आने की इजाजत मिल जाती है. उसे सांस लेने दीजिए. देखिए, जब वो खुश होगी ना तो आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी. अब चलिए कुछ टिप्स की तरफ चलते हैं. हाँ जी, और वो टिप्स क्या है जो आपकी लाइफ का गेम चेंज कर देंगी? नो इज अ फुल सेंटेंस. हाँ, हमें आदत है कि जब हम मना करते हैं ना तब हम 10 मिनट का लंबा बहाना एक्सक्यूज दे देते हैं कि भाई नो हम नहीं कर पाएंगे या नहीं हो पाएगा, एंड देन ला ला ला ला ला ऐसे करके हम लंबी चौड़ी बातें कर देते हैं. सिर्फ इतना काफी है नो कहना, नहीं कहना, मैं इस बार नहीं आ पाऊंगी, यार याद करने के लिए शुक्रिया, बस आपको सफाई देने की जरूरत ही नहीं है. फिर 24 आवर बफर. अगर कोई आपसे कोई फेवर मांगे या कहे या कहीं बुलाए तो तुरंत हाँ मत कीजिए. कहिए मुझे अपना कैलेंडर चेक करने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कल बताती हूँ. इससे आपको प्रेशर भी नहीं होगा और सोचने के लिए स्पेस भी मिल जाएगा. एंड देन प्रायोरिटी चेक. यस, आपकी एनर्जी एक लिमिटेड रिसोर्स है, इसे सिर्फ उन लोगों पर खर्च कीजिए जो आपकी नो की कद्र करते हैं. आया समझ? अब एक मैसेज आया है हमें जुनैरा का. वो कहती है कि जब भी वो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मना करती है या ना कहती है तो अक्सर लोग उन्हें लुक्स देते हैं और कहते हैं कि यार तुम्हारा तो हमेशा का ही ये है. जस्ट इमेजिन अगर ऐसी सिचुएशंस हमें सुनने को मिल रही है तो वो फ्रेंडशिप, वो सर्कल हमारे किस काम का? हमें मैसेज आया है सबा का. वो कह रही है कि अमिता ना तो कहना जैसे मेरी डिक्शनरी से डिलीट ही हो गया है, क्योंकि चाहे वो मेरा घर हो, चाहे इन लॉज हो, चाहे फ्रेंड सर्कल हो, चाहे सोशल गैदरिंग हो, अगर मैंने ना कह दी तो ऐसा हो जाता है कि मेरे घर वाले कहते हैं कि तुमको तो बड़ी ना की पड़ी है, तुम्हें बाकी लोगों की नहीं पड़ी. देखिए, मैं इन मैसेजेस के जरिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि आपने अगर अपने आप की कद्र नहीं की तो दुनिया जो है ना वो तो तमाशे के लिए ही है, वो फिर आपकी कद्र कभी नहीं कर पाएगी. और अगर आपने आज अपने आप को लोगों को प्लीज करने में पूरी तरह से सैक्रिफाइस कर दिया तो आगे आपको ही पछतावा होगा. आई होप ये बात आप जरूर समझेंगी. तो लेडीज, इस हफ्ते का चैलेंज क्या है? मेरा चैलेंज आपके लिए ये है कि एक चीज को ना कहिए, कोई भी एक चीज को ना कहिए, ठीक है?
चाहे वो कोई अनवांटेड कॉल हो या कोई एक्स्ट्रा काम हो या कोई ऐसी गैदरिंग हो जहां आपका दिल नहीं लग रहा, माफी मत मांगिए, बिल्कुल आराम से अपनी बात कहिए। देखिए, दुनिया खत्म नहीं होगी लेकिन आपका सुकून जरूर शुरू हो जाएगा। आइडेंटिफाई कीजिए उन एनर्जी ड्रेनर्स को जो आपको थका देते हैं और वहां बाउंड्रीज सेट कीजिए। एक मीनिंगफुल यस कई गिल्ट वाले यस से बेटर होता है, ठीक है। तो जाने से पहले अगले हफ्ते के बारे में भी मैं बता जाती हूँ कि अभी हमने बात करी कि ना कैसे कहना है, नहीं कैसे कहना है, अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बचाना है। अब अगले हफ्ते हम बात करेंगे कि कंपैरिजन ट्रैप, उफ, ये सोशल मीडिया के इस फिल्टर्स वाली दुनिया में जब हम दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी असलियत भूल जाते हैं ना और दुखी होने लगते हैं, तब इस बात का जिक्र करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो मैं कहूंगी हमारी सारी सारी ब्यूटीफुल लेडीज, अगर आप हमारा शो मेरी पहचान पसंद कर रही हैं और आपको हमारे टॉपिक्स भी पसंद आ रहे हैं तो हमें फीडबैक जरूर दीजिए। 666-22-107 पर अपने मैसेजेस कीजिए और बताइए कि आप चाहती हैं कि इस तरह का टॉपिक भी हमारे शो पर आना चाहिए। तो आपके फीडबैक्स, आपके ओपिनियंस सर आंखों पर, और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स FM 107 पर भी जुड़ सकते हैं। तो जरूर जुड़े और अपनी आरजे अमिता को भी सोशल मीडिया पे आप ढूंढ सकती हैं। और अभी के लिए मैं कहूंगी कि मुझे दीजिए इजाजत, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा, आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले एपिसोड में। तो जाते जाते मैं कहूंगी हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar. दिल से देसी.
1: जिंदगी हर रोज नई कहानियां लिखती है, कभी वर्क प्लेस के बिजी दिन, तो कभी मॉल की भीड़ में छोटी सी मुलाकात, और कभी सफर के दौरान वो पहली मुलाकात जो बन जाती है याद, और ये यादें ही देती हैं हमें सुकून और एक खूबसूरत सा एस्केप अपनी बिजी लाइफ से. तो आइए और इस सफर का हिस्सा बनिए. प्रोग्राम दोहा डायरीज विद आरजे सरवर मिर्जा. हर प्रोग्राम में होंगे एक गेस्ट जिनके पास है एक कहानी, एक एहसास, उनकी जुबानी. हर सैटरडे शाम 7:15 ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी दोहा डायरीज, जहां हर कहानी बनेगी यादगार.
2: दोस्तों, आपका ट्रेन से मुताल्लिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है. हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं. आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं. कीप क्रॉसिंग क्लियर. ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें. इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है. ट्रैम वे लुक बोथ वेज. ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है. क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है. ट्रैम ओनली लेन. ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं. ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं. शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स. ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें. कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर. ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें. अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिली

0: चीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: तैयार हो जाइए एक बेमिसाल सफर के लिए, एक रेडियो शो जो आपको ले जाता है वक्त और स्पेस के हैरतअंगेज सफर पर। इस शो में आप डिस्कवर करेंगे तारीख और साइंस के सबसे बड़े राज, भूले हुए सिविलाइजेशंस, पुरानी टेक्नोलॉजीज जो वक्त के साथ खो गई, और कॉस्मिक मिस्ट्रीज जो आज भी साइंटिस्ट्स को हैरान कर रही हैं। हर एपिसोड एक दिलचस्प ऑडियो एडवेंचर है जो फैक्ट्स को रियलिस्टिक साइंस फिक्शन के टच के साथ प्रेजेंट करता है। अपनी क्यूरियोसिटी को जगाइए, इमेजिनेशन को बढ़ाइए और हमारे साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मजा लीजिए। आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसे शहर का सफर शुरू करने जा रहे हैं जो इंसानी तारीख का लाजवाब शाहकार है। नाम है मोहनजोदड़ो और इसका मतलब है मुर्दों का टीला। सुनकर थोड़ा हॉरर मूवी का फील जरूर आता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही जबरदस्त और एंशिएंट सिविलाइजेशन का मरकज था। साथियों, मोहनजोदड़ो को दुनिया की सबसे पुरानी और एडवांस्ड सिविलाइजेशन में गिना जाता है। ये शहर लगभग 4500 साल पुराना है। जब दुनिया के बहुत से ममालिक में लोग अभी भी लकड़ियों की जुगियां बना रहे थे, मोहनजोदड़ो के लोग सीमेंट जैसे ब्रिक्स का इस्तेमाल कर रहे थे। ये प्लैंड स्ट्रीट्स बना रहे थे और बाथरूम्स तक यूज कर रहे थे। मतलब हाइजीन और प्लानिंग में ये लोग हमसे आगे थे। आज के दौर में जब हम मॉडर्न सिटीज की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ शहर आते हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज आती हैं, जैसे सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क। लेकिन असल मॉडर्न प्लानिंग तो मोहनजोदड़ो वालों ने की थी। उनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, पब्लिक बाथ था और घरों में पानी का सप्लाई भी मयसर था, वो भी उस जमाने में। ये शहर पाकिस्तान के सिंध

प्रोविंस में इंडस रिवर के पास वाके है। मोहनजोदड़ो को 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने दरियाफ्त किया। उस वक्त किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जमीन के नीचे इतना बड़ा शहर पाया जाएगा। और जब एक्सकेवेशन हुई तो भाई इसे देखकर दुनिया हैरान रह गई कि ये तो पूरी की पूरी वैली है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी बात ये है कि ये हिस्सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, जिसे दुनिया के सबसे पहले अर्बन सिविलाइजेशन में शामिल किया जाता है, मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया के साथ। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि मोहनजोदड़ो की असल हिस्ट्री क्या है, वहाँ के लोगों की डेली लाइफ कैसी थी, कौन कौन सी चीजें वहाँ से मिली हैं, और सबसे बड़ा सवाल, ये शहर तबाह क्यों हुआ। चलिए फिर इस सफर का आगाज करते हैं। साथियों, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रोविंस में है। ये जगह लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में इंडस रिवर के पास वाके है। दरियाए इंडस को हम सिंधु दरिया भी कहते हैं। ये दरिया ही असल में पूरी सिविलाइजेशन का लाइफलाइन था। जिस तरह नाइल ने इजिप्ट को जिंदा रखा, वैसे ही इंडस ने मोहनजोदड़ो वालों को जिंदा रखा। पानी, खेती, ट्रांसपोर्टेशन, सब कुछ इस रिवर की वजह से मुमकिन था। आपकी नॉलेज के लिए आपको ये बता दूं कि इस शहर का एरिया लगभग 300 हेकर्स पर मुश्तमिल था, मतलब छोटा मोटा नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा अर्बन सेंटर था। अगर आज के दौर में इसे कंपेयर किया जाए तो मोहनजोदड़ो एक प्रॉपर मेट्रोपॉलिटन सिटी था। मोहनजोदड़ो को आर्कियोलॉजिस्ट ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सिटाडेल यानी ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव और रिलीजियस बिल्डिंग्स होती थीं, जैसे ग्रेट बाथ, और लोअर टाउन यानी नीचे वाला हिस्सा, यहाँ आम लोग रहते थे, मार्केट होते थे, घर और शॉप्स वगैरह होती थीं। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बना था, मतलब कि स्ट्रेट सड़कें जो एक दूसरे को क्रॉस करती थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे न्यूयॉर्क के मैनहट्टन की प्लानिंग है। ये सब कुछ 2500 BC में हो रहा था। साथियों, यही लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आकर आपसे मोहनजोदड़ो के बारे में और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन FM 107 सफा के साथ।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विद सफा और आज हम बात कर रहे हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। आइए दोस्तों, अब हम मोहनजोदड़ो के असल सफर से गुजरते हैं। वो सफर जो शुरू होता है लगभग 5000 साल पहले, जब दुनिया बिल्कुल अलग थी, ना मोबाइल था, ना इंटरनेट, ना पिज्जा डिलीवरीज, लेकिन फिर भी लोगों ने एक ऐसी सिविलाइजेशन बनाई जो आज भी दुनिया को हैरान कर रही है। साथियों, मोहनजोदड़ो असल में एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन का हिस्सा था जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी तहजीब कहते हैं। ये तहजीब 3300 BC से लेकर 1300 BC तक रही। अगर आप सोचें तो ये लगभग 2000 साल का सफर है, मतलब एक पूरी दुनिया की कहानी। साथियों, जब मेसोपोटामिया में लोग अपनी पहली लिखाई का सिस्टम बना रहे थे और इजिप्ट में पिरामिड्स बन रहे थे, तब इंडस वैली के लोग अपने शहर की प्लानिंग कर रहे थे। मतलब ये तहजीब वर्ल्ड क्लास लेवल पर थी भाई। इस सिविलाइजेशन का पीक यानी उसका गोल्डन पीरियड था 2600 BC से 1900 BC के दरमियान का, और इस पीरियड में मोहनजोदड़ो अपने शानदार दौर में था, बिल्कुल जैसे आज के दौर में न्यूयॉर्क या टोक्यो है। अब भाई सवाल ये उठता है कि आखिर हमें कैसे पता चला कि मोहनजोदड़ो जैसा शहर कभी था भी? तो भाई इसका जवाब छुपा है 1922 के ईयर में। अब से सिर्फ 100 साल पहले ही उस वक्त R.D. बैनर्जी नाम के एक आर्कियोलॉजिस्ट जो कि ब्रिटिश इंडिया में काम कर रहे थे, उन्हें कुछ अजीब सी ब्रिक्स और स्ट्रक्चर्स मिले जो कि उन्हें आम गांव की इमारतों जैसे नहीं लग रहे थे। जब उन्होंने और एक्सकेवेशन की तो समझ आया कि नीचे एक पूरा पूरा शहर छुपा है। जरा सोचिए, एक किसान खेती करते वक्त मिट्टी खोद रहा है और नीचे 500 साल पुराना शहर निकल आए। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ था मोहनजोदड़ो में। आर्कियोलॉजिस्ट ने और खुदाई की और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के सामने से एक लॉस्ट सिटी का पर्दा उठाया गया। साथियों, अगर मोहनजोदड़ो के नाम के बारे में बात की जाए तो भाई इसका नाम भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, मोहनजोदड़ो, जिसका सिंधी में मतलब है मुर्दों का टीला। शुरू में जब लोकल लोग यहाँ आते थे और मिट्टी के नीचे से पुरानी हड्डी,

और मैं आपको बता दूं कि इसे देखकर पता चलता है कि ये सिर्फ एक शहर नहीं था, इंडस वैली में और भी बड़े बड़े शहर थे जैसे हड़प्पा, लोथल और धोलावीरा। लेकिन मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा फेमस पता है क्यों है? इसलिए क्योंकि यहाँ से ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मिली थी। अच्छा, इन लोगों की तरक्की का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों ने अपना लिखाई का सिस्टम डेवलप किया जो अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ। और एक और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि इन्होंने अपना वेट और मेजरमेंट सिस्टम भी बनाया हुआ था ताकि ट्रेड में आसानी हो। और भाई, दुनिया का सबसे पहला ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। अच्छा, ये याद रखिएगा, ये अभी आपको सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये याद रखें कि ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब दुनिया के ज्यादातर लोग अभी शिकार और जुगियों में गुजर बसर कर रहे थे। अभी की तरह कुछ भी मॉडर्न नहीं था। अच्छा, अगर इनके ट्रेड और दोस्ती के बारे में बात की जाए तो मोहनजोदड़ो के लोग सिर्फ अपने शहर तक लिमिटेड नहीं थे, उनकी नजर दूर तक थी। एक्सकेवेशन से ये पता चलता है कि वो मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है, यहाँ तक ट्रेड करते थे। जरा सोचिए, 4000 साल पहले मोहनजोदड़ो का एक आदमी अपना माल लेकर मेसोपोटामिया जा रहा है और वहाँ के लोग उसे वाह वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त क्राफ्टमैनशिप है, ये कहकर उसका माल खरीद रहे हैं। ये प्रूफ है कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ आज की बात नहीं है साथियों, ये सिस्टम पहले भी था। पहले भी लोग इंटरनेशनल ट्रेड किया करते थे। अच्छा, अगर कल्चर और सोसाइटी के बारे में बात की जाए तो तारीख से हमें ये भी पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग बहुत ऑर्गेनाइज थे। उनके पास सोशल हायरार्की थी भाई, मतलब कुछ लोग अमीर थे, कुछ गरीब, लेकिन एक चीज कॉमन थी, सब सफाई और प्लानिंग का ख्याल रखते थे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मर्द और औरतों दोनों की जिंदगी में गहने, कपड़े और कल्चर बहुत इम्पोर्टेंट थे। हर घर के अंदर प्रॉपर किचन और बाथरूम होता था, मतलब फैमिली लाइफ ऑर्गेनाइज थी भाई बिल्कुल। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये लोग अपनी रिचुअल्स और रिलीजन के लिए भी बहुत सीरियस थे। और इनके पास जो ये ग्रेट बात मिला है ना, ये इसी बात का सबूत है कि ये लोग एक साथ इकट्ठा होते थे और रिचुअल्स किया करते थे। साथियों, मोहनजोदड़ो को अगर आप आज देखें तो लगता है कि ये सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन सोचिए, अपने दौर में ये शहर दुनिया के टॉप 3 शहरों में से एक था, मिस्र और मेसोपोटामिया के साथ। जब आर्कियोलॉजिस्ट्स ने इसको डिस्कवर किया तो दुनिया के रिसर्च स्कॉलर्स ने कहा, भाई ये तो इंसानियत की पहली सिलिकॉन वैली है, ये शहर तो अपने वक्त से हजारों साल आगे था। और हकीकतन ये बात बिल्कुल सच है। साथियों, यही लेते हैं एक बिल्कुल छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आके आपसे करेंगे और ढेर सारी इन्फॉर्मेशन शेयर मोहनजोदड़ो के बारे में। सुनते रहिए सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑन FM 107।

वेलकम बैक साथियों, आप सुन रहे हैं सफा के साथ एक्सप्लोरिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं एक गुमशुदा शहर के बारे में जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो। साथियों, अब आते हैं मोहनजोदाड़ो के सबसे जबरदस्त बात पर, यानी उस शहर की प्लानिंग। आप जरा सोचिए, 4000 साल पहले लोगों ने ऐसे शहर डिजाइन किए जो आज भी बहुत से मॉडर्न सिटीज को शर्मिंदा कर दें। साथियों, मोहनजोदाड़ो की पहचान थी उसकी सीधी और क्रॉस होती हुई सड़कें। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि सड़कें एक ग्रिड सिस्टम में बनी थी, मतलब हर स्ट्रीट दूसरी स्ट्रीट को 90 डिग्री पर कट करती थी। ये बिल्कुल वैसा था जैसे आप न्यूयॉर्क या मैनहट्टन के मैप को देख लें, बिल्कुल सीधा और बॉक्स पैटर्न। अब आप सोचिए, ये सिस्टम 20th सेंचुरी में फेमस हुआ, लेकिन मोहनजोदाड़ो वाले इसे 4500 ईयर्स पहले यूज कर रहे थे। अच्छा, इंटरेस्टिंगली सड़कों की चौड़ाई भी प्लान के मुताबिक थी। बड़ी सड़कें लगभग 9 मीटर वाइड थी और छोटी गलियां 1.5 से 2 मीटर तक की थी। मतलब ट्रैफिक रूल्स भी यूज हो रहे थे भाई। हाँ, बस फर्क इतना था कि उस वक्त वहाँ गाड़ियां और रिक्शे नहीं थे, ना ही कोई हॉर्न बजाने वाले अंकल। चलिए अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं घरों के डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के बारे में। एक्सकवेशन से ये पता चलता है कि मोहनजोदाड़ो के घर बेक्ड ब्रिक्स से बने हुए थे। ये ब्रिक्स स्पेशली आग में पकाई जाती हैं ताकि मजबूत हो जाएं। अच्छा, ये भी देखने में आया कि कुछ घर 2 स्टोरी तक भी थे। हर घर में कोर्टयार्ड होता था जहाँ खानदान इकट्ठा होता था। अच्छा, मजे की बात ये कि भाई वेंटिलेशन का भी प्रॉपर सिस्टम था। छोटे छोटे विंडोज और ओपन स्पेसेस जो हवा को अंदर लाती थी। और सबसे जबरदस्त बात पता है क्या थी? हर घर में प्राइवेट बाथरूम और किचन होता था। जी हाँ, बाथरूम 4000 साल पहले भी होते थे और वो भी ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्टेड। अच्छा, अब जो मैं बात कहने लगी हूँ ना, वो बात सबसे ज्यादा आर्कियोलॉजिस्ट को हैरान करती है। वो है मोहनजोदाड़ो का ड्रेनेज और सैनिटेशन सिस्टम। साथियों, यहाँ हर घर का एक छोटा सा प्राइवेट ड्रेन था। ये ड्रेन्स बड़े ड्रेन्स में गिरते थे जो

नीचे होते थे। इन ड्रेन्स को कवर्ड रखा जाता था ब्रिक्स या स्लैब से, ताकि उनमें से स्मेल और गंदगी बाहर ना आए। हर कुछ फासले पर मैनहोल्स भी थे भाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशंस यूज करती हैं सफाई के लिए। इस बात से ये साबित होता है कि उन लोगों को हाइजीन और हेल्थ का बहुत ख्याल था। वो ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझते थे कि सफाई सिर्फ सुकून का जरिया नहीं बल्कि सेहत का भी हिस्सा है। इसी के साथ अगर बात की जाए द ग्रेट बाथ की, तो भाई इसे शहर का दिल कहा जा सकता है। आपने ग्रेट बाथ का नाम तो जरूर सुना होगा साथियों, ये मोहनजोदड़ो की सबसे फेमस डिस्कवरी है। एक बड़ा सा स्विमिंग पूल जैसा बात, जिसका साइज था लगभग 12 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा। भाई ये बात ब्रिक से बनाया गया था और उस पर एक तरह की वाटरप्रूफ कोटिंग की गई थी ताकि पानी लीक ना हो। पानी भरने और निकालने का प्रॉपर सिस्टम भी मौजूद था। बाद के चारों तरफ रूम्स थे, शायद इसे लोग कपड़े बदलने या रेस्ट करने के लिए यूज किया करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट ने कहा है कि ये सिर्फ स्विमिंग पूल नहीं था बल्कि एक रिचुअल सेंटर था। यहाँ लोग शायद रिलीजियस या कम्युनिटी पर्पसेस के लिए इकट्ठा हुआ करते थे। जरा सोचिए, मोहनजोदड़ो वाले भी अपने दौर में स्पा का मजा ले रहे थे भाई। अच्छा, अगर पब्लिक और प्राइवेट वेल्स के बारे में बात की जाए तो मोहनजोदड़ो में पानी का सिस्टम भी लाजवाब था। एक्सकवेशंस में 700 से ज्यादा वेल्स मिले हैं, मतलब हर चंद घरों के बाद एक वेल होता था। वेल मतलब कुआं भाई। कुछ कुएं तो प्राइवेट थे जो सिर्फ एक फैमिली के लिए थे, और कुछ कुएं पब्लिक थे जहां आसपास के लोग पानी शेयर किया करते थे। इस बात से ये पता चलता है कि पानी की सप्लाई मोहनजोदड़ो में प्रॉपर मैनेज होती थी। साथियों, कितनी अजीब सी बात है ना कि आज के दौर में जहां लोग पानी के टैंकरों का इंतजार करते करते थक जाते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो वाले, भाई मोहनजोदड़ो वालों को ये प्रॉब्लम नहीं थी जो आज के दौर में अक्सर सिटीज में फेस की जाती है। अच्छा, इनके पास मार्केट्स और शॉप्स भी पाई गई हैं। साथियों, हर शहर की तरक्की का सबूत होता है उसकी मार्केट्स। मोहनजोदड़ो में भी मार्केट्स और शॉप्स मौजूद थी। एक्सकवेशन में शॉप्स और स्टोरेज रूम्स मिले हैं जहां ग्रेन्स और सामान रखा जाता था। यहाँ पर लोग पॉटरी, ज्वेलरी, कॉटन और टूल्स की खरीदो फरोख्त करते थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? उनके पास स्टैंडर्ड वेट और मेजरमेंट सिस्टम था, मतलब 4000 साल पहले भी उन्होंने चीटिंग और कम तोलने को कंट्रोल करने का सिस्टम बना लिया था भाई। साथियों, मोहनजोदड़ो दो मेन हिस्सों में डिवाइडेड था। सिटाडेल यानी ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ पर ग्रेट बाथ, ग्रैनरीज और एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स थी। ये शहर का वीआईपी एरिया था जहाँ रूलर और ऑफिशियल्स बैठकर फैसले किया करते थे। और दूसरा हिस्सा था लोअर टाउन यानी नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पर आम लोग रहते थे। घर यहाँ प्रॉपर प्लान के मुताबिक बनाए गए थे। हर ब्लॉक में कुछ घर और उनके दरमियान सड़कें होती थी। मतलब ये कि मोहनजोदड़ो एक तरह का मॉडर्न जोनिंग सिस्टम था, बिल्कुल वैसे जैसे आज के मास्टर प्लान सिटीज होते हैं। अब आपके दिमाग में एक और सवाल उठा होगा कि भाई 4500 साल पहले स्ट्रीट लाइट्स तो थी ही नहीं, तो रात को क्या होता था? रात को ये लोग कैसे गुजारा करते थे? आर्कियोलॉजिस्ट का ये कहना है कि घरों और सड़कों पर छोटी छोटी जगहें बनाई गई थी जहां मशाल या दिए रखे जाते थे। जरा सोचिए, रात को जब शहर अंधेरे में डूबा हुआ होता होगा तो लोग दिए और मशाल जलाकर सड़कों पर चलते होंगे। ये एक तरह की एंशिएंट नाइट लाइफ भी होती होगी। अगर मोहनजोदड़ो की प्लानिंग का कंपैरिजन आज के शहरों के साथ करें तो कुछ चीजें हैरान कर देती हैं साथियों। जैसे कि मोहनजोदड़ो की ड्रेनेज सिस्टम से ये पता चलता है कि आज के कई शहर ऐसे हैं जिनसे इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर था। हर घर के साथ एक बाथरूम और अटैच किचन भी था, जो यूरोप में 18th सेंचुरी में कॉमन हुआ। ग्रेट प्लानिंग आज के अमेरिका और यूरोप की मॉडर्न सिटीज की पहचान है, लेकिन मोहनजोदड़ो में ये थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले से था। मतलब मोहनजोदड़ो के इंजीनियर्स अगर आज जिंदा होते तो शायद उनको सिटी प्लानिंग अवार्ड मिल चुका होता। चलिए साथियों, अब थोड़ी इमेजिनेशन की दुनिया में चलते हैं। चलिए जरा आंखें बंद करके सोचिए, दिन का वक्त है, मोहनजोदड़ो की बड़ी सड़कें सूरज की रोशनी में चमक रही हैं। सड़कों के दोनों तरफ घरों के दरवाजे खुले हुए हैं, अंदर से बच्चों के खेलने की आवाजें आ रही हैं। बाजार में लोग ज्वेलरी, कॉटन और वगैरह वगैरह चीजें खरीद रहे हैं। और दूर एक

पब्लिक बाथ के पास लोग इकट्ठा होकर रिचुअल्स कर रहे हैं। यही थी मोहनजोदड़ो की जिंदगी, प्लान्ड, ऑर्गेनाइज्ड और मॉडर्न। अच्छा, अगर इनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में बात की जाए साथियों, तो मोहनजोदड़ो के लोगों की डेली रूटीन भी काफी मॉडर्न थी। कॉटन के कपड़े पहनते थे। ये दुनिया के सबसे पहले सिविलाइजेशंस में से एक थे जहां कॉटन का यूज शुरू हुआ था। इनकी औरतों को गहनों का शौक था जो कि गोल्ड बीड्स और शेल से बनाए जाते थे। ये लोग खाने में चावल, गंदम और दाल खाते थे। मछली और गोश्त का भी इस्तेमाल किया जाता था। भाई गेम्स खेलते थे जिसमें डाइस गेम्स मौजूद थी। एक्सकवेशन के दौरान यहाँ पर बच्चों के लिए टॉयज भी मिले थे जिनसे बच्चे खेला करते थे। और अगर ट्रेड के बारे में बात की जाए तो मिडिल ईस्ट और सेंट्रल एशिया तक ट्रेड हुआ करता था। उनके पास स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजर्स भी मौजूद थे। मोहनजोदड़ो के लोग बहुत सफाई पसंद थे। उनके घरों में प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम भी मौजूद थे, मतलब ये कि एयर कंडीशन घरों का एक प्रिमिटिव वर्जन था। साथियों, एक्सकवेशन में बहुत सी चीजें मिली हैं जो आज दुनिया भर के म्यूजियम्स में रखी गई हैं, जैसे कि डांसिंगगढ़, ब्रॉन्ज की बनी हुई एक छोटी सी स्टैचू जिसमें एक लड़की एक हाथ कमर पर रखकर खड़ी है। ये प्रूफ है कि आर्ट और डांस उनकी जिंदगी का हिस्सा था। उसी के साथ साथ ग्रेट बाथ में सबसे फेमस डिस्कवरी हुई, एक बड़ा पब्लिक बाथ जिसमें पानी की सप्लाई और ड्रेनेज सिस्टम मौजूद था। यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ सील्स भी मिली हैं जिसमें अननोन स्क्रिप्ट लिखी गई हैं। और तो और टूल्स और टॉयज भी मौजूद हैं। डाइस, पॉटरी, वेट्स और ज्वेलरीज भी मिली हैं। ये डिस्कवरीज हमें ये बताती हैं कि मोहनजोदड़ो के लोगों की सोसाइटी काफी ऑर्गेनाइज्ड और क्रिएटिव थी। कुछ और इंटरेस्टिंग बातें ये हैं साथियों कि मोहनजोदड़ो का ड्रेनेज सिस्टम आज भी कुछ पाकिस्तानी सिटीज से बेहतर है। डांसिंग गर्ल स्टैचू सिर्फ 10.8 सेंटीमीटर की है लेकिन उसकी फेम दुनिया भर में है। मोहनजोदड़ो के लोग वेजिटेरियन भी थे और मीट लवर्स भी। ये दुनिया का सबसे पहला शहर है जहां अर्बन प्लानिंग और सिविल इंजीनियरिंग हुई। एक्सकवेशन के बावजूद उनकी स्क्रिप्ट्स अभी तक रीड नहीं की गईं, मतलब हम अभी तक उनके असल सीक्रेट्स नहीं जान पाए। साथ ही मोहनजोदड़ो की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही राजदार भी है। एक तरफ ये शाहकार अपनी एडवांस प्लानिंग और बेहतरीन लाइफ की वजह से दुनिया भर के हिस्टोरियंस को हैरान कर देता है और दूसरी तरफ इसका अचानक खत्म हो जाना सबको कंफ्यूज भी कर देता है। अब सवाल ये उठता है कि इतना तरक्की याफ्ता शहर एक दिन अचानक कैसे गायब हो गया। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास क्लियर एविडेंस की शक्ल में मौजूद नहीं है, लेकिन आर्कियोलॉजिस्ट ने बहुत सी थ्योरीज पेश की हैं। चलिए इन थ्योरीज को थोड़ा डिटेल के साथ एक्सप्लोर करते हैं। एक थ्योरी है जिसमें बड़े से फ्लड के बारे में बात की जाती है, यानी बड़ा सारा सैलाब। मोहनजोदड़ो इंडस रिवर के बिल्कुल पास बना था। इस थ्योरी के मुताबिक कहा जाता है कि दरिया इंडस ने इस शहर को जिंदगी भी दी और शायद उसका सैलाब बनके अंजाम भी लिख दिया। आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ जगहों पर मिट्टी और डिब्रीज ऐसी मिली हैं जो यूं लगता है कि पानी लाकर छोड़ गया हो, मतलब कि शायद एक मासिव फ्लड आया और इस शहर को तहस नहस कर चला गया। लेकिन सवाल ये है कि अगर फ्लड आया भी था तो पूरा शहर क्यों खाली हो गया, क्यों लोग वापस नहीं आए। हो सकता है फ्लड बार बार आता हो और लोग तंग आकर कहीं चले गए हों। ये तो सिर्फ एक थ्योरी है। अच्छा, दूसरी थ्योरी रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज और दरिया का रुख बदलने से। तो भाई बात ये है कि आज से 4500 साल पहले भी क्लाइमेट चेंज था। हाँ जी, ग्लोबल वार्मिंग का जमाना बहुत पुराना है, ये सदियों से चलती आ रही है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि इंडस रिवर ने अपना रुख बदल लिया था। शहर की जिंदगी चला करती थी, अगर उसका रुख बदल जाए तो लोगों के पास रहने का रीजन ही खत्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आपके घर के पास मार्केट और पानी की सप्लाई बंद हो जाए तो आप भी वहाँ से घर छोड़कर किसी और नई जगह पर शिफ्ट हो जाएंगे ना। बिल्कुल वैसे ही मोहनजोदड़ो के लोग भी दूसरे इलाकों की तरफ माइग्रेट कर गए होंगे। अच्छा, इसी के साथ साथ तीसरी थ्योरी है इन्वेडर्स और अटैक की थ्योरी, मतलब सर जॉन मार्शल जिन्होंने मोहनजोदड़ो को डिस्कवर किया, उनका मानना था कि शायद कोई फॉरेन इन्वेडर्स आए और शहर तबाह कर

0: दिया। ये थ्योरी आर्यन इन्वेजन से जुड़ी हुई है। कुछ स्केलेटन्स मोहनजोदाड़ो में मिले जिसमें ऐसा लगता है कि लोग अचानक मरे, जैसे कोई झगड़ा हुआ हो या किसी ने अटैक कर दिया हो। मगर अब नई रिसर्च कहती है कि ये थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन या फायर के मार्क्स नहीं मिले। मतलब अगर अटैक होता तो शहर में जलने के सबूत भी होते। अच्छा, इसी के साथ साथ एक और चौथी थ्योरी भी है भाई, बीमारी और एपिडेमिक। एक और थ्योरी ये कहती है साथियों कि शहर में बीमारी, एपिडेमिक जैसे प्लेग या कोई और डिजीज फैल गई। इमेजिन कीजिए, ड्रेनेज सिस्टम जैम हो गया, गर्मी ज्यादा हो गई, साफ पानी कम हो गया और फिर कोई डेडली बीमारी फैल गई। लोग बचने के लिए शहर छोड़कर आगे बढ़ गए और कुछ लोग वहीं मर गए। इस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए कुछ स्केलेटन्स मिले हैं जो इतनी अजीब पोजीशंस में मिले हैं कि लगता है कि लोग अचानक ही मर गए। मतलब उन स्केलेटन्स का हाल कुछ ऐसा बयान करता है कि उन्होंने कहीं भागना था लेकिन वो रस्ते में ही गिर गए। एक और थ्योरी है जो कि सबको चौंका कर रख देती है, एटॉमिक ब्लास्ट हाइपोथेसिस। ये थ्योरी थोड़ी फिल्मी लगती है लेकिन डिस्कस काफी होती है। कुछ रिसर्चर्स ने ये क्लेम किया है कि मोहनजोदाड़ो के कुछ स्केलेटन्स में रेडियो एक्टिव लेवल नॉर्मल से ज्यादा थे और कुछ जगह स्टोन्स ग्लास की तरह पिघले हुए मिले हैं। कुछ लोगों ने इसे एक एंशियंट एटॉमिक एक्सप्लोजन की वजह कहा है, लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये एग्जैगरेशन है और प्रॉपर सबूत इस बात को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हाँ, ये कहानी सुनने में किसी साइंस फिक्शन की मूवी जैसी जरूर लगती है। साथियों, इन सब थ्योरीज के बावजूद सच ये है कि एग्जैक्ट वजह आज तक मिस्ट्री ही है। मोहनजोदाड़ो के लोग कहाँ गए, कैसे गए, क्यों गए, इसका कोई 100% जवाब नहीं दे सकता। बस जो बचा है वो उनकी अमेजिंग बिल्डिंग्स, ड्रेनेज सिस्टम, स्टैचूज और आर्टिफैक्ट्स हैं, जो आज हमें उस वक्त की कहानी सुनाते हैं। साथियों, अगर फ्लड थ्योरी सही है तो मोहनजोदाड़ो दुनिया का पहला क्लाइमेट रेफ्यूजी सिटी था। अगर आपको लगता है कि इन्वेजन थ्योरी सही है तो भाई, शहर के लोगों को इतना एडवांस होने के बावजूद अपनी सिक्योरिटी की टेंशन नहीं थी क्या? और अगर आपको लगता है कि एपिडेमिक थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये है कि 4500 साल पहले भी लोग मास्क पहनो या ना पहनो वाली डिबेट कर रहे होंगे। और अगर आपको एटॉमिक ब्लास्ट थ्योरी सही लगती है तो भाई, हॉलीवुड ने इंडियाना जॉन्स और एवेंजर्स से पहले ही स्क्रिप्ट मोहनजोदाड़ो से कॉपी कर ली होगी। साथियों, मोहनजोदाड़ो का खत्म होना आज भी एक अनसॉल्व मिस्ट्री है। शायद फ्लड, शायद क्लाइमेट चेंज, शायद डिजीज, शायद अटैक, या फिर कुछ ऐसा जो अभी तक हमें पता ही नहीं चला। लेकिन इसी राज ने मोहनजोदाड़ो को और भी फैसिनेटिंग बना दिया है, क्योंकि जितना ज्यादा मिस्ट्री उतना ज्यादा इंटरेस्ट। भाई, आज मोहनजोदाड़ो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है 1980s से, और हर साल यहाँ टूरिस्ट आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि क्लाइमेट चेंज और ह्यूमन निग्लेक्टेंस की वजह से ये साइट डैमेज हो रही है। ज्यादा विजिटर्स और पॉल्यूशन से स्ट्रक्चर खराब हो रहा है। पाकिस्तान गवर्नमेंट और यूनेस्को इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ड्रोन मैपिंग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है ताकि मोहनजोदाड़ो को सेव किया जा सके। मोहनजोदाड़ो इंसानी तख्लीक का एक लाजवाब चैप्टर है। ये शहर हमें ये दिखाता है कि इंसान हमेशा से ही क्रिएटिव और इंटेलिजेंट रहा है। 4500 साल पहले के लोग भी हमारी तरह ही ख्वाब देखते थे, एंटरटेनमेंट एंजॉय किया करते थे, सफाई को पसंद किया करते थे और प्लानिंग भी करते थे। आज हम मोहनजोदाड़ो से ये सीख सकते हैं कि अगर हम अपने शहरों की प्लानिंग और सफाई का ख्याल रखें तो हम भी एक मॉडर्न और सस्टेनेबल सोसाइटी बना सकते हैं। मोहनजोदाड़ो सिर्फ एक आर्कियोलॉजिकल साइट नहीं है, बल्कि एक रिमाइंडर है कि इंसानियत ने कितना लंबा सफर तय किया है। साथियों, मोहनजोदाड़ो का सफर सिर्फ पुराने पत्थरों और मिट्टी का शहर तक नहीं है, बल्कि हमें एक ऐसे दौर में ले जाता है जहाँ इंसानियत ने अपने ख्वाब और ज़हनियत से नया निज़ाम बनाया। ये शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हिस्सा था, आज भी दुनिया को हैरान करता है। उनकी प्लानिंग, सैनिटेशन सिस्टम और तरतीब आज के मॉडर्न शहरों को भी शर्मिंदा कर देती है। जरा सोचिए, 4,500 साल पहले लोग प्रॉपर ड्रेनेज, स्ट्रेट स्ट्रीट्स और स्टैंडर्ड साइज ब्रिक यूज किया करते थे। मोहनजोदड़ो हमें ये दिखाता है कि इंसान अगर मिलकर काम करे तो वो कितना सस्टेनेबल और ऑर्गेनाइज्ड शहर बना सकता है। यहाँ के लोगों की जिंदगी काम और बैलेंस पर मबनी थी। उन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स के बजाय ट्रेड, कल्चर और कम्युनिटी को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी। ये सब प्रूव करता है कि प्रोग्रेस का असल राज कोऑपरेशन और कलेक्टिव विजडम में छुपा होता है। लेकिन वक्त के साथ ये शहर मिट्टी के नीचे दब गया, शायद क्लाइमेट चेंज या नदी का रुख बदलने की वजह से। मगर सबक ये है कि इंसान के बनाए हुए निजाम उस वक्त तक रहते हैं जब तक इंसान खुद उनकी कदर करता है। आज जब हम अपने मॉडर्न शहरों में पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन और प्लानिंग की कमी का सामना करते हैं, तो मोहनजोदड़ो हमें ये याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी और डिसिप्लिन से ही शहर आबाद रहते हैं। मोहनजोदड़ो सिर्फ एक वीरान शहर नहीं बल्कि एक पैगाम है कि इंसानियत ने जो सीखा था उसे दोबारा जिंदा करना होगा। उम्मीद करती हूँ आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले एपिसोड तक के लिए सफा को दीजिए इजाजत। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
2: सेहत की बात हो तो एतमाद चाहिए माहिरीन की राय पर। माहिरीन की राय पर लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड। हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक। इलाज और एहतियात तक सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी, याद रखिए सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
3: दोस्तों, लिफ्ट में फंस जाने की सूरत हाल में इन हिदायत पर अमल करें। सबसे पहले तो पुरसुकून रहिए और अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए। गहरी सांस लें और अपने आप को याद दिलाएं कि मदद रास्ते में है, क्योंकि परेशान होने से आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। इमरजेंसी बटन या इंटरकॉम का यूज करें। हर लिफ्ट में एक सिस्टम होता है जो डायरेक्टली सिक्योरिटी या बिल्डिंग मैनेजमेंट से कनेक्ट करता है। बटन को प्रेस करें और जवाब का इंतजार करें। इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है। दरवाजों को फोर्स ना करें। ऑटोमेटिक डोर्स को हाथों से खोलना खतरनाक हो सकता है। ओपन या क्लोज बटन को 5 सेकंड प्रेस करके चेक करें, लेकिन दरवाजों को फोर्स ना करें। हरकत कम करें और मोबाइल का सिग्नल चेक करते रहें। ज्यादा मूवमेंट से हवा और एनर्जी पर असर पड़ता है। पुरसुकून होकर बैठें या खड़े रहें। अगर मोबाइल सिग्नल है तो 999 पर कॉल करें और अपनी लोकेशन बताएं। रेस्क्यू टीम का सब्र से इंतजार करें। सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ें और रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार करें। घबराहट या परेशानी से बचने की कोशिश करें और जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी नंबर 999 पर कॉल करें। FM 107 आपके सेफ और खुशहाल दिन की दुआ करता है।
2: बस बहुत हो गया रूटीन, नीड एन एस्केप, एक माइंड ब्लोइंग एडवेंचर चाहिए, तो लॉक हो जाओ FM 107 के साथ, क्योंकि आ गया है एस्केप रूम। एस्केप रूम, द अल्टीमेट माइंड वर्कआउट एज प्योर फन। फन यहाँ ट्रैफिक नहीं, ट्रिकी वर्ड प्ले है। बोरिंग मीटिंग्स नहीं, ब्रेन टीजिंग रिडल्स है, जहां कंटेस्टेंट्स नेविगेट करेंगे ऑडियो चैलेंजेस अराउंड द क्लॉक। ये है आपका वीकली एस्केप इनटू अ वर्ल्ड ऑफ पजल्स एंड एक्साइटमेंट।
4: अनलॉक योर माइंड, ट्यून इनटू रेडियो का यूनिक गेम शो एस्केप रूम विद ए फॉर अमिता, संडे टू थर्सडे दोपहर 1:30 बजे से, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी। दिल से देसी।
5: आप सुन रहे हैं FM 107।
6: FM 107।
7: दिल से देसी।

0: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतरी गोल्फर सालेह अल काबी के बारे में। या दोस्तों, सालेह अल काबी कतर के सबसे नुमाया गोल्फर्स में से एक हैं और उन्होंने मुल्क में गोल्फ के फरोख में अहम किरदार अदा किया है। दोहा में परवरिश पाने वाले सालेह ने कम उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया और जल्द ही कतर नेशनल गोल्फ टीम का हिस्सा बन गए। उनकी मेहनत, डिसिप्लिन और लगन ने उन्हें कतर के बेहतरीन एमेचर गोल्फर्स की सफ में लाखला किया। सालेह अल काबी ने कई मरतबा कतर मास्टर्स में कतर की नुमाइंदगी की, जहां उन्हें दुनिया के मशहूर गोल्फर्स के साथ मुकाबला करने का मौका मिला। एंड ही गेन्ड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम प्लेइंग इन दिस कतर मास्टर्स, क्योंकि वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन दिस रीजन। उनकी लंबी ड्राइविंग और कोर्स पर पुरसुकून मिजाज को उनकी सबसे बड़ी खूबियों में से शुमार किया जाता है। 2025 में सालेह ने कतर ओपन एमेचर गोल्फ चैंपियनशिप जीतकर एक और बड़ी कामयाबी हासिल की। उन्होंने फाइनल राउंड में शानदार परफॉर्मेंस देकर टाइटल अपने नाम किया और इस फतह के जरिए कतर मास्टर्स के लिए भी क्वालिफाई किया। ये कामयाबी कतर गोल्फ के लिए फख्र का लम्हा थी और उनकी सालों की मेहनत का सबूत भी। दोस्तों आज सालेह अल काबी कतर के नौजवान गोल्फर्स के लिए एक मिसाल है। उनका सफ़र ये दिखाता है कि लगन और मेहनत के जरिए कतर के खिलाड़ी भी बैन अक्वामी सतह पर अपनी पहचान बना सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिज़ाइनर शाकिब अहमद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: दोस्तों, रोड मार्किंग्स यानी सड़क पे जो निशानात होते हैं वो सड़क की जुबान होते हैं। इन पर अमल करना ट्रैफिक की हिफाजत को बढ़ाता है और लोगों को महफूज रखने के लिए बहुत अहम है। ट्रैफिक साइंस और मार्किंग्स पर अमल कीजिए। याद रखिए कि एक दूसरे का ख्याल रखते हुए हम सब मिलकर इस बात को यकीनी बनाने के लिए काम कर सकते हैं। और हाँ, ट्रैफिक के कानून की तामील करने से हम अपनी और रोड पर अपने इर्द गिर्द के लोगों की जिंदगी को महफूज कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: कानून हमें तहफ्फुज देता है और वजारत दाखला के तमाम इदारे हर वक्त हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए मसरूफ हैं। MOI के इदारों की सर्विसेज जानने और नए कवानीन से वाकफियत के लिए हम हर हफ्ते पीर के दिन रात 8 बजे लेकर आते हैं प्रोग्राम पुलिस और आवाम, जहां आपकी मुलाकात होती है पुलिस अफसरान के साथ।
3: पुलिस और आवाम एवरी मंडे 8 PM लाइव ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आज हम बात करेंगे कि सेहतमंद तरीके से अपना वजन कैसे कम कर सकते हैं। बहुत से अफराद बहुत जल्दी में वजन कम करने के लिए सख्त डाइट्स या गैर महफूज तरीके अपनाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सेहतमंद और पायदार वजन में कमी आहिस्ता आहिस्ता और बैलेंस जो या मतवाजन आदत के जरिए हासिल होती है। वजन में इजाफे की सबसे जो बड़ी वजूहात हैं उनमें गैर मतवाजन गजा और इसी तरह जिस्मानी सरगर्मी यानी एक्सरसाइज की कमी, ज़्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल, नाकाफी नींद और जहनी दबाव शामिल हैं। अच्छी खबर ये है कि चंद आसान तब्दीलियों लाकर आप अपने आप को सेहतमंद वजन की तरफ ले जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला कदम वो है बैलेंस डाइट, और वजन कम करने के लिए भूखा रहना ज़रूरी नहीं है। अपनी गिजा में फल, सब्जियां, दालें, अनाज और जो कम चिकनाई वाली प्रोटीन है वो शामिल कीजिए। तली हुई अशिया, फास्ट फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स और ज़्यादा चीनी वाली गिजाओं का इस्तेमाल कम कीजिए। छोटी प्लेट इस्तेमाल करने से भी खाने की मिकदार को कंट्रोल करने में मदद मिलती है। दूसरा अहम कदम वो है पानी ज़्यादा पीना। कई मरतबा हमें प्यास लगती है, लेकिन हम समझते ये हैं कि हमें भूख लग रही है। दिन भर मुनासिब मकदार में पानी पीने से जिस्म हाइड्रेट रहता है और गैर ज़रूरी खाने की ख्वाहिश कम होती है। और एक अहम जो पॉइंट है वो ये है कि आप जो एक्सरसाइज जो है वो कीजिए। रोज़ाना कम से कम 30 मिनट की आप तेज़ कदमों से आप एक्सरसाइज या वॉक कीजिए, साइकिलिंग कीजिए या फिर हल्की वर्जिश जो है वो भी वजन जो है कम करने में मदद देती है। लिफ्ट के बजाय सीढ़ियाँ इस्तेमाल कीजिए और इस तरह अपने आप को ज़्यादा एक्टिव रहिए। चौथा जो कदम है वो है अच्छी नींद, यानी क्वालिटी ऑफ जो स्लीप है वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगर नींद की कमी हो तो फिर जिस्म के हार्मोन्स से मुतासिर होते हैं, जिससे हमारी भूख ज़्यादा हो जाती है। और बालिग जो अफराद हैं उन्हें रोज़ाना 7 से 9 घंटे की मायारी नींद लेने की कोशिश करनी चाहिए। सेहतमंद वजन कम करने का मतलब है कि हर हफ्ते आहिस्ता आहिस्ता

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, आप सुन रहे हैं FM 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा। लेकर आई हूं इको स्विच का एक और एनर्जेटिक और हेल्दी लाइफस्टाइल एपिसोड। तो भाई आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंपल और अच्छी सी हैबिट के बारे में जो बिल्कुल फ्री है, मुफ्त मुफ्त मुफ्त मुफ्त का तो हम किसी का बुखार ना छोड़ें, तो ये तो हैबिट है भाई अच्छी वाली, लेकिन उसके फायदे हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों के लिए बहुत पावरफुल है। मुफ्त तो है लेकिन पावरफुल है, पॉजिटिव चीज है भाई। देखिए हम बात करेंगे आज वॉकिंग कल्चर प्रमोट करने की। साथियों जरा सोचिए, आपको पास वाली ग्रोसरी स्टोर जाना है जो कि मुश्किल से कितना 5 से 10 मिनट वॉक पर होगा, लेकिन फिर भी आप क्या करते हैं, नहीं भाई मैं जो ना गाड़ी में चला जाता हूँ, गर्मी है एसी चला लूंगा। आपने गाड़ी स्टार्ट की, एसी ऑन किया, शॉर्ट डिस्टेंस ड्राइव होती है तो आपने कहा ये जा वो जा मैं ड्राइव करके चला जाऊंगा। या फिर बिल्डिंग के अंदर ही लिफ्ट यूज कर लेते हैं हम अक्सर औकात, सिर्फ एक या दो फ्लोर्स के लिए ही हम कहते हैं भाई एक या दो फ्लोर। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट फ्लोर पे रह रही हूँ तो भाई फर्स्ट फ्लोर मैं सोचूंगी अरे नहीं भाई कौन ही नीचे जाए, अरे भाई ये तो सोचो फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर का कितना ही फासला है, बजाय इसके कि आप एलिवेटर यूज करो आप स्टेयर्स भी यूज कर सकते हो। अक्सर लोग नहीं करते, आपको लगता है कि ये चीज नॉर्मल है, लेकिन जब ये एक डेली रूटीन बन जाती है ना तो फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है और फ्यूल कंजम्पशन अननेसेसरीली बढ़ जाता है। अब थोड़ा रियलिटी चेक से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को। देखिए वॉकिंग सिर्फ एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट ऑप्शन भी है। जब हम शॉर्ट डिस्टेंसेस वॉक करते हैं ना तो हम फ्यूल यूजेज जीरो कर देते हैं, इमिशंस एलिमिनेट कर देते हैं और अपनी बॉडी को एक्टिव रखते हैं। यानी एक ही हैबिट से दो बेनिफिट्स, एक के साथ एक मुफ्त। वैसे तो बड़ी प्रमोशंस आप जो है ना वो अवेल कर लेते हो, ये वाली नहीं करोगे, एक के साथ एक मुफ्त मिल रही है, फ्यूल भी बच रहा है और एक अच्छी हैबिट भी मिल रही है, हेल्थ हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों बचते हैं इससे। देखिए इको स्विच सिचुएशन में क्या है, आइडिया बड़ा सिंपल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग को प्रेफरेंस दें, मतलब जब भी पॉसिबल हो गाड़ी के बजाय अपने पैरों को यूज करें ना, अच्छी बात है, इस्तेमाल करने के लिए हैं दो पैर। W11 पकड़ो यानी

0: अपने दो पैर पकड़ो, पकड़ो नहीं मतलब चलते हुए आप 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस कवर कर लें। अब बात करते हैं कि वॉकिंग कल्चर प्रमोट करने से क्या फायदा होता है। देखिए सबसे पहला फायदा होता है हेल्थ इंप्रूवमेंट। वॉकिंग से हार्ट की जो हेल्थ है ना वो बेटर होती है, स्टेमिना इंप्रूव होता है आपका और ओवरऑल फिटनेस आपकी मेंटेन रहती है। दूसरा फायदा ये होता है कि फ्यूल इमिशंस जो होती हैं वो रिड्यूस होती हैं। कम ड्राइविंग का मतलब है कम पेट्रोल यूज और कम कार्बन इमिशंस। तीसरा फायदा स्ट्रेस रिडक्शन है। वॉकिंग स्पेशली आउटडोर एनवायरमेंट में मेंटल रिलैक्सेशन देती है। और भाई लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस बात को सुनकर तो जरूर मानोगे कि कॉस्ट सेविंग होती है। कम फ्यूल यूज का डायरेक्ट मतलब है कम मंथली ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस। अब एक रिलेटेबल बात यह है कि जरा सोचिए आप ऑफिस या मॉल जा रहे हैं और पार्किंग दूर मिलती है। अक्सर हम इरिटेट हो जाते हैं ना इस बात से कि भाई पार्किंग इतनी दूर है, भाई मैं क्या करूं यार। लेकिन अगर आप उसे अपॉर्चुनिटी समझे ना तो वो एक्स्ट्रा वॉकिंग स्टेप्स आपकी डेली एक्टिविटी की एक हेल्दी पार्ट के अंदर इंक्लूड किए जा सकते हैं। देखिए दोहा जैसी सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, फुटपाथ्स और वॉकवेज का सिस्टम भी काफी डेवलप्ड है, इसीलिए यहाँ वॉकिंग कल्चर अडॉप्ट करना कंपैरेटिवली इजी और सेफ है। स्पेशली पार्क्स, मॉल्स और रेजिडेंशियल एरियाज में बहुत इजी है। अच्छा अगर मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दूं ना इसके बारे में तो मैं आपको बता दूं कि शॉर्ट डिस्टेंस रूल फॉलो करें। अगर आप यूं कह लें कि 5 से 15 मिनट या 10 से 15 मिनट वॉकिंग कर सकते हैं ना, आपका कोई ऐसा फासला है जो 10 से 15 मिनट का, तो वॉक करने की कोशिश करें। कंफर्टेबल फुटवेयर यूज करें। वॉकिंग को इजी और एंजॉयबल बनाने के लिए प्रॉपर शूज इंपॉर्टेंट होते हैं। मॉर्निंग या इवनिंग वॉक्स अडॉप्ट करें। गर्मी के वक्त के बजाय कूलर टाइमिंग्स चूज करें ना वॉकिंग के लिए, अपने ऊपर बर्डन ना बनाए ना उसे। फैमिली वॉक्स प्लान करें, इवनिंग वॉक को फैमिली एक्टिविटी बनाकर हैबिट डेवलप करें। अच्छा पांचवी चीज है स्टेप वॉकिंग यूज करें। मोबाइल या स्मार्ट वॉच से डेली स्टेप्स मॉनिटर करें ताकि मोटिवेशन रहे आपको। देखिए अगर मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं ना, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक रेगुलर वॉकिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस को रिड्यूस करने में बहुत बड़ी हेल्प देती है और अर्बन प्लानर्स भी अब सिटीज को वॉकेबल सिटीज बनाने पर फोकस कर रहे हैं ताकि ट्रैफिक और पोल्यूशन दोनों कम हो। तो भाई अक्सर हम ये सोचते हैं कि वॉकिंग में टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन अगर हम डेली रूटीन को ऑब्जर्व करें तो शॉर्ट वॉक्स एक्चुअली मेंटल क्लैरिटी और एनर्जी बूस्ट भी देती हैं। अच्छा अगर बिहेवियर चेंज देखा जाए ना, तो जब आप वॉकिंग कल्चर को अडॉप्ट करते हैं ना तो आप अपनी लाइफस्टाइल को ज्यादा एक्टिव और इको कॉन्शियस बना रहे होते हैं। आप सिर्फ कम्यूटर नहीं रहते बल्कि एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाते हैं अपनी हेल्थ और एनवायरमेंट के लिए। तो भाई इको स्विच सिंपल है, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वॉकिंग को अपनी पहली चॉइस बनाएं। आज का चैलेंज ये है कि आज कम से कम एक शॉर्ट डिस्टेंस आइडेंटिफाई करें जहां आप गाड़ी या ट्रांसपोर्ट के बजाय वॉक कर सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी वॉकिंग हैबिट फॉलो करते हैं तो किसी और को भी इसी हेल्दी हैबिट या इसी हेल्दी कल्चर के लिए इंस्पायर करें। साथियों याद रखें कि हर स्टेप सिर्फ डिस्टेंस कवर करना नहीं होता बल्कि हेल्थ और एनवायरमेंट दोनों को इम्प्रूव करता है। जब हम वॉकिंग कल्चर प्रमोट करते हैं ना तो हम सिर्फ चल नहीं रहे होते बल्कि एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे होते हैं आगे। तो भाई इसी के साथ मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं FM 107 कतर। मिलते हैं इको स्विच के अगले एपिसोड में एक और सिंपल हैबिट और एक और पावरफुल इम्पैक्ट के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें FM 107 दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: Assalamu alaikum. Aap sun rahe hain 60 seconds of Baraka, FM 107 par. Main hoon aapki RJ Mahvish Khan. Hamara aaj ka topic hai gusse ko control karna. Gussa ek fitri jazba hai. लेकिन अगर इसे कंट्रोल ना किया जाए तो ये बहुत ज्यादा नुकसान दे सकता है। गुस्से में इंसान ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर देता है जिसके लिए बाद में उसे पछताना पड़ता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि गुस्से के वक्त खामोशी इख्तियार करें और अपने आप को कंट्रोल करें। थोड़ा रुक जाएं और गहरी सांस लेना भी मददगार होता है। गुस्सा कंट्रोल करना कमजोरी नहीं बल्कि बड़ी ताकत की निशानी है। जो शख्स अपने गुस्से पर काबू पा लेता है वो असल में अपने नफ्स को जीत लेता है। आज का अमल ये है कि जब भी गुस्सा आए फौरन रिएक्ट ना करें बल्कि थोड़ा रुक कर सोचें और फिर जवाब दें। ये था आज का मैसेज। आप सुन रही हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आरजे मावश। फिर मिलेंगे एक नई अच्छी सी बात के साथ।
2: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
0: FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी. One step to 2030.
2: Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया.
3: One Step to 2030.
2: आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं जिस टॉपिक पे, वो टॉपिक है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन. रिया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक कंट्री इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन के लिए अट्रैक्टिव हो. कतर का विजन 2030 का एम है कि कंट्री अपनी स्ट्रॉन्ग पोजिशन ग्लोबल मार्केट में बनाए. इसके लिए बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट बड़ा जरूरी है, जैसे इजी रेगुलेशंस हो, ट्रांसपेरेंसी हो और साथ ही मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर. जब इन्वेस्टर्स को स्टेबल और रिलायबल सिस्टम मिलता है तो वो कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं. फॉरेन इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर होता है. न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, जॉब्स क्रिएट होती हैं और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती है. इससे लोकल बिजनेसेस भी लर्न करते हैं और इम्प्रूव करते हैं. जी हाँ, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस का एक और एस्पेक्ट ब्रांडिंग भी है. जब कंट्री की रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे सेफ एनवायरनमेंट, मॉडर्न फैसिलिटीज और साथ ही स्किल्ड वर्कफोर्स, तो वो इंटरनेशनल लेवल पर प्रेफर्ड डेस्टिनेशन बन जाती है. इसीलिए ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस हम कह सकते हैं कि ग्रोथ का गेटवे है. कतर का नेशनल विजन 2030 पहले से ये मान चुका है कि ऑयल और गैस

0: हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे, इसीलिए विजन का स्ट्रॉन्ग फोकस पोस्ट ऑयल फ्यूचर पर है। जी हाँ दोस्तों, इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया जा रहा है और ये डाइवर्सिफिकेशन एजुकेशन, रिसर्च, टूरिज्म, स्पोर्ट्स और टेक्नोलॉजी पर हैवी इन्वेस्टमेंट से हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपको पता ही है कि यहाँ कतर में एजुकेशन सिटी, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का डेवलपमेंट ऑयल के अलावा इनकम रिसोर्सेज क्रिएट करता है। जब कंट्री इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स मीट करती है और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है तो इकोनॉमी फास्ट और सस्टेनेबली ग्रो करती है। विजन 2030 इसी ग्लोबल एक्सेलेंस को अचीव करने की तरफ एक स्ट्रॉन्ग विजन है जिसको आज हमने हाईलाइट किया। कल आऊंगी तो किसी और टॉपिक पे बात करूंगी। आपकी मेरी मुलाकात होगी नेक्स्ट सेगमेंट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। मुझे यानी नाजिया और शकीब अहमद हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो सुनते रहिए FM 107 दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 Qatar। दिल से देसी।
1: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है, एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है। इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे। सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है
3: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
2: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360। जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू पर सिंपल और

0: के साथ ओनली ऑन एफएम 107
1: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ।
0: मेहतराज ऐप अब अपने यूजर्स को ट्रैफिक वायलेशंस का पेमेंट करने की सहूलत न सिर्फ आसानी बल्कि बहुत मुफीद तरीके से फराहम करती है। आप सिर्फ ट्रैफिक विंडो में जाकर चंद आसान स्टेप्स फॉलो करके किसी भी किस्म के ट्रैफिक फाइन्स का पेमेंट कर सकते हैं, बिना किसी लाइन में खड़े हुए और बिना किसी ऑफिस जाए। ये डिजिटल फैसिलिटी न सिर्फ आपके कीमती वक्त की बचत करती है बल्कि ट्रैफिक लॉस के मुताबिक बर वक्त अदायगी का एक सीधा और आसान रास्ता भी मुहैया करती है। मेहतराज ऐप का यूजर फ्रेंडली इंटरफेस हर उम्र के अफराद के लिए बहुत आसान है और इसके जरिए आप अपनी व्हीकल्स की तफसीलात भी देख सकते हैं, अपने फाइन्स चेक कर सकते हैं और सिर्फ चंद टैप्स के जरिए आप अपने पेमेंट मुकम्मल कर सकते हैं। ये मॉडर्न सर्विस रियासत कतर की डिजिटल गवर्नेंस और पब्लिक कन्वीनियंस को बेहतर बनाने की तरफ एक अहम कदम है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आपकी खिदमत में हमेशा हाजिर है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की

और उस रोज हम लोगों को छोड़ देंगे कि समंदर की मौजों की तरह एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों और सूर फूंका जाएगा और हम सब इंसानों को एक साथ जमा करेंगे और वो दिन होगा जब हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, उन काफिरों के सामने जो मेरी नसीहत की तरफ से अंधे बने हुए थे और कुछ सुनने के लिए तैयार न थे। तो क्या ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है ये ख्याल रखते हैं कि मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लें? हमने ऐसे काफिरों की ज़ियाफ़त के लिए जहन्नम तैयार कर रखी है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो क्या हम तुम्हें बताएं कि अपने आमाल में सबसे ज्यादा नाकाम और नामुराद लोग कौन हैं? वो कि दुनिया की जिंदगी में जिनकी सारी सई और जहद राह रात से भटकी रही और वो समझते रहे कि वो सब कुछ ठीक कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात को मानने से इनकार कर दिया और उसके हुजूर पेशी का यकीन ना किया, इसलिए उनके सारे आमाल जाया हो गए। कयामत के रोज हम उन्हें कोई वजन ना देंगे। उनकी जजा जहन्नम है उस कुफर के बदले जो उन्होंने किया और उस मजाक की पादाश में जो वो मेरी आयात और मेरे रसूलों के साथ करते रहे। अलबत्ता वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, उनकी मेजबानी के लिए फिरदौस के बाग होंगे जिनमें वो हमेशा रहेंगे और कभी उस जगह से निकल कर कहीं जाने को उनका जी न चाहेगा। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो खत्म हो जाए मगर मेरे रब की बातें खत्म न हो, बल्कि अगर इतनी ही रोशनाई हम और ले आए तो वो भी किफायत न करे। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो कि मैं तो एक इंसान हूं तुम ही जैसा, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, बस जो कोई अपने रब की मुलाकात का उम्मीदवार हो उसे चाहिए कि वो नेक अमल करे और बंदगी में अपने रब के साथ किसी और को शरीक न करे।

के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। काफ हा या आइन साद, जिक्र है उस रहमत का जो तेरे रब ने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जबकि उसने अपने रब को चुपके चुपके पुकारा। उसने अर्ज किया, ऐ परवरदिगार, मेरी हड्डियां तक घुल गई हैं और सर बुढ़ापे से भड़क उठा है। ऐ परवरदिगार, मैं कभी तुझसे दुआ मांगकर ना मुराद नहीं रहा। मुझे अपने पीछे अपने भाई बंदों की बुराइयों का खौफ है और मेरी बीवी बांज है। तू मुझे अपने फजले खास से एक वारिस अता कर दे, जो मेरा वारिस भी हो और आले याकूब की मीरास भी पाए। और है परवरदिगार, उसको एक पसंदीदा इंसान बना। जवाब दिया गया, ऐ जकरिया, हम तुझे एक लड़के की बशारत देते हैं जिसका नाम यहया होगा। हमने इस नाम का कोई आदमी इससे पहले पैदा नहीं किया। अर्ज किया, परवरदिगार, भला मेरे हां कैसे बेटा होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बूढ़ा होकर सूख चुका हूं।